0: सुनते हैं नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM.
1: जिया बिंदास. चांदनी.

अब सुनिए ऑलिव का जबरदस्त है।

सुनते हैं नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM.

0: सुनते हैं नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM जियो
1: बिंदास ओसम रेडियो ओलिव पर आने वाला गाना कूल सॉन्ग ऑफ द आवर
2: क्या बात है सर क्या बात ये बात है ओसम

बिंदास मॉर्निंग सुनिए आरजे कशिश और सुदेव को हर सुबह 6 से 10 बिंदास मॉर्निंग में ओनली ऑन रेडियो ऑलिव 106.3 FM जियो बिंदास मॉर्निंग।

आप सुन रहे हैं कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM। बिंदास। अब सुनिए ओलिव का जबरदस्त है। जबरदस्त

0: एंटरटेनमेंट की या कोई सीमा नहीं, बनाइए अपने मॉर्निंग को बिंदास मॉर्निंग विथ आरजे सुदेव, हर सुबह 6 से 10 ओनली ऑन रेडियो ओनली 106.3 एफएम जियो बिंदास मॉर्निंग।
1: मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स बिंदास मॉर्निंग। मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स द रिस्पॉन्सिबल ज्वेलर। मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स की हर ज्वेलरी पीस एथिकली सोर्स्ड होती है और आती है मलाबार प्रॉमिस के साथ, जहां मिलती है कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी और भरोसा।
2: कमर्शियल बैंक, योर फ्यूचर ग्रोस व्हेन योर सेविंग्स ग्रोस। सेव मोर, ड्रीम बिगर, विन अप टू 5 million riyals विद कमर्शियल बैंक
3: इन एसोसिएशन विद नसीम हेल्थ केयर, नसीम सर्जिकल एंड मेडिकल सेंटर, सी रिंग रोड। हेल्दी स्माइल्स एनी टाइम। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 4441 1133।

0: आप सभी को एक सुपर डुपर गुड मॉर्निंग। यह है बिंदास मॉर्निंग्स ओनली ऑन रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम। मैं हूं आपका मेजबान सुदेव और स्टेशन क्लॉक में 6:08 हो रहे हैं और यहां पे 4 घंटे हम बैठेंगे, एक साथ करेंगे दिल खोल के बात, गुफ्तगू करेंगे, गाने सुनाएंगे, गुनगुनाएंगे, ढेर सारे किस्से, खबरें, कहानियां शेयर करेंगे एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली आपके साथ वक्त बिताएंगे। यार आज सुबह आने से पहले मैं ऐसे ही लिंक्डइन स्क्रॉल कर रहा था, मैंने बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही बढ़िया एक पोस्ट मैंने देखा, उसके बारे में बात करूंगा। उसके साथ साथ बहुत सारी चीजों के बारे में हम बात करेंगे, तो अपने मैसेजेस का सिलसिला जो है आप शुरू कर दीजिए। 3311063 पर मैसेज कीजिए, बताए मुझे कि क्या हाल है, कैसा चल रहा है सब कुछ। वीकेंड तो आ चुका है, आज का दिन और निकालना है, शाम तक निकालना, उसके बाद तो फिर एंजॉयमेंट ही एंजॉयमेंट है ना। शो की शुरुआत तो हम इसी गाने के साथ करेंगे, मगर और भी कुछ प्यारे प्यारे गाने आपके लिए हम लेकर आए हैं, जैसे कि
1: चार कदम बस चार कदम चल दो ना साथ मेरे।
0: इतने प्यार से अगर इंसान पूछ ले कि यार चार कदम बस चार कदम चल दो ना साथ मेरे, तो कैसे नहीं चलेंगे यार, इतना प्यारा गाना। और दिलजीत पाजी के बिना आज वीकेंड का दिन पूरा कर सकते हैं हम क्या? तो भाई रेडी हो जाइए, कुर्सी की बेड़ी बांध लीजिए, क्योंकि यहाँ पे उड़ान भरने वाले हैं, बहुत सारी बातें करने वाले हैं और आपको याद दिलाने वाले हैं कि बाबू मोशाय मॉर्निंग सिर्फ गुड नाइट बिंदास सोनी चाहिए। तत्काल प्रभाव से तुरंत से पहले मैसेज भेज दीजिए और कहते रहिए जियो बिंदास।

0: सुन रहे हैं रेडियो ओलिव 106.3 FM जियो बिंदास।
1: इस वेकेशन प्यार से हमारा इंतजार करने वाले अपनों को एक गोल्डन सरप्राइज क्यों ना दे। मलबार गोल्ड एंड डायमंड्स के गोल्डन समर ऑफर के साथ डायमंड एंड प्रेशियस जेम ज्वेलरी खरीदने पर पाइए फ्री कैश वाउचर्स। अपने पुरानी गोल्ड ज्वेलरी को एक्सचेंज कीजिए विदाउट एनी लॉस। और अब विद द इंपोर्ट ड्यूटी रिविजन इन इंडिया यू कैन नाउ सेव अप टू 15% ऑन गोल्ड प्राइसेस हियर इन जीसीसी। विजिट मलबार गोल्ड एंड डायमंड्स टुडे।
2: Grow your brand across Qatar's key audiences. Connect with Hindi listeners on Radio Olive 106.3 FM, Malayalam audiences on Radio Suno 91.7 FM, and Arabic listeners on Tetkar 107.4 FM. On-air visibility supported by performance-driven digital marketing campaigns. Simple, effective, integrated. Call 3009-1063 or 3082-1063.
3: Hi guys, this is Jonita Gandhi. Jonita Gandhi. Radio Olive, I'm the number one. You are listening to me on Radio Olive. Gio Bindas. Radio
4: Olive, I'm the number one. Olive Suno Radio Network, Qatar's number one Asian radio network.
5: Malabar Gold and Diamonds Bindas Morning. मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स द रिस्पॉन्सिबल ज्वेलर। मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स की हर ज्वेलरी पीस एथिकली सोर्स्ड होती है और आती है मलाबार प्रॉमिस के साथ, जहां मिलती है कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी और भरोसा।
6: Commercial Bank. Your future grows when your savings grows. Save more, dream bigger. Win up to 5 million riyals with Commercial Bank.
7: In association with Naseem Healthcare. Naseem Surgical and Medical Center, Sea Ring Road. Healthy smiles anytime. For more information, call 4411 1133.

0: वेलकम बैक, यू आर लिसनिंग टू रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम। मैं हूं आपका मेजबान सुदेव। और भाई यहाँ पे जो है हमारे पास थोड़े मैसेजेस आए हैं, तो चलिए एक एक करके सारे मैसेजेस जरा पढ़ लेते हैं, देखते हैं क्या क्या मैसेजेस आए हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले आया है मैसेज नाजनी जी का, उन्होंने लिखा है गुड मॉर्निंग, डिपेंड्स ऑन योर रिलेशनशिप विद द रिसिपिएंट। वाह क्या बात है भाई, ये कोट मुझे बहुत अच्छा लगा। आपका मॉर्निंग जो है वो गुड होगा नहीं होगा भाई, आप किसको बोलते हो उस पर भी बहुत निर्भर करता है। बिल्कुल सही बात है, थैंक यू सो मच जी, थैंक यू सो मच। जिस वॉर्म्थ के साथ हम गुड मॉर्निंग बोलते हैं, उसी वॉर्म्थ के साथ जब कोई वापस गुड मॉर्निंग बोले तो सच बताए तो बहुत मजा आ जाता है। और इसी के साथ हम अगला मैसेज पढ़ते हैं। शशिकांत पाटिल जी का मैसेज आया है, उन्होंने एक फोटो भेजा है जिसमें लिखा है गुड मॉर्निंग, हैप्पीनेस इज नॉट द एब्सेंस ऑफ प्रॉब्लम्स, इट्स द एबिलिटी टू डील विद देम। बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही बात है, ये बहुत ही बढ़िया बात कही। हैप्पीनेस के बारे में बहुत सारे लोग कहते हैं कि भाई मैं सक्सेसफुल हो जाऊंगा तो मैं हैप्पी हो जाऊंगा। सो द फर्स्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल इज दैट हैप्पीनेस इज नॉट द बाई प्रोडक्ट ऑफ सक्सेस। कभी भी सक्सेस होने के मिलने के बाद हैप्पी नहीं होते हम, हम इनहेरेंटली जब हैप्पी होते हैं तो सक्सेस उसके साथ आ जाती है। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है जो हमें याद रखनी चाहिए। जुल्फी भाई का मैसेज आया है, जुल्फी भाई ने लिखा है द माइंड इज लाइक वाटर, व्हेन इट्स टर्बुलेंट इट्स डिफिकल्ट टू सी, व्हेन इट्स काम एवरीथिंग बिकम्स क्लियर। गुड मॉर्निंग करके, वाह भाई वाह, ये बिल्कुल सही बात कही। पानी के साथ जो एक उपमा लगाया आपने, ये खाने वाला उपमा नहीं है, फिगर ऑफ स्पीच वाला उपमा बोला है मैंने, बहुत ही बढ़िया लगा मुझे, थैंक यू सो मच जी, थैंक यू सो मच। और ऋषिन का मैसेज आया है, ऋषिन ने एक फोटो भेजा जिसमें लिखा है चेंज इज नेवर इजी बट ऑलवेज पॉसिबल, हैव अ गुड डे, गुड मॉर्निंग करके, थैंक यू सो मच जी, थैंक यू सो मच। आप सभी को काफी बढ़िया और बिंदास दिन में विश करता हूँ। और जानिए अगर आपने अभी अभी ट्यून इन किया है तो इंतजार किस बात का है, 3311063 यह है हमारा नंबर व्हाट्सएप का। तत्काल प्रभाव से तुरंत से पहले अभी के अभी मैसेज कर दीजिए, बताएं हमें कि क्या हाल है आपके। और जल्दी जल्दी बताते हैं यहाँ पे हाल, अब अपने भी हम बताएंगे और भी चीजें हमने प्लान करी है उसके सब बारे में हम बात करेंगे। यहाँ पे कूल सॉन्ग ऑफ द आवर प्ले करते हैं और आगे बढ़ते हैं और कहते हैं जियो बिंदास।
1: रेडियो ऑलिव पर आने वाला गाना कूल सॉन्ग ऑफ द आवर।
2: क्या बात है सर, क्या पर ये बात है।

0: दोहा बैंक और लुलु लाए हैं शॉपिंग का एक रिवॉर्डिंग एक्सपीरियंस।
1: अब अप्लाई कीजिए दोहा बैंक लुलु मास्टर कार्ड प्लैटिनम क्रेडिट कार्ड के लिए और पाइए कतरी रियाल 500 लुलु शॉपिंग वाउचर।
0: लुलु स्टोर्स पर हर स्पेंड के साथ मिल सकता है अप टू 5% सेविंग्स लुलु पॉइंट्स के फॉर्म में।
1: प्लस एंजॉय कीजिए एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस, माई बुक ऑफर्स, डाइनिंग डील्स और लाइफस्टाइल प्रिविलेजेस। बस कार्ड एक्टिवेट कीजिए लुलु पर मिनिमम कतरी रियाल 1 स्पेंड कीजिए और रिवॉर्ड्स का मजा लीजिए।
0: ऑफर वैलिड टिल 30th June 2026। दोहा बैंक लुलु मास्टर कार्ड प्लैटिनम। शॉपिंग नाउ मोर रिवॉर्डिंग। TNC अप्लाई।
2: Malabar Gold and Diamonds Bindas Morning. Malabar Gold and Diamonds, the responsible jeweler. Malabar Gold and Diamonds की हर jewelry piece ethically sourced होती है और आती है Malabar Promise के साथ, जहां मिलती है complete transparency और भरोसा.
3: Commercial Bank, your future grows when your savings grows. Save more, dream bigger. Win up to 5 million riyals with Commercial Bank.
4: In association with Naseem Healthcare, Naseem Surgical and Medical Center, Sea Ring Road. Healthy smiles anytime. For more information, call 4411.

0: वेलकम बैक, यू आर लिसनिंग टू रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम। मैं हूं आपका मेजबान सुदेव। स्टेशन क्लॉक में 6:31 हो रहे हैं और यहां पे जो है ब्लैकबोर्ड स्टोरीज का वक्त आ चुका है।
1: रेडियो ऑलिव प्रेजेंट्स ब्लैकबोर्ड स्टोरीज।
0: ब्लैकबोर्ड स्टोरीज में जो है आज एक बहुत ही प्यारा सा सवाल है। सवाल ये है कि ऐसा कौन सा कॉन्टिनेंट है जिसमें सबसे ज्यादा कंट्रीज हैं? कॉन्टिनेंट विथ मोस्ट नंबर ऑफ कंट्रीज, ये आपको बताना है तत्काल प्रभाव से, तुरंत से पहले, अभी के अभी आप जो है मुझे जवाब भेज सकते हैं 3311063 पर। आप मुझे जवाब भेज सकते हैं, बता सकते हैं मुझे सवाल का जवाब क्या है। जल्दी जल्दी आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, ऑडियो नोट भेज सकते हैं, टेक्स्ट मैसेज भेज सकते हैं। तो जानी इंतजार किस बात का है, जल्दी जल्दी मैसेज कीजिए। और यहाँ पे हम गाना प्ले करते हैं जन्नत टू का। स्टे ट्यून्ड, यह है रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम और मैं हूँ आपका मेजबान सुदेव। जियो बिंदास।

0: सुनते हैं नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM. सोचो अगर सेविंग से आप बन जाओ मिलियनेयर, कमर्शियल बैंक के सेव एंड विन कैंपेन में भाग लीजिए.
1: हर 10,000 कतरी रियाल सेविंग ग्रोथ पे मिलेगा एक कूपन, या सिर्फ 50% सैलरी सेव करो एंड एंटर द ड्रॉ.
0: न्यू कस्टमर हो तो अकाउंट खोलो और फर्स्ट सैलरी ट्रांसफर पे गारंटीड चांस टू विन,
1: और 9 महीने की कंसिस्टेंट सैलरी ट्रांसफर के साथ मेगा ड्रॉ में एंट्री पक्की.
0: तो फिर सोचना क्या, अगले मिलियनेयर आप हो सकते हो. आज ही शुरू करो सेविंग्स, कमर्शियल बैंक, सेव and win.
2: Grow your brand across Qatar's key audiences. Connect with Hindi listeners on Radio Olive 106.3 FM, Malayalam audiences on Radio Suno 91.7 FM, and Arabic listeners on Tetkar 107.4 FM. On-air visibility supported by performance-driven digital marketing campaigns. Simple, effective, integrated. Call 3009-1063 or 3082-1063.
3: Malabar Gold and Diamonds Bindas Morning. Malabar Gold and Diamonds, the responsible jeweler. Malabar Gold and Diamonds की हर jewelry piece ethically sourced होती है और आती है Malabar Promise के साथ, जहां मिलती है complete transparency और भरोसा.
2: Commercial Bank, your future grows when your savings grows. Save more, dream bigger. Win up to 5 million riyals with Commercial Bank.
4: In association with Naseem Healthcare, Naseem Surgical and Medical Center, Sea Ring Road. Healthy smiles anytime. For more information, call 4411 1133.

वेलकम बैक, यू आर लिसनिंग टू रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम। मैं हूं आपका मेजबान सुदेव। और भाई यहाँ पे हमारे पास जो है थोड़े मैसेजेस आए हैं। मैंने एक सवाल पूछा था कि ऐसा कौन सा कॉन्टिनेंट है जिसमें सबसे ज्यादा कंट्रीज हैं, और मेरे पास थोड़े जो है मैसेजेस आए हैं। मुझे मैसेज भेजा है वीएसआर मूर्ति रमेश जी ने। उन्होंने बोला है कि गुड मॉर्निंग सुदेव जी, दिस इज अफ्रीका, मूर्ति करके उन्होंने मैसेज भेजा। थैंक यू सो मच मूर्ति जी। और उसके साथ साथ ऋषिन का मैसेज आया है। ऋषि ने लिखा है अफ्रीका इज द आंसर। उसके साथ साथ मुझे अनिल जी का मैसेज आया है, दीपक जी का मैसेज आया है, अहमद भाई का मैसेज आया है, अली भाई का मैसेज आया है, रश्मिका जी का मैसेज आया है। इन सब ने अफ्रीका लिखा है और आपने बिल्कुल बढ़िया तरीके से सही जवाब दिया है। आपके लिए बजेंगे यहाँ पे तालियां। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, अच्छा लगा मुझे। और इसी खुशी में जो है हम एक बहुत ही बढ़िया गाना सुनते हुए जरा आगे बढ़ेंगे अदनान सामी की आवाज में। Stay tuned, यह है रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम और मैं हूं आपका मेजबान सुदेव। जियो बिंदास।

0: सुन रहे हैं कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM। दोहा बैंक और लुलू लाए हैं शॉपिंग का एक रिवॉर्डिंग एक्सपीरियंस।
1: अब अप्लाई कीजिए दोहा बैंक लुलू मास्टर कार्ड प्लैटिनम क्रेडिट कार्ड के लिए और पाइए कतरी रियाल 500 लुलू शॉपिंग वाउचर।
0: लुलू स्टोर्स पर हर स्पेंड के साथ मिल सकता है अप टू 5% सेविंग्स लुलू पॉइंट्स के फॉर्म में।
1: प्लस एंजॉय कीजिए एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस, माई बुक ऑफर्स, डाइनिंग डील्स और लाइफस्टाइल प्रिविलेजेस। बस कार्ड एक्टिवेट कीजिए लुलू पर मिनिमम कतरी रियाल 1 स्पेंड कीजिए और रिवॉर्ड्स का मजा लीजिए।
0: ऑफर वैलिड टिल 30th June 2026। दोहा बैंक लुलू Mastercard Platinum. Shopping now more rewarding. TNC apply.
2: Football boundaries नहीं जानता और कतर का कल्चर कोई लिमिट्स नहीं जानता। इस वर्ल्ड कप जब कतरी फैंस अमेरिका पहुंचे तो उन्होंने सिर्फ मैच में पॉइंट्स नहीं जीता बल्कि सबका दिल जीत लिया। अपने ट्रेडिशनल कतरी थोप में फुल प्राइड के साथ उन्होंने अमेरिकन स्टेडियम में कतर के कल्चरल वैल्यूज को शोकेस किया। नो मैटर वेयर द गेम इज, आइडेंटिटी हमेशा साथ रहती है और यही है द हिवारी इनिशिएटिव जिसकी पूरी दुनिया दीवानी है। कल्चर ट्रैवल्स, फुटबॉल कनेक्ट्स एंड हिवारी इज ब्रिंगिंग कतर टू द वर्ल्ड।

0: एंटरटेनमेंट की या कोई सीमा नहीं, बनाइए अपने मॉर्निंग को बिंदास मॉर्निंग विद आरजे सुदेव, हर सुबह 6 से 10 ओनली ऑन रेडियो ओनली 106.3 एफएम जियो बिंदास।
1: मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स बिंदास मॉर्निंग। मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स द रिस्पॉन्सिबल ज्वेलर। मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स की हर ज्वेलरी पीस एथिकली सोर्स्ड होती है और आती है मलाबार प्रॉमिस के

वेलकम बैक, यू आर लिसनिंग टू रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम। मैं हूं आपका मेजबान सुदेव। स्टेशन क्लॉक में अभी 7:06 हो रहे हैं और यहाँ पे चलिए हम जरा देख लेते हैं अभी का तापमान कैसा है। अभी जो है देखने को मिल रहा है 32 डिग्री सेल्सियस। काफी सनी डे दिखाई दे रहा है और आज हवा अभी इस वक्त जो है 4 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से बह रही है और मेरे मन में यही सवाल है कि क्या ये हवा मुझे उड़ा के तो नहीं ले जाएगी। ना मुन्ना ना, ये हवा कहीं नहीं ले जाएगी। और अभी ये देखने को मिल रहा है कि आज का हाईएस्ट टेम्परेचर जाएगा 37 डिग्री सेल्सियस, लोएस्ट जाएगा 29 डिग्री सेल्सियस, जो कुछ दिनों में थोड़ा कम हमें महसूस हो रहा है, ऐसा ही रहे, एकदम से बढ़ ना जाए गर्मी। जिस तरीके से अभी एक जो एक प्रेडिक्शन आया है वैसा ही रहे, हम सब यही चाहते हैं, बट देखते हैं क्या होता है। उसके साथ साथ जरा मुझे नज़ारे दिखाइए यार, बताइए बाहर क्या क्या है, क्या क्या नज़ारे हैं, कैसा है सब कुछ, मौसम कैसा है आपके लिए, आप लोग बाहर हैं, मैं स्टूडियो के अंदर हूँ तो बाहर क्या क्या चल रहा है उसके बारे में तो मैं बिल्कुल भी वाकिफ नहीं हूँ, तो मुझे प्लीज़ बताइए और फोटोज भेजिए। और उसके साथ साथ गाने सुनिए, एंजॉय करिए और कहते रहिए जियो बिंदास।

0: आप सुन रहे हैं रेडियो ओलिव 106.3 FM जियो बिंदास
1: रिंग फॉर द न्यूली मैरिड क्यूट लिटिल बैंगल फॉर द न्यूबॉर्न।
2: अरे यार हॉलीडे सीजन इज हियर और फिर वही गिफ्टिंग का टेंशन। फिर मालबार गोल्ड एंड डायमंड्स गोल्ड एंड समर के साथ आइए फ्री कैश वाउचर्स ऑन डायमंड एंड प्रेशियस जेम ज्वेलरी परचेजेस प्लस एक्सचेंज योर गोल्ड ज्वेलरी एंड अपग्रेड टू द लेटेस्ट डिजाइंस विदाउट एनी लॉस। और सुनो देयर इज मोर विद द इंपोर्ट ड्यूटी रिविजन इन इंडिया यू कैन नाउ सेव अप टू 15% ऑन गोल्ड प्राइसेस हियर इन द GCC। विजिट मालबार गोल्ड एंड डायमंड्स टुडे।
3: लाइफ 24/7 चलती है तो डेंटल केयर सिर्फ ऑफिस आवर्स में क्यों मिले? नसीम सर्जिकल एंड मेडिकल सेंटर सी रिंग रोड का डेंटल डिपार्टमेंट अब है 24/7 ओपन। रूटीन केयर ट्रीटमेंट या डेंटल इमरजेंसी एक्सपर्ट डेंटिस्ट और एडवांस फैसिलिटीज के साथ केयर हर वक्त अवेलेबल है। कॉल 4411133। ऑल्सो विजिट आवर डेंटल सेंटर्स इन अजीजिया और मुंतजा। नसीम सर्जिकल एंड मेडिकल सेंटर हेल्दी स्माइल्स एनी टाइम।
4: सोचो अगर सेविंग से आप बन जाओ मिलियनेयर कमर्शियल बैंक के सेव एंड विन कैंपेन में भाग लीजिए।
5: हर 10,000 कतरी रियाल सेविंग ग्रोथ पे मिलेगा एक कूपन या सिर्फ 50% सैलरी सेव करो एंड एंटर द ड्रॉ।
4: न्यू कस्टमर हो तो अकाउंट खोलो और फर्स्ट सैलरी ट्रांसफर पे गारंटीड चांस टू विन
5: और 9 महीने की कंसिस्टेंट सैलरी ट्रांसफर के साथ मेगा ड्रॉ में एंट्री पक्की।
4: तो फिर सोचना क्या अगले मिलियनेयर आप हो सकते हो। आज ही शुरू करो सेविंग्स कमर्शियल बैंक सेव and win.
6: Grow your brand across Qatar's key audiences. Connect with Hindi listeners on Radio Olive 106.3 FM, Malayalam audiences on Radio Suno 91.7 FM, and Arabic listeners on Tetkar 107.4 FM. On-air visibility supported by performance-driven digital marketing campaigns. Simple, effective, integrated. Call 3009-1063 or 3082-1063.
7: नमस्कार मैं हूँ आर माधवन।
8: हाय दिस इज विपाशा बासु।
9: हाय आई एम राजकुमार राव।
10: हाय मैं हूँ प्रियंका चोपड़ा।
11: हाय दिस इज दिशा पार्डी।
7: आप सुन रहे हैं रेडियो ओलिव 106.3 FM।
12: मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स बिंदास मॉर्निंग। मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स द रिस्पॉन्सिबल ज्वेलर। मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स की हर ज्वेलरी पीस एथिकली सोर्स्ड होती है और आती है मलाबार प्रॉमिस के साथ जहां मिलती है कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी और भरोसा।
6: कमर्शियल बैंक योर फ्यूचर ग्रोस व्हेन योर सेविंग्स ग्रोस। सेव मोर ड्रीम बिगर विन अप टू 5 मिलियन रियाल्स विद कमर्शियल बैंक
3: इन एसोसिएशन विद नसीम हेल्थ केयर। नसीम सर्जिकल एंड मेडिकल सेंटर सी रिंग रोड हेल्दी स्माइल्स एनी टाइम। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 4411133।

0: वेलकम बैक, यू आर लिसनिंग टू रेडियो ओलिव 106.3 एफएम। मैं हूं आपका मेजबान सुदेव। स्टेशन क्लॉक में 7:19 हो रहे हैं और यहाँ पे जो है मेरे पास एक मैसेज आया है, मुझे मैसेज भेजा है सामी भाई ने। उन्होंने बोला है कि अस्सलाम वालेकुम सुदेव भाई, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम भाई, मैं बढ़िया, बहुत अच्छा चल रहा है। आप कैसे हैं बताइए, क्या हाल है? सब बढ़िया है मैं उम्मीद करता हूँ, क्योंकि यार बहुत टाइम से कुछ मतलब मैसेज देखे नहीं थे मैंने आपके, तो सब बढ़िया चल रहा है मेरे साइड से, तो सब अच्छा ही है। आप बताइए क्या क्या हाल है। मुझे संधु भाई का मैसेज आया है, संधु भाई ने मैसेज किया है, उन्होंने लिखा है कि गुड मॉर्निंग कदर हरपाल संधु फ्रॉम दुकान। मैं बढ़िया जी, आप बताइए क्या हाल है, कैसा चल रहा है सब कुछ, और कैसी चल रही है जिंदगी, और वीकेंड के क्या प्लान है। गले में एकदम से खराश सी आ गई, इसलिए मैंने म्यूजिक का वॉल्यूम बढ़ा दिया। तो मैं काम करता हूँ, मैं ना दौड़ के जाके पानी पीकर आता हूँ। आप फिलहाल यहाँ पे बैठिए, गाने वाने सुनिए, एंजॉय करिए, और उसके साथ साथ मैं याद दिला दूं कि थोड़ी देर बाद जब हम वापस आएंगे तो फिट है तो हिट है, मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात आपको बताएंगे, तो तैयार रहिएगा। तब तक के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और कहते रहिए जियो बिंदास।
1: अब सुनिए ऑलिव का जबरदस्त हिट।

0: दोहा बैंक और लुलू लाए हैं शॉपिंग का एक रिवॉर्डिंग एक्सपीरियंस।
1: अब अप्लाई कीजिए दोहा बैंक लुलू मास्टर कार्ड प्लैटिनम क्रेडिट कार्ड के लिए और पाइए कतरी रियाल 500 लुलू शॉपिंग वाउचर।
0: लुलू स्टोर्स पर हर स्पेंड के साथ मिल सकता है अप टू 5% सेविंग्स लुलू पॉइंट्स के फॉर्म में।
1: प्लस एंजॉय कीजिए एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस, माय बुक ऑफर्स, डाइनिंग डील्स और लाइफस्टाइल प्रिविलेजेस। बस कार्ड एक्टिवेट कीजिए लुलू पर मिनिमम कतरी रियाल 1 स्पेंड कीजिए और रिवॉर्ड्स का मजा लीजिए।
0: ऑफर वैलिड टिल 30th June 2026। दोहा बैंक लुलू मास्टर कार्ड प्लैटिनम। शॉपिंग नाउ मोर रिवॉर्डिंग। टीएनसी अप्लाई।
2: जैकमैन की पावर पैक्ड रेंज, हेवी ट्रक्स, टिपर्स, ट्रेलर्स और बूम ट्रक्स, दमदार परफॉर्मेंस और भरोसा सिर्फ कार्मिल के साथ। विजिट कार्मिल ग्रुप नाउ।
3: इस खेल में प्लेयर प्लेयर नहीं वॉरियर कहलाते हैं। यहाँ हर गोल पे एड्रेनलिन रश हाई होता है। यहाँ हर चोट एक मेडल है। हारना मना है और डरना गुनाह है। यहाँ सेलिब्रेशन के लिए ढोल नहीं, दिलों की धड़कन शोर करती है। और ऑडियंस चीयर नहीं, रोर करती है। बिकॉज इट्स नॉट जस्ट अ गेम, इट्स एन इमोशन। फीफा की हर डिटेल के लिए सुनिए रेडियो ऑलिव
4: इन एसोसिएशन विद।
5: डाउनलोड द सिटी एक्सचेंज मोबाइल ऐप नाउ टू सेंड मनी क्विकली एट द बेस्ट एक्सचेंज रेट्स।
6: ऑल्सो पाम स्विस गोल्ड बार्स आर नाउ अवेलेबल एट द बेस्ट प्राइस एट सिटी एक्सचेंज,
5: योर ट्रस्टेड रेमिटेंस पार्टनर।
7: Doctor on air. Brought to you by Naseem Healthcare.
8: Do you know the number one reason why adults lose their teeth is not because of cavities? It is because of gum disease, also called as periodontitis. Hello, my name is Dr. Mohammed Basil. I'm a periodontist from Naseem Medical Center. Now, the starchy and the sugary food debris that is left behind in your mouth after each of our meals interacts with certain bacteria and forms a soft coating on the teeth called as plaque, which can be removed by proper toothbrushing. But if left behind, it hardens to form something called as calculus or tartar, which can only be removed by professional cleaning. When untreated, it irritates the gum tissues, leading to inflammation of the gums. This inflammation then spreads to the bone supporting your teeth, causing bone loss and ultimately loss of your teeth. So make sure you visit your dentist before you go from a beautiful smile to a toothless smile.
7: Doctor on air. Brought to you by Naseem Healthcare.
9: Malabar Gold and Diamonds Bindas Morning. Malabar Gold and Diamonds, the responsible jeweler. Malabar Gold and Diamonds की हर jewelry piece ethically sourced होती है और आती है Malabar Promise के साथ, जहां मिलती है complete transparency और भरोसा.
10: Commercial Bank, your future grows when your savings grows. Save more, dream bigger. Win up to 5 million riyals with Commercial Bank.
11: In association with Naseem Healthcare, Naseem Surgical and Medical Center, Sea Ring Road. Healthy smiles anytime. For more information, call 4411

0: वेलकम बैक, यू आर लिसनिंग टू रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम। मैं हूं आपका मेजबान सुदेव। स्टेशन क्लॉक में 7:31 हो रहे हैं और यहां पे भाई वक्त हो चुका है फिट है तो हिट है का।
1: फिट है तो हिट है,
0: फिट है तो हिट है में आज हम नेजल ब्रीदिंग के बारे में एक और एस्पेक्ट जो है आपको बताना चाहेंगे। मैं कई दफा आपको समझा चुका हूँ कि सांस लेना एक बहुत ही बेसिक चीज है, मगर सांस सही तरीके से लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। मोस्ट ऑफ द टाइम हम जो है शैलो ब्रीदिंग करते हैं, मगर अगर हम नेजल ब्रीदिंग करेंगे, डीप बेली ब्रीदिंग करेंगे, तो बहुत ही अच्छा रहेगा हमारे बॉडी के लिए। एक, बॉडी काम रहेगी, हमारा नर्वस सिस्टम काम रहेगा। दूसरा ये है कि जब हम ब्रीदिंग जब अच्छे से करते हैं तो हम अपने इमोशंस को भी अच्छे से रेगुलेट कर सकते हैं। तो फैक्ट मैंने ये पढ़ा है कि नेजल ब्रीदिंग एयर को फिल्टर और कंडीशन करने में हेल्प करता है। देखिए ये फैक्ट जो है बचपन में 6 क्लास में भी हमने पढ़ाई होगा, मगर कहीं ना हम भूल जाते हैं। रोजमर्रा की जिंदगी की भागदौड़ में जब हम थक के बैठ जाते हैं तो भूल जाते हैं कि भाई सांस नाक से लेना है और मुंह से छोड़ना है। तो ध्यान से सुनिएगा, रिसर्च ये दिखाती है कि नाक सिर्फ सांस लेने का रास्ता नहीं है, बल्कि एक नेचुरल एयर कंडीशनिंग एंड फिल्ट्रेशन सिस्टम की तरह काम करती है। जब आप नाक से सांस लेते हो तो इनकमिंग एयर जो है लंग्स तक पहुंचने से पहले प्रोसेस होती है। नेजल ब्रीदिंग के दौरान नाक के टाइनी हेयर जो है वो म्यूकस और डस्ट और एलर्जेंस और बाकी सारे पार्टिकल्स को ट्रैप कर लेते हैं। एयर को बॉडी टेम्परेचर के करीब वार्म किया जाता है, ड्राई एयर को मॉइस्चराइज किया जाता है ताकि रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट जो है उसमें इरिटेशन ना हो। इससे थ्रोट और एयरवेज पर स्ट्रेस कम पड़ता है, स्पेशली ड्राई या डस्टी एनवायरनमेंट में। रिसर्च ये भी सजेस्ट करती है कि नेसल पैसेजेस नाइट्रिक ऑक्साइड प्रोड्यूस करते हैं जो एयर फ्लो और ऑक्सीजन एक्सचेंज को भी अच्छे से सपोर्ट करते हैं। इसीलिए लाइट एक्टिविटीज और डेली ब्रीदिंग के लिए नेजल ब्रीदिंग को जनरली बेनिफिशियल माना जाता है। हाँ, इंटेंस एक्सरसाइज के दौरान बॉडी को ऑक्सीजन की डिमांड ज्यादा होती है, इसलिए माउथ ब्रीदिंग नेचुरली इंक्रीज हो सकती है। ये होता है, गलत बात नहीं है, बट कोशिश करो कि आप नाक से ही सांस लें। और शॉर्ट में देखिए, अगर मैं बोलूँ तो यही है कि भाई नाक से सांस लेना जो है हमारे लंग्स तक पहुंचने वाली हवा को फिल्टर करता है, वार्म और ह्यूमिडिफाई करता है, जिससे ब्रीदिंग सिस्टम को एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन और सपोर्ट मिलता है। नाउ आई वंडर कि यार पहले के लोग जब बोलते थे यार नाक कटा दी, उसके पीछे ये सारे कोनोटेशंस भी शायद होते होंगे या नहीं होते होंगे, मगर नाक को हल्के में नहीं लेना है। और यही बात बताते हुए हम आगे बढ़ते हैं, मीका पाजी का गाना प्ले करते हैं, अपना सपना मनी मनी मूवी का। स्टे ट्यून्ड, यह रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम और मैं हूं आपका मेजबान सुदेव। जियो बिंदास।

0: सुन रहे हैं कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM बिंदास कमर्शियल बैंक प्रेजेंट्स सीबी 2026 मिलियन रियाल्स ड्रीम।
1: अब सिर्फ सेविंग्स नहीं, सपने ग्रो होंगे। जीतिए पूरे 5 मिलियन रियाल्स कैश प्राइजेस।
0: जीतने के चार रास्ते। पहला, अपना अकाउंट बैलेंस बढ़ाइए, हर 10,000 रियाल्स ग्रोथ पर पाइए एक कूपन।
1: दूसरा, अगर सैलरी 4,000 प्लस है या 50% सेव किया है तो आप एलिजिबल है।
0: तीसरा, नए कस्टमर्स को पहली सैलरी या 10,000 फंडिंग पर गारंटीड कूपन। और चौथा, 9 महीने रेगुलर सैलरी पर पाइए एक एक्स्ट्रा कूपन और मेगा ड्रॉ टिकट।
2: योर डेली सरप्राइज इज हियर। अपना हाला रिचार्ज करो और पाओ फ्री डेटा या मिनट्स का सरप्राइज। क्लेम करो ओरिडू ऐप पर। एक्सपीरियंस मोर विद ओरिडू।
3: दोहा बैंक और लुलु लाए हैं शॉपिंग का एक रिवॉर्डिंग एक्सपीरियंस।
4: अब अप्लाई कीजिए दोहा बैंक लुलु मास्टर कार्ड प्लैटिनम क्रेडिट कार्ड के लिए और पाइए कतरी रियाल 500 लुलु शॉपिंग वाउचर।
3: लुलु स्टोर्स पर हर स्पेंड के साथ मिल सकता है अप टू 5% सेविंग्स लुलु पॉइंट्स के फॉर्म में।
4: प्लस एंजॉय कीजिए एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस, माय बुक ऑफर्स, डाइनिंग डील्स और लाइफस्टाइल प्रिविलेजेस। बस कार्ड एक्टिवेट कीजिए लुलु पर, मिनिमम कतरी रियाल एक स्पेंड कीजिए और रिवॉर्ड्स का मजा लीजिए।
3: ऑफर वैलिड टिल 30th June 2026। दोहा बैंक Lulu Mastercard Platinum. Shopping now more rewarding. TNC apply.
5: Grow your brand across Qatar's key audiences. Connect with Hindi listeners on Radio Olive 106.3 FM, Malayalam audiences on Radio Suno 91.7 FM, and Arabic listeners on Tetkar 107.4 FM. On-air visibility supported by performance-driven digital marketing campaigns. Simple, effective, integrated. Call 3009-1063 or 3082-1063.
6: Malabar Gold and Diamonds Bindas Morning. Malabar Gold and Diamonds, the responsible jeweler. Malabar Gold and Diamonds की हर jewelry piece ethically sourced होती है और आती है Malabar Promise के साथ, जहां मिलती है complete transparency और भरोसा.
5: Commercial Bank, your future grows when your savings grows. Save more, dream bigger. Win up to 5 million riyals with Commercial Bank.
7: In association with Naseem Healthcare, Naseem Surgical and Medical Center, Searing Road. Healthy smiles anytime. For more information, call 4411 1133.

वेलकम बैक, यू आर लिसनिंग टू रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम। मैं हूं आपका मेजबान सुदेव। मैं यहाँ पे भाई एक काफी प्यारी एक बात बताना चाहूंगा, एक लोकल अपडेट बताना चाहूंगा, आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। कतर की अलहोश गैलरी ने अपने समर 2026 एग्जीबिशन के बारे में जो है कुछ इन्फॉर्मेशन दी है। उन्होंने अपना रिटर्निंग टू नेचर समर 2026 एग्जीबिशन जो है लॉन्च किया है, जिसमें 57 आर्टिस्ट कतर और दुनिया के अलग अलग देशों से जो है पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इस एग्जीबिशन का जो मेन थीम है उसके बारे में जरा बात करते हैं। इंसान और नेचर के बीच बदलते रिश्ते को एक्सप्लोर करना, नेचर को सिर्फ एक फिजिकल एनवायरमेंट नहीं बल्कि मेमोरी, रिफ्लेक्शन, बिलोंगिंग और कोएग्जिस्टेंस की जगह के रूप में देखना, लोगों को टेक्नोलॉजी और मॉडर्न लाइफ के बीच नेचर के इंपॉर्टेंस पर दोबारा सोचने के लिए इंस्पायर करना, ये है इनका मेन थीम। और इसमें क्या क्या खासियत है उसके बारे में अगर हम बात करें तो ये पता चलता है कि पेंटिंग, फोटोग्राफी, स्कल्पचर, इंस्टॉलेशन आर्ट, क्राफ्ट्स और मिक्स्ड मीडिया जैसे आर्ट फॉर्म्स जो यहाँ पे डिस्प्ले किए जाएंगे। एग्जीबिशन में कतर के साथ साथ बहरीन, सऊदी अरेबिया, ओमान, इटली, पोर्चुगल और रशिया के आर्टिस्ट भी इसमें शामिल हैं। इमर्जिंग और एस्टैब्लिश्ड आर्टिस्ट को एक साथ जो है प्लेटफॉर्म दिया गया है। और ये एग्जीबिशन दिखाता है कि टेक्नोलॉजी और मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से हम कभी कभी नेचर से दूर हो जाते हैं, इसलिए जरूरी है कि हम सस्टेनेबिलिटी, क्रिएटिविटी, क्राफ्ट्समैनशिप और एनवायरमेंट के साथ अपना कनेक्शन मजबूत रखें। तो यही बात करते हुए जरा हम भी आगे बढ़ते हैं, गाना प्ले करते हैं और कहते हैं जियो बिंदास।

0: सुनते हैं नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM.
1: इस वेकेशन प्यार से हमारा इंतजार करने वाले अपनों को एक गोल्डन सरप्राइज क्यों ना दे. मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स के गोल्डन समर ऑफर के साथ डायमंड एंड प्रेशियस जेम ज्वेलरी खरीदने पर पाइए फ्री कैश वाउचर्स. अपनी पुरानी गोल्ड ज्वेलरी को एक्सचेंज कीजिए विदाउट एनी लॉस. और अब विद द इंपोर्ट ड्यूटी रिविजन इन इंडिया यू कैन नाउ सेव अप टू 15% ऑन गोल्ड प्राइसेस हियर इन जीसीसी. विजिट मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स टुडे.
2: दोहा बैंक और लुलु लाए हैं शॉपिंग का एक रिवॉर्डिंग एक्सपीरियंस.
3: अब अप्लाई कीजिए दोहा बैंक लुलु मास्टर कार्ड प्लैटिनम क्रेडिट कार्ड के लिए और पाइए कतरी रियाल 500 लुलु शॉपिंग वाउचर.
2: लुलु स्टोर्स पर हर स्पेंड के साथ मिल सकता है अप टू 5% सेविंग्स लुलु पॉइंट्स के फॉर्म में.
3: प्लस एंजॉय कीजिए एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस, माई बुक ऑफर्स, डाइनिंग डील्स और लाइफस्टाइल प्रिविलेजेस. बस कार्ड एक्टिवेट कीजिए लुलु पर मिनिमम कतरी रियाल 1 स्पेंड कीजिए और रिवॉर्ड्स का मजा लीजिए.
2: ऑफर वैलिड टिल 30th June 2026. दोहा बैंक Lulu Mastercard Platinum. Shopping now more rewarding. TNC apply.
4: Football boundaries नहीं जानता और कतर का कल्चर कोई लिमिट्स नहीं जानता. इस वर्ल्ड कप जब कतरी फैंस अमेरिका पहुंचे तो उन्होंने सिर्फ मैच में पॉइंट्स नहीं जीता बल्कि सबका दिल जीत लिया. अपने ट्रेडिशनल कतरी थोप में फुल प्राइड के साथ उन्होंने अमेरिकन स्टेडियम में कतर के कल्चरल वैल्यूज को शोकेस किया. नो मैटर वेयर द गेम इज आइडेंटिटी हमेशा साथ रहती है और यही है द हिवारी इनिशिएटिव जिसकी पूरी दुनिया दीवानी है. कल्चर ट्रैवल्स फुटबॉल कनेक्ट्स एंड हिवारी इज ब्रिंगिंग कतर टू द वर्ल्ड.

0: एंटरटेनमेंट की या कोई सीमा नहीं, बनाइए अपने मॉर्निंग को बिंदास मॉर्निंग विद आरजे सुदेव, हर सुबह 6 से 10 ओनली ऑन रेडियो ओलिव 106.3 एफएम जियो बिंदास।
1: मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स बिंदास मॉर्निंग, मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स द रिस्पॉन्सिबल ज्वेलर। मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स की हर ज्वेलरी पीस एथिकली सोर्स्ड होती है और आती है मलाबार प्रॉमिस के साथ, जहां मिलती है कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी और भरोसा।
2: कमर्शियल बैंक, योर फ्यूचर ग्रोस व्हेन योर सेविंग्स ग्रोस। सेव मोर, ड्रीम बिगर, विन अप टू 5 million rials विद कमर्शियल बैंक
3: इन एसोसिएशन विद नसीम हेल्थ केयर, नसीम सर्जिकल एंड मेडिकल सेंटर, सी रिंग रोड। हेल्दी स्माइल्स एनी टाइम। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 4441 1133।

0: A ring for the newly married? Cute little bangle for the newborn? Arey yaar, holiday season is here aur phir wahi gifting ka tension. Phir Malabar Gold and Diamonds, Golden Summer ke saath, buy a free cash vouchers on diamond and precious gem jewelry purchases. Plus, exchange your gold jewelry and upgrade to the latest designs without any loss. Aur suno, there's more. With the import duty revision in India, you can now save up to 15% on gold prices here in the GCC. Visit Malabar Gold and Diamonds today.
1: सोचो अगर सेविंग से आप बन जाओ मिलियनेयर, कमर्शियल बैंक के सेव एंड विन कैंपेन में भाग लीजिए।
2: हर 10,000 कतरी रियाल सेविंग ग्रोथ पे मिलेगा एक कूपन, या सिर्फ 50% सैलरी सेव करो एंड एंटर द ड्रॉ।
1: न्यू कस्टमर हो तो अकाउंट खोलो और फर्स्ट सैलरी ट्रांसफर पे गारंटीड चांस टू विन,
2: और 9 महीने की कंसिस्टेंट सैलरी ट्रांसफर के साथ मेगा ड्रॉ में एंट्री पक्की।
1: तो फिर सोचना क्या, अगले मिलियनेयर आप हो सकते हो। आज ही शुरू करो सेविंग्स, कमर्शियल बैंक, सेव एंड विन।
3: नमस्कार, मैं हूँ आर माधवन। आप सुन रहे हैं रेडियो 106.3 FM।

0: वेलकम बैक, यू आर लिसनिंग टू रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम। मैं हूं आपका मेजबान सुदेव। स्टेशन क्लॉक में 8:19 हो रहे हैं और यहाँ पे जो है हम आपके साथ शेयर करना चाहेंगे कुछ बातें जो हैं उस गेम के बारे में, उस खेल के बारे में जो है ब्लॉकबस्टर।
1: ये खेल है ब्लॉकबस्टर।
2: In association with
3: download the City Exchange mobile app now to send money quickly at the best exchange rates.
4: Also, Palm Swiss Gold Bars are now available at the best price at City Exchange,
3: your trusted remittance partner.
0: और यहाँ पे चलिए जरा एक बार देख लेते हैं कि क्या क्या चल रहा है, कैसे कैसे हो रहा है। कल भाई पोर्चुगल और कांगो का मैच था, डीआर कांगो का मैच था। थोड़ा मैंने देखा मैच, पोर्चुगल और कांगो में काफ़ी बढ़िया मुकाबला था। स्पेशली कांगो के लिए यार मेरा दिल मतलब बाग बाग हो गया उनका गेम देख के। क्या बढ़िया तरीके से डिफेंसिव उन्होंने अपना अप्रोच रखा। स्टार्टिंग में ही जो है गेम में पोर्चुगल ने लीड ले ली थी, मगर हाफ टाइम के जस्ट पहले इंजरी टाइम में जो है कांगो ने इक्वलाइज कर दिया था। उसके बाद पूरा हाफ जो है उन्होंने पकड़े रखा। क्रिस्टियानो रोनाल्डो का 6th अपीयरेंस है वर्ल्ड कप का, एक काफ़ी ड्रीम अपीयरेंस है, और उसकी स्टार्टिंग जो है उतनी फेवरेबल तरीके से नहीं हुई है। और उसके साथ साथ इंग्लैंड और क्रोएशिया की मैच की अगर हम बात करें तो 4-2 से इंग्लैंड ने जो है मैच जीत लिया। हैरी केन तो भाई तूफान बनकर जो है ग्राउंड में भाग रहा था और 2 भी उन्होंने स्कोर किए हैं। और आज के जो कुछ मैचेस हुए हैं, जैसे कि घाना और पनामा के बीच में मैच हुआ जिसमें 1-0 से घाना ने मैच को जीता। उज़्बेकिस्तान और कोलंबिया के बीच में कोलंबिया ने 3-1 से मैच जीता। उज़्बेकिस्तान का ये पहला क्या कहते हैं फीफा वर्ल्ड कप है, और 3-1 से जो है कोलंबिया से वो हार गए। और आज और जो मैचेस होने वाले हैं वो है शकिया और साउथ अफ्रीका के बीच में, और उसके साथ साथ स्विट्ज़रलैंड एंड बोस्निया हर्ज़ेगोविना के बीच में होने वाला है। और काफ़ी लोग जो हैं एक्साइटेड हैं इसके लिए, इन मैचेस के लिए, स्पेशली स्विट्ज़रलैंड के मैच के लिए, क्योंकि देखिए उसके बाद जो है स्पेशली कतर के मैच के बाद, ड्रॉ के बाद वो किस तरीके से एक कमबैक करेंगे इसमें देखना पड़ेगा। और कतर का मैच है जो है वो कल है, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। अभी फिलहाल यहाँ पे कूल सॉन्ग ऑफ द आवर सुनते हुए आगे बढ़ते हैं और कहते हैं जियो बिंदास।
2: रेडियो ऑलिव पर आने वाला गाना कूल सॉन्ग ऑफ द आवर।
5: क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है।

0: सुनते हैं नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM।
1: Your daily surprise is here. अपना हाला रिचार्ज करो और पाओ फ्री डेटा या मिनट्स का सरप्राइज. क्लेम करो ओरिडो ऐप पर. एक्सपीरियंस मोर विद ओरिडो.
2: दोहा बैंक और लुलू लाए हैं शॉपिंग का एक रिवॉर्डिंग एक्सपीरियंस.
3: अब अप्लाई कीजिए दोहा बैंक लुलू मास्टर कार्ड प्लैटिनम क्रेडिट कार्ड के लिए और पाइए कतरी रियाल 500 लुलू शॉपिंग वाउचर.
2: लुलू स्टोर्स पर हर स्पेंड के साथ मिल सकता है अप टू 5% सेविंग्स लुलू पॉइंट्स के फॉर्म में.
3: प्लस इंजॉय कीजिए एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस, माई बुक ऑफर्स, डाइनिंग डील्स और लाइफस्टाइल प्रिविलेजेस. बस कार्ड एक्टिवेट कीजिए लुलू पर मिनिमम कतरी रियाल 1 स्पेंड कीजिए और रिवॉर्ड्स का मजा लीजिए.
2: ऑफर वैलिड टिल 30th June 2026. दोहा बैंक Lulu Mastercard Platinum. Shopping now more rewarding. TNC apply.
4: Grow your brand across Qatar's key audiences. Connect with Hindi listeners on Radio Olive 106.3 FM, Malayalam audiences on Radio Suno 91.7 FM, and Arabic listeners on Tetkar 107.4 FM. On-air visibility supported by performance-driven digital marketing campaigns. Simple, effective, integrated. Call 3009-1063 or 3082-1063.
5: Malabar Gold and Diamonds Bindas Morning. Malabar Gold and Diamonds, the responsible jeweler. Malabar Gold and Diamonds की हर jewelry piece ethically sourced होती है और आती है Malabar Promise के साथ, जहां मिलती है complete transparency और भरोसा.
4: Commercial Bank, your future grows when your savings grows. Save more, dream bigger. Win up to 5 million riyals with Commercial Bank.
6: In association with Naseem Healthcare, Naseem Surgical and Medical Center, Sea Ring Road. Healthy smiles anytime. For more information, call 4411 1133.

0: वेलकम बैक, यू आर लिसनिंग टू रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम। मैं हूं आपका मेजबान सुदेव। स्टेशन क्लॉक में 8:35 होने वाले हैं और यहां पे जो है चलिए बात करते हैं उस खेल की जो है ब्लॉकबस्टर।
1: ये खेल है ब्लॉकबस्टर।
2: In association with
3: Download the City Exchange mobile app now to send money quickly at the best exchange rates.
4: Also, Palm Swiss Gold Bars are now available at the best price at City Exchange,
3: your trusted remittance partner.
0: और यहाँ पे भाई चलिए देखते हैं कल के मैचेस के बारे में। तो कल सबसे जो एंटिसिपेटेड मैच है वो है कतर वर्सेस कनाडा। कतर जो है होस्ट नेशन कनाडा के साथ जो है मैच खेलने वाला है, देखते हैं किस तरीके से वो मैच जाता है। हाँ, हमारे साइड से तो हम सब जो है अल अनबी के सपोर्ट में हैं, सब जो है एक्साइटेड हैं इस मैच के लिए। इवन कतर टीम भी काफ़ी एक्साइटेड है। कुछ दिन पहले एक इंटरव्यू में उनके कोच ने भी बोला था कि इस एक ड्रॉ के बाद, पहले मैच के ड्रॉ के बाद, वी आर एक्चुअली मोर एक्साइटेड टू प्ले दिस गेम। काफ़ी एनर्जाइज्ड हैं, टीम जो है बिल्कुल पम्प्ड अप है और हम सब भी काफ़ी पम्प्ड अप हैं। और जो दूसरा मैच होने वाला है वो है ग्रुप ए का, मेक्सिको वर्सेस साउथ कोरिया। और कल के मुझे लगता है तीनों मैचेस जो हैं होस्ट नेशन के मैचेस हैं, कनाडा का है, मेक्सिको का है और यूएस वर्सेस ऑस्ट्रेलिया मैच है। वो भी काफ़ी अच्छा मैचअप होने का होगा मुझे लगता है, क्योंकि यूएसए जो है काफ़ी बढ़िया डोमिनेटिंग जीत के बाद जो है ऑस्ट्रेलिया के साथ खेलेगी। देखते हैं किस तरीके से दोनों टीम जो है आपस में भिड़ते हैं। और मेक्सिको और साउथ कोरिया का भी काफ़ी इंटरेस्टिंग फिक्चर हो सकता है। साउथ कोरियन टीम जो है हमेशा सरप्राइजेस देती है और मेक्सिकन टीम भी काफ़ी अच्छी टीम है। हमेस रॉड्रिगेज जो है वो हैं, उनका भी आई गेस ये एक प्रॉबेबली लास्ट वर्ल्ड कप हो सकता है। कह नहीं सकते, पक्का नहीं कह सकते, मगर चांसेस हैं, ऐसी बातें जो है हमने सुनी थी। अभी फिलहाल यही बात बताते हुए काम करते हैं, आगे बढ़ते हैं। पार्थिव गोयल की आवाज़ में सांवरिया मूवी का गाना सुनते हैं और कहते हैं जियो बिंदास।

वेलकम बैक, यू आर लिसनिंग टू रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम। मैं हूं आपका मेजबान सुदेश। स्टेशन क्लॉक में 8:50 होने वाले हैं और यहाँ पे जो है आपके साथ हम टेक्नोलॉजी रिलेटेड कुछ अपडेट्स जो है लेकर आए हैं। एप्पल ने अपने WWDC 2026 इवेंट में बताया था कि सीरी के जो AI के सबसे एडवांस्ड फीचर्स है वो आने वाले हैं, जैसे कि ज़्यादा नेचुरल और एक्सप्रेसिव सीरी वॉइस, बेटर सिस्टम वाइड डिक्टेशन पॉलिसी, ये सब चीज़ें आने वाली थी। और उसको चलाने के लिए एक्चुअली 12 GB रैम की ज़रूरत होगी। ठीक है, अभी तक जो है पिछले साल तक 8 GB रैम के फ़ोन आते थे, आईफोन जो आते थे, बट अब जो नए अपडेट्स हैं सीरी के उसको इनकॉर्पोरेट करने के लिए 12 GB रैम यूनिफाइड मेमोरी की ज़रूरत होगी। और करंट सिचुएशन अगर हम देखें, अभी ये पावरफुल AI मॉडल सिर्फ आईफोन एयर, आईफोन 17 प्रो, आईफोन 17 प्रो मैक्स में ही चल सकता है, इनमें ही अवेलेबल है, क्योंकि इन्हीं में ही 12 GB रैम है। 17 का जो नॉर्मल आया था उसमें 12 GB रैम नहीं है। और जो आईफोन 18 अपग्रेड है उसके मुताबिक जो है बेस आईफोन 18 को भी 12 GB रैम मिलेगा। आईफोन 17 के 8 GB रैम से 50% ज़्यादा मेमोरी होगी और इससे सीरी AI और एप्पल इंटेलिजेंस फीचर्स सभी आईफोन 18 मॉडल्स पर बेटर काम कर पाएंगे। और इसके बारे में बात हम करेंगे, इसके प्राइसिंग के बारे में क्या अपडेट्स हैं थोड़ी ही देर में। फिलहाल यहाँ पे हम जरा गाना प्ले करते हैं और कहते हैं जियो बिंदास।

0: listening to Radio Olive 106.3 FM.
1: इस वेकेशन प्यार से हमारा इंतजार करने वाले अपनों को एक गोल्डन सरप्राइज क्यों ना दे मलबार गोल्डन डायमंड्स के गोल्डन समर ऑफर के साथ डायमंड एंड प्रेशियस जेम ज्वेलरी खरीदने पर पाइए फ्री कैश वाउचर्स अपने पुरानी गोल्ड ज्वेलरी को एक्सचेंज कीजिए विदाउट एनी लॉस और अब विद द इंपोर्ट ड्यूटी रिविजन इन इंडिया यू कैन नाउ सेव अप टू 15% ऑन गोल्ड प्राइसेस हियर इन जीसीसी विजिट मलबार गोल्ड एंड डायमंड्स टुडे
2: Doha Bank और Lulu लाए हैं शॉपिंग का एक rewarding experience.
3: अब अप्लाई कीजिए Doha Bank Lulu MasterCard Platinum Credit Card के लिए और पाइए कतरी रियाल 500 Lulu Shopping Voucher.
2: Lulu Stores पर हर स्पेंड के साथ मिल सकता है up to 5% savings. Lulu Points के फॉर्म में.
3: Plus, enjoy कीजिए Airport Lounge Access.

0: एक मेडल है, हारना मना है और डरना गुनाह है। यहाँ सेलिब्रेशन के लिए ढोल नहीं, दिलों की धड़कन शोर करती है। और ऑडियंस चीयर नहीं, रोर करती है। बिकॉज इट्स नॉट जस्ट अ गेम, इट्स एन इमोशन। फीफा की हर डिटेल के लिए सुनिए रेडियो ऑलिव
1: इन एसोसिएशन विद।
0: डाउनलोड द सिटी एक्सचेंज मोबाइल ऐप नाउ टू सेंड मनी क्विकली एट द बेस्ट एक्सचेंज रेट्स।
2: ऑल्सो पाम स्विस गोल्ड बार्स आर नाउ अवेलेबल एट द बेस्ट प्राइस एट सिटी एक्सचेंज,
0: योर ट्रस्टेड रेमिटेंस पार्टनर। Grow your brand across Qatar's key audiences. Connect with Hindi listeners on Radio Olive 106.3 FM, Malayalam audiences on Radio Suno 91.7 FM, and Arabic listeners on Tetkar 107.4 FM. On-air visibility supported by performance-driven digital marketing campaigns. Simple, effective, integrated. Call 3009-1063 or 3082-1063.

0: एंटरटेनमेंट की या कोई सीमा नहीं, बनाइए अपने मॉर्निंग को बिंदास मॉर्निंग विद आरजे सुदेव, हर सुबह 6 से 10 ओनली ऑन रेडियो ओलिव 106.3 एफएम जियो बिंदास।
1: मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स बिंदास मॉर्निंग, मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स द रिस्पॉन्सिबल ज्वेलर। मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स की हर ज्वेलरी पीस एथिकली सोर्स्ड होती है और आती है मलाबार प्रॉमिस के साथ, जहां मिलती है कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी और भरोसा।
2: कमर्शियल बैंक, योर फ्यूचर ग्रोस व्हेन योर सेविंग्स ग्रोस। सेव मोर, ड्रीम बिगर, विन अप टू 5 million riyals विद कमर्शियल बैंक
3: इन एसोसिएशन विद नसीम हेल्थकेयर, नसीम सर्जिकल एंड मेडिकल सेंटर, सी रिंग रोड। हेल्दी स्माइल्स एनी टाइम। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 4411 1133।
4: थोड़ी सी

आप सभी का फिर से एक और बार स्वागत है। आप सुन रहे हो रेडियो ऑलर 106.3 FM बिंदास मॉर्निंग्स में। मैं हूं आपका मेजबान सुदेव। स्टेशन क्लॉक में अभी 9:07 हो रहे हैं और यहाँ पे जो है हम थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे कि कैसे अब नए आने वाले आईफोन मॉडल्स में 12 GB का जो है रैम होने वाला है। स्पेशली आईफोन 18 के बेस मॉडल में भी 12 GB का रैम होगा। बाकी डिटेल्स जो है मैं आपको बताना चाहूँगा, प्राइस बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा, दाम बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा, इस मामले में चर्चा जो है चल रही है। तो एप्पल के जो रैम सप्लायर्स हैं जैसे कि सैमसंग, एसके हाइनेक्स और माइक्रोन टेक्नोलॉजी, ये जो है अपने रैम सप्लाई से ज़्यादा चिप खरीद रहे हैं और रिपोर्ट के हिसाब से एप्पल जो है एक्स्ट्रा कॉस्ट को खुद एब्जॉर्ब करेगा, ऐसा बोला जा रहा है, सुना जा रहा है। इसलिए बेस आईफोन की स्टार्टिंग प्राइस लगभग $799 ही रह सकती है, ज़्यादा चेंज नहीं आएगा। लॉन्च टाइमलाइन की अगर हम बात करें तो आईफोन 18 प्रो, प्रो मैक्स और जो फोल्डेबल फोन आईफोन है वो 2026 के फॉल तक यानी कि सितंबर अक्टूबर के टाइम तक जो है लॉन्च हो जाएगा। लेकिन आईफोन 18 का बेस मॉडल आईफोन एयर 2 और आईफोन 18 ई ये जो है अगले साल के फर्स्ट हाफ तक ही आएंगे, विच इज़ क्वाइट अनयूजुअल, क्योंकि हमेशा एप्पल जब भी अपने फ़ोन्स निकालता है तो एक ही साथ निकालते हैं, सारी सीरीज़ को एक साथ निकालते हैं, बेस मॉडल, प्रो मॉडल, प्रो मैक्स मॉडल सब एक ही साथ आते हैं। मगर इस बार दे आर ट्राइंग समथिंग डिफरेंट। और मैंने ये भी एक जगह देखा था कि इफ़ यू आर नॉट बाइंग आईफोन 18 बेस मॉडल इट्स ओके, क्योंकि ऑलरेडी आईफोन 17 जो है काफ़ी पावर्ड है, और अगर आपके पास आईफोन 17 प्रो मॉडल है जिसमें ऑलरेडी एक 12 GB का रैम आता है, सो इट्स ओके, इट्स गुड, इट्स वेल एंड गुड। ज़्यादा एक अपडेट आएगा या नहीं आएगा इसके बारे में हम अभी नहीं कह सकते, मगर जिस तरीके से पैटर्न रखा है एप्पल ने, मुझे लगता नहीं है एक मेजर अपग्रेड जो है आएगा प्रो मॉडल्स में। मे बी शायद AI फीचर्स में थोड़ा चेंजेस जो है हमें देखने को मिल सके, लेट्स सी, वो तो वक्त ही बताएगा। फिलहाल यहाँ पे हम एक काम करते हैं, उदित जी और अनुराधा जी की आवाज़ में पति पत्नी और वो दो मूवी का गाना सुनते हैं और कहते हैं जियो बिंदास।

0: दोहा बैंक और लुलु लाए हैं शॉपिंग का एक रिवॉर्डिंग एक्सपीरियंस।
1: अब अप्लाई कीजिए दोहा बैंक लुलु मास्टर कार्ड प्लैटिनम क्रेडिट कार्ड के लिए और पाइए कतरी रियाल 500 लुलु शॉपिंग वाउचर।
0: लुलु स्टोर्स पर हर स्पेंड के साथ मिल सकता है अप टू 5% सेविंग्स लुलु पॉइंट्स के फॉर्म में।
1: प्लस एंजॉय कीजिए एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस, माई बुक ऑफर्स, डाइनिंग डील्स और लाइफस्टाइल प्रिविलेजेस। बस कार्ड एक्टिवेट कीजिए लुलु पर मिनिमम कतरी रियाल 1 स्पेंड कीजिए और रिवॉर्ड्स का मजा लीजिए।
0: ऑफर वैलिड टिल 30th June 2026। दोहा बैंक लुलु मास्टर कार्ड प्लैटिनम, शॉपिंग नाउ मोर रिवॉर्डिंग। TNC अप्लाई।
2: Grow your brand across Qatar's key audiences. Connect with Hindi listeners on Radio Olive 106.3 FM, Malayalam audiences on Radio Suno 91.7 FM, and Arabic listeners on Tetkar 107.4 FM. On-air visibility supported by performance-driven digital marketing campaigns. Simple, effective, integrated. Call 3009-1063 or 3082-1063.
3: Hi, I'm Husso Ali Khan. And you're listening to Radio Olive, Jio Bindas.
4: I'm in number one, Radio Olive.
5: Olive Suno Radio Network, Qatar's number one Asian radio network.
4: Abu Hogi, Abu Hogi, Bindas Morning.
6: Malabar Gold and Diamonds Bindas Morning. इस वेकेशन सीजन सरप्राइज करें अपने लव्ड वंस को मलाबार गोल्ड एंड डायमंड के गिफ्ट्स के साथ। पाए फ्री कैश वाउचर्स हर डायमंड और प्रेशियस जेम ज्वेलरी परचेस पर और एक्सचेंज करें अपनी पुरानी गोल्ड ज्वेलरी, वो भी बिना किसी लॉस के।
2: कमर्शियल बैंक, योर फ्यूचर ग्रोस व्हेन योर सेविंग्स ग्रोस। सेव मोर, ड्रीम बिगर। विन अप टू 5 मिलियन रियाल्स विद कमर्शियल बैंक
7: इन एसोसिएशन विद नसीम हेल्थ केयर, नसीम सर्जिकल एंड मेडिकल सेंटर, सी रिंग रोड। हेल्दी स्माइल्स एनी टाइम। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन Call 4411-1133.

0: वेलकम बैक, यू आर लिसनिंग टू रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम। मैं हूं आपका मेजबान सुदेव। स्टेशन क्लॉक में 9:18 हो रहे हैं और यहाँ पे जो है मेरे पास एक मैसेज आया था मोहम्मद यूसुफ खान साहब का। उन्होंने बोला, सुदेव मैंने अभी वो वीडियो देखा आप दोनों का, कशिश और आप चुप रहने का टास्क वाला, बहुत हंसा हूँ मैं। यू गाइस आर सो फनी, थैंक यू सो मच जी, थैंक यू सो मच। एक्चुअली वो कशिश का आइडिया था और मैं ऐसे बैठा हूँ तो कशिश ने आगे बोला कि चलो एक वीडियो बनाते हैं। ऐसे बनाया वो वीडियो और मुझे अच्छा लगा कि आपको अच्छा लगा, आपको हंसी आई। बस यही हमारे कारण, कोई अगर किसी के चेहरे पर मुस्कुराहट आती है तो उससे बड़ा और क्या हो सकता है ना। राइट, थैंक यू सो मच। एंड उसके साथ साथ आप हमारे रेडियो ऑलिव के पेज को अगर फॉलो नहीं कर रहे तो जानी क्या कर रहे हैं हम। सीधा जाइए इंस्टाग्राम पे, रेडियो ऑलिव का पेज सर्च कीजिए, विच इज रेडियो ऑलिव डॉट क्यू ए, और आप उन पोस्ट को चेकआउट कर सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट पोस्ट चेकआउट कर सकते हैं। पॉडकास्ट जो है जो हम डालते हैं उसका एक रील हमने डाला है, वो चेकआउट करके आप फुल पॉडकास्ट सुनने के लिए जा सकते हैं। तो आप देखिए कंटेंट बहुत सारा है उसमें, आप देखिए आपको क्या चाहिए। ठीक है, पॉडकास्ट चाहिए पॉडकास्ट है, फनी वीडियो चाहिए फनी वीडियो है, अगर आपको और कुछ जानना है आसपास क्या हो रहा है उसके लिए भी कंटेंट है, तो सब कुछ है वहां पे, बस आपको डिसाइड करना है क्या देखना है। तो अगर आपने फॉलो अभी तक नहीं किया है तो कर लीजिएगा। और यही बात बताते हुए एक और मैसेज जो है मेरे पास आया था, मैं वो भी पढ़ना चाहूंगा, मुझसे छूट गया था मैसेज एक्चुअली, थैंक यू सॉरी। यहाँ पे मैसेज आया था, लिखा है कि नेम इज आजाद अंसारी, गुड मॉर्निंग सुधीर सर, जियो बिंदास, आई लाइक योर वॉइस। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा आपने मैसेज किया। आई एम रियली सॉरी कि मैं थोड़ा लेट हो गया पढ़ने में, मुझे माफ कर दीजिएगा, मैं उनको पर्सनली मैसेज भी कर दूंगा। बट या थैंक यू सो मच। और उसके साथ साथ यही बोलते हुए हम भी जरा आगे बढ़ते हैं, जबरदस्त हिट प्ले करते हैं और कहते हैं जियो बिंदास।
1: अब सुनिए ऑलिव का जबरदस्त हिट।

0: योर डेली सरप्राइज इज हियर। अपना हाला रिचार्ज करो और पाओ फ्री डेटा या मिनट्स का सरप्राइज। क्लेम करो ओरेडू ऐप पर। एक्सपीरियंस मोर विद ओरेडू।
1: मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स बिंदास मॉर्निंग। इस वेकेशन सीजन सरप्राइज करें अपने लव्ड वंस को मालाबार गोल्ड एंड डायमंड के गिफ्ट्स के साथ। पाए फ्री कैश वाउचर्स हर डायमंड और प्रेशियस जेम ज्वेलरी परचेस पर, और एक्सचेंज करें अपनी पुरानी गोल्ड ज्वेलरी वो भी बिना किसी लॉस के।
2: कमर्शियल बैंक, योर फ्यूचर ग्रोस व्हेन योर सेविंग्स ग्रोस। सेव मोर, ड्रीम बिगर। विन अप टू 5 million riyals विद कमर्शियल बैंक
3: इन एसोसिएशन विद नसीम हेल्थ केयर। नसीम सर्जिकल एंड मेडिकल सेंटर, सी रिंग रोड। Healthy smiles anytime. For more information, call 4411 1133.

0: वेलकम बैक, यू आर लिसनिंग टू रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम। मैं हूं आपका मेजबान सुदेव, और मेरे साथ स्टूडियो में अभी एक ऐसी हस्ती है जिनकी हंसी के सब दीवाने हैं, जिनकी नजर जहां उठ गई वहां रोशनी ही रोशनी है। कौन है ये लड़की, बताइए नाम अपना।
1: मैं कौन? तनीषा।
0: तो तनीषा मैडम, अरे तनीषा मैडम जरा सीधा बैठोगे माइक के सामने?
1: जी सर, जी जी,
0: अब ठीक है। अब आवाज ढंग से आ रही है। बताइए मैडम, क्या हाल है आपके?
1: बढ़िया। आप
0: हाथ में क्या हो गया आपके, कुछ चिपक गया था क्या?
1: हाँ।
0: अच्छा, ठीक है। देखिए हमारा सार्कास्म वैसे दिन ब दिन अच्छा होता जा रहा है।
1: ऑल आउट करोगे मुझे?
0: देखिए कर्मा जो है वो है।
1: अभी आपका भी आएगा।
0: ना बेड़े ना।
1: खुश तो बहुत होगे तुम थर्सडे यार।
0: जी बहुत ज्यादा खुश हैं हम। खुशी का ठिकाना नहीं अपना कोई ठिकाना नहीं।
1: मेरा तो है, मेरा बिस्तर।
0: आए वाह, क्या बात है, क्या बात है। वैसे वही है हम सबका ठिकाना, क्योंकि एक काफी लंबे वीक के बाद जो है बिस्तर ही अपना सब कुछ है। यार मैं एक चीज, एक्चुअली दो चीज पूछना चाहूंगा। पूछा मुझे एक ही चीज था, मगर आपने जब ये बोल दिया तो दूसरी चीज भी याद आ गई। मैंने नोटिस किया है, ठीक है, कि ये महीना थोड़ा कंफ्यूजिंग है।
1: क्यों?
0: ये कभी बहुत तेज लगता है और कभी बहुत धीमा लगता है। आपको भी ऐसा लग रहा है क्या ये?
1: या एंड आई थिंक मार्च वॉज द लॉन्गेस्ट मंथ।
0: अरे मार्च तो तीन साल निकल गए।
1: देन अप्रैल वेंट सो फास्ट।
0: जब मार्च शुरू हुआ मैं 25 का था, मैं 28 का हो गया।
1: मे ऑल्सो फेल्ट अ बिट लॉन्ग।
0: ओके।
1: और दिस जून, बिकॉज यू नो व्हेन यू आर वेटिंग फॉर समथिंग टू हैपन,
0: ओके,
1: तो दिन ज्यादा लंबे लगते हैं।
0: ये वेटिंग फॉर समथिंग टू हैपन क्या है?
1: व्हाट आर यू वेटिंग टू हैपन सुदेव? व्हाट आर यू वेटिंग फॉर?
0: वेल आई एम वेटिंग फॉर द वर्ल्ड कप फाइनल। सो या मे बी नाइस प्लेयर। बढ़िया। जो चीज मैं पूछना चाह रहा था वो मैं पूछना चाहूंगा अभी। तो मैं अभी थोड़ी देर पहले बैठ के गाना जो है जोगी सुना होगा आपने, ठीक है, जिसका एक नया वर्जन हमने धुरंधर के टाइटल ट्रैक में भी सुना।
1: यप।
0: ठीक है, तो वो गाना मैं ऐसे ही यूट्यूब में देख रहा था, उसका एक शॉर्ट्स मैंने देखा और काफी बढ़िया शॉर्ट्स, मतलब भांगड़ा कर रहे थे तीन लोग मिलके। भाई देख के जो एनर्जी आ गई, क्या है, मतलब इतना एनर्जेटिक परफॉर्मेंस था कि शॉर्ट्स का खत्म हुआ वो मैं थक गया, मजा आ गया देख के, मतलब मुझे इतना बढ़िया था। तो फिर ना थोड़ी देर में फीड में सारे भांगड़ा रिलेटेड वीडियोस आने लग गए, मोरनी के आने लग गए, ठीक है, दिलजीत का जो अरोमा गाना आया था उसके आने लग गए। मैं बोला कि यार ये तो बढ़िया चीज है, मुझे तो ये सीखना है।
1: तो आज तुझे भांगड़ा करना है?
0: नहीं, मुझे सीखना है, मुझे भांगड़ा सीखना है।
1: ठीक है,
0: ठीक है। तो ऐसे लाइफ के डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस में मैंने फिर अब खुद के बारे में भी कॉन्टेम्पलेट किया है, तो मैं समझा कि मुझे हर डिफरेंट स्टेज में कुछ ना कुछ सीखने का मन करता है। तो अभी के स्टेज में मुझे भांगड़ा सीखने का मन कर रहा है। आपके साथ कैसा है? अभी ऐसा कुछ है जो आप सीखना चाहोगे, या फिर प्रीवियस स्टेजेस में कुछ ऐसा जो आप सीखना चाहते थे उसके बारे में बताओगे जरा हमें?
1: यस, क्वाइट अ फ्यू टाइम्स। देयर वाज वन टाइम व्हेन आई वांटेड टू लर्न कथक एंड आई इवन जॉइंड अ ऑनलाइन क्लास।
0: ओके।
1: तीन दिन अटेंड करी और फिर छोड़ दी।
0: तीन दिन ही क्यों अटेंड करी आपने?
1: क्योंकि आई वाज लेजी।
0: अच्छा।
1: देन आई स्टार्टेड दिस कलरिंग थिंग।
0: ओके।
1: वो बहुत ऐसे यू नो रिलीजियसली कंटिन्यूसली कर रही थी मैं, यू नो आई नीड टू टेक केयर ऑफ माय मेंटल हेल्थ एंड ऑल, इट गिव्स मी पीस एंड काम।
0: जी जी।
1: और फिर उसके बाद कहां वो बुक और कहां मैं और कहां वो कलर्स।
0: यार मुझे एक बात बताओ, अभी हम जब बाहर गए थे एक बार, हमने भी एक दुकान से कुछ कलरिंग बुक्स खरीदे थे।
1: मेरे रूम में एक कॉर्नर में पड़े हैं।
0: अच्छा अच्छा अच्छा। बढ़िया बढ़िया है ना वहाँ पे?
1: है।
0: सही है, सही है, बहुत बढ़िया। और क्या क्या चीजें पसंद थी आपको?
1: देन व्हाट एल्स डिड आई लर्न? वंस आई जॉइंड डिजिटल मीडिया का कोर्स ऑनलाइन, कि यू नो लाइक एनहांस करते हैं अपनी स्किल्स को, नाउ द वर्ल्ड इज इवॉल्विंग, सो वी शुड इवॉल्व टुगेदर।
0: क्या बात कर दी।
1: और वो भी एक हफ्ता बड़ा छोड़ दिया।
0: वाह बेटे वाह।
1: देन आई वाज क्रेजी अबाउट डूइंग अ पीएचडी।
0: ओके, पीएचडी।
1: यस। And wow. I was like, yes, I should do it. अरे बढ़िया रहेगा, busy भी हो जाऊंगी and I have experience, like काम कर लिया इतना तो useful रहेगा and all.
0: जी,
1: full
0: जी,
1: research and everything, apply कर रही हूँ universities and all में, और जहाँ पर वो fill करने की बात आती है ना forms, and then the questions are not वेरी वेग एंड सिंपल, वो आपको सोच समझ के लिखने पड़ते हैं और आप वो AI से लेकर नहीं लिख सकते।
0: समझ गया आपकी।
1: बस वही मेरा इंटरेस्ट करता हूँ।
0: अच्छा, बहुत बढ़िया।
1: मतलब नॉट फिनिशिंग थिंग्स में जो कंसिस्टेंसी है मेरी।
0: हाँ। आई थिंक ये मेरे लिए भी बहुत रिलेटेबल बात है, क्योंकि बहुत सारी चीजें शुरू मैंने भी की हैं, खत्म बहुत सारी चीजें नहीं की हैं, और उसके साथ साथ अब मेरे इंटरेस्ट की बात करें, जैसे कि मैंने बताया मुझे भांगड़ा सीखने का बहुत मन कर रहा है अभी, ठीक है। इसके पहले एक टाइम पे स्विमिंग का था, बट फॉर्चुनेटली स्विमिंग में गया सीखने, मैं स्विमिंग सीखने गया। अभी मैं कंटिन्यू नहीं कर रहा, वो अलग बात है वो एक अलग बॉल गेम है। बीच में मैं जाता था, यहाँ आने के बाद भी जाता था, फिर मैंने सोचा कि नहीं यार टाइम नहीं मिल रहा उतना, तो ऐसे स्विमिंग का एक सिलसिला रहा। मेरी मम्मी ने जब मैं छोटा था, मैं एक डे केयर में जाता था मतलब स्कूल के बाद, तो हुआ ये कि वहाँ पे समर कैंप आया, तो पांच चीज़ें मतलब पांच कोर्सेस ऐसे छोटे छोटे आए, समर कोर्सेस जैसे आए समर कैंप में। एक था कंप्यूटर का, एक था डांस का, एक था सिंगिंग का, एक था आर्ट्स का और एक और कुछ था, ठीक है मैं भूल गया, याद नहीं मुझे, बहुत बहुत पहले की बात है, छः सात साल का था शायद मैं। मगर मुझे तब से एक चीज़ याद है, मैंने तब से क्लास बंक करना शुरू कर दिया था
1: मैं समर कैंप में कौन बंक करता है,
0: मैं बताता हूँ, सुनो मेरी बात ध्यान से, ठीक है। हुआ ये कि मुझे चार क्लासेस में डाला, तो जो लोग वो जो चलाते थे डे केयर चलाते थे वो बहुत जान पहचान के हो गए थे, मतलब रिश्ता बन गया, अभी भी मुझे बहुत पसंद करते हैं, प्यार करते हैं वो, मैं भी वैसा ही रिश्ता उनके साथ रखता हूँ। वापस जाता हूँ वहाँ पे तो मिलते हैं, मुझसे पूछते हैं याद है तुम्हें तुम यहाँ पे, तो वहाँ से एक सीढ़ी उतर के हम आते थे, तो सीढ़ी के बिल्कुल सामने प्रिंसिपल वो जो ऑफिस था उनका, उसका खिड़की था, तो उसका ना एक ग्लास लगा नहीं हुआ था, ठीक है, तो मैं वहां जाके ऐसे झाक के बैठ के देखता रहता था, तो मुझसे पूछते थे याद है तुम ये हरकतें सब करते थे, मैंने बोला नहीं सॉरी। तो उन्होंने क्या किया, चार कोर्सेस में डाल दिया, तो उन्होंने बोला कि ठीक है आर्ट्स वाला फ्री में हम दे रहे हैं करके, फ्री में गया। अब उस दिन से मैं समझ गया था कि फ्री की चीजें मुझे पसंद नहीं है, ठीक है मुझे नहीं पसंद फ्री की चीजें, मैं कुछ करूंगा खुद का कुछ करूंगा ऐसे, ठीक है भाई बचपन से इंडिपेंडेंट थे, बिल्कुल बचपन से ही, बस मम्मी ने छोड़ा नहीं था हमें, पकड़ के रखा था, वरना आज तो दुनिया इधर से उधर हो जाती, ठीक है। इतना टैलेंट लेकर हम आए थे, कन्विक्शन लेकर हम आए थे, तो उन्होंने भेजा आर्ट्स क्लास के लिए। मुझे याद है मैं बाहर जाता था वहां से, मैं नहीं बैठता था क्लास में, वो सर आके बोलते थे अरे बेटा बैठ जाओ, इतने प्यारे सर यार, मतलब इतने प्यारे सर, बहुत ही स्वीट वो। और मम्मी बोलती थी कि यार मैं फिर तुझे ब्लेम नहीं कर सकती क्योंकि मुझे भी ड्राइंग पसंद नहीं है। मैंने बोला ये तो जेनेटिक है यार, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता।
1: ड्राइंग, ओह माय गॉड, सो समर कैंप की बात करी तूने, आई यूज्ड टू गो टू समर कैंप्स एवरी ईयर जैसे समर ब्रेक होता था, सो डांस वाज ऑलवेज की ये तो लेना ही है। दूसरा आई वुड सी यू नो इंग्लिश स्पीकिंग और समथिंग, एंड थर्ड वुड बी ड्राइंग और मेहंदी क्लासेस।
0: ओके,
1: थ्री इयर्स कंसिस्टेंटली मैंने सीखा है,
0: अच्छा।
1: मैं फिर भी नहीं बना पाई,
0: नहीं वो तो इतनी पता था अभी,
1: गंदी ड्राइंग है मेरी,
0: जी हो सकता है,
1: बट वन थिंग विच इज कंसिस्टेंट इन यू एंड मी इज रेडियो।
0: हाँ बिल्कुल सही बात है ये बहुत सही बात है, और ये सही बात कही है आपने, और यही बात बताते हम आगे बढ़ते, मगर आगे बढ़ने से पहले अभी इतनी बात करी ली हमने काम के बारे में, पसंदीदा चीजों के बारे में, तो एक बहुत ही बढ़िया पीस ऑफ पोएट्री जो है यहाँ पे मैं पढ़ना चाहूंगा, जिसे लिखा है फैज साहब ने। कहा है कि वो लोग बहुत खुशकिस्मत थे जो इश्क को काम समझते थे, वो लोग बहुत खुशकिस्मत थे जो इश्क को काम समझते थे या काम से आशिकी करते थे, हम जीते जी मसरूफ रहे, कुछ इश्क किया कुछ काम किया, काम इश्क के आड़े आता रहा और इश्क से काम उलझता रहा, फिर आखिर तंग आकर हमने दोनों को अधूरा छोड़ दिया।
1: ओह कमाल,
0: इससे यही पता चलता है पढ़ाई के टाइम पे पढ़ाई करनी चाहिए, इश्क करने जाओगे तो यही होगी
1: सबका अपना टाइम होता है
0: जी, अपना टाइम आएगा, वैसे टाइम तो जरूर आएगा, थोड़ी देर में जाने का टाइम भी आने वाला है मेरे, धीरे धीरे वो भी पास आ रहा है, मगर अभी एक बहुत ही बढ़िया ट्रैक आपके लिए हम लेकर आए हैं, चलिए हनुमान काइंड जासमिन और सुधीर की आवाज में सुनते हैं धुरंधर मूवी का टाइटल ट्रैक, स्टे ट्यून्ड, ये है रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम और मैं हूं आपका मेजबान सुदेव, और मेरे साथ है
1: तनीषा
0: जियो बिंदास।
2: लेडीज एंड जेंटलमैन, यू आर नॉट रेडी फॉर दिस।

0: माँ मुझे छोटे एड ब्रेक्स दिखाई दे रहे हैं माँ।
1: OLF शॉर्ट ब्रेक।
0: पहला जादू।
2: A ring for the newly married, cute little bangle for the newborn.
3: अरे यार, holiday season is here और फिर वही gifting का टेंशन। फिर मलबार गोल्ड एंड डायमंड्स, गोल्ड एंड समर के साथ पाइए फ्री कैश वाउचर्स ऑन डायमंड एंड प्रेशियस जेम ज्वेलरी परचेजेस। प्लस एक्सचेंज योर गोल्ड ज्वेलरी एंड अपग्रेड टू द लेटेस्ट डिजाइंस विदाउट एनी लॉस। और सुनो, देयर इज मोर। With the import duty revision in India, you can now save up to 15% on gold prices here in the GCC. Visit Malabar Gold and Diamonds today.
4: दोहा बैंक और लुलू लाए हैं शॉपिंग का एक रिवॉर्डिंग एक्सपीरियंस।
5: अब अप्लाई कीजिए दोहा बैंक लुलू मास्टर कार्ड प्लैटिनम क्रेडिट कार्ड के लिए और पाइए कतरी रियाल 500 लुलू शॉपिंग वाउचर।
4: लुलू स्टोर्स पर हर स्पेंड के साथ मिल सकता है अप टू 5% सेविंग्स लुलू पॉइंट्स के फॉर्म में।
5: प्लस इंजॉय कीजिए एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस, माई बुक ऑफर्स, डाइनिंग डील्स और लाइफस्टाइल प्रिविलेजेस। बस कार्ड एक्टिवेट कीजिए लुलू पर मिनिमम कतरी रियाल 1 स्पेंड कीजिए और रिवॉर्ड्स का मजा लीजिए।
4: ऑफर वैलिड टिल 30th June 2026। दोहा बैंक Lulu Mastercard Platinum. Shopping now more rewarding. TNC apply.
6: मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स बिंदास मॉर्निंग। इस वेकेशन सीजन सरप्राइज करें अपने लव्ड वंस को मालाबार गोल्ड एंड डायमंड के गिफ्ट्स के साथ। पाए फ्री कैश वाउचर्स हर डायमंड और प्रेशियस जेम ज्वेलरी परचेस पर और एक्सचेंज करें अपनी पुरानी गोल्ड ज्वेलरी, वो भी बिना किसी लॉस के।
7: कमर्शियल बैंक, योर फ्यूचर ग्रोस व्हेन योर सेविंग्स ग्रोस। सेव मोर, ड्रीम बिगर। विन अप टू 5 million रियाल्स विद कमर्शियल बैंक
8: इन एसोसिएशन विद नसीम हेल्थ केयर, नसीम सर्जिकल एंड मेडिकल सेंटर, सी रिंग रोड। Healthy smiles anytime. For more information, call 4411 1133.

वेलकम बैक, यू आर लिसनिंग टू रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम। मैं हूं आपका मेजबान सुदेव। स्टेशन क्लॉक में 9:50 होने वाले हैं, यानी कि यहां से धीरे धीरे निकलने का वक्त आ चुका है, 10 बजने वाले हैं। थोड़ी देर में कशिश यहां पहुंच जाएगी आपके साथ, जो है बात करने के लिए, गुफ्तगू करने के लिए, गाने सुनाने के लिए, गुनगुनाने के लिए और ढेर सारे किस्से, खबरें, कहानियां शेयर करने के लिए। तो हम जरा धीरे धीरे यहां से निकलते हैं और वीकेंड आप अच्छे से एंजॉय कीजिएगा, बहुत सारी चीज़ें कीजिएगा, अपने खास लोगों के साथ वक्त जो है स्पेंड कीजिएगा, अपने आप को खुश रखिएगा। और जाते जाते जाते मैं आपको यही याद दिलाना चाहूँगा कि अपना ख्याल रखना, अपने खास लोगों का ख्याल रखना और हमें ज़रा दुआओं में याद रखना। ये गाना सुन के मेरी सांसें फूल जाती है। गाने का नाम है ब्रेथलेस, तो ब्रेथलेस का ट्रैक लगाते हुए यहां से हम टाटा बबाई करते हैं और जाते जाते यही आपको याद दिलाना चाहेंगे कि जियो बिंदास।

0: 26 million reals dream.
1: अब सिर्फ सेविंग्स नहीं, सपने ग्रो होंगे. जीतिए पूरे 5 million reals कैश प्राइजेस.
0: जीतने के चार रास्ते. पहला, अपना अकाउंट बैलेंस बढ़ाइए. हर 10,000 reals ग्रोथ पर पाइए एक कूपन.
1: दूसरा, अगर सैलरी 4,000 प्लस है या 50% सेव किया है तो आप एलिजिबल है.
0: तीसरा, नए कस्टमर्स को पहली सैलरी या 10,000 फंडिंग पर गारंटीड कूपन. और चौथा, 9 महीने रेगुलर सैलरी पर पाइए एक एक्स्ट्रा कूपन और मेगा ड्रॉ टिकट.
2: Shackman की पावर पैक्ड रेंज, हैवी ट्रक्स, टिपर्स, ट्रेलर्स और बूम ट्रक्स, दमदार परफॉर्मेंस और भरोसा सिर्फ कार्मिल के साथ. विजिट कार्मिल ग्रुप नाउ.

दुखते हुए गले और सुड़सुड़ करती हुई नाक के साथ आ गई हूँ मैं। वेलकम जी 106.3 रेडियो आलिफ पर, मैं हूँ आपकी कसूस और शो आपके लिए लाइफ मस्त है लेकर आ गई हूँ। वीकेंड जो है वो दस्तक दे चुका है एंड मेरी सर्दी जो है वो जाने का नाम नहीं ले रही है। मतलब कभी कभी तो ऐसी फीलिंग आती है कि सर्दी को कैसे पता चल जाता है कि मेरे सारे काम हो चुके हैं और अब मुझे रिलैक्स करने का मन है, तो वीकेंड पे मैं रिलैक्स करूंगी, काम नहीं, और अब ये सर्दी आ गई है तो बीमार पड़े रहना पड़ेगा। खैर आपकी दुआओं की बहुत जरूरत है, तो 3311063 पर जल्दी जल्दी से मुझे दुआएं दे दीजिए, मैंने प्यारे प्यारे मैसेजेस दे दीजिए ताकि मैं ठीक हो पाऊँ और अब वीकेंड अच्छे से एंजॉय कर सकूँ। बाकी अमेजिंग वाले गाने आपके रेडियो सेट्स पर आ रहे हैं, लाइफ मस्त है शो तो देखिए जारी रहेगा, हम बातचीत करने ही वाले हैं पूरे 3 घंटे, सो स्टे ट्यून्ड रहिए और मेरे साथ यानी आपकी कशिश के साथ कहते रहिए जियो बिंदास।

0: listening to Radio Olive 106.3 FM. Gio Bindas.
1: Time check. Time check. Brought to you by Nanatal Pahar, the ultimate Katri adventure. Souq Waqif Alkhol.
2: सोचो अगर सेविंग से आप बन जाओ मिलियनेयर, कमर्शियल बैंक के सेव एंड विन कैंपेन में भाग लीजिए।
3: हर 10,000 कतरी रियाल सेविंग ग्रोथ पे मिलेगा एक कूपन, या सिर्फ 50% सैलरी सेव करो एंड एंटर द ड्रॉ।
2: न्यू कस्टमर हो तो अकाउंट खोलो और फर्स्ट सैलरी ट्रांसफर पे गारंटीड चांस टू विन,
3: और 9 महीने की कंसिस्टेंट सैलरी ट्रांसफर के साथ मेगा ड्रॉ में एंट्री पक्की।
2: तो फिर सोचना क्या, अगले मिलियनेयर आप हो सकते हो। आज ही शुरू करो सेविंग्स, कमर्शियल बैंक, सेव एंड विन।
4: ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਹਾਂ ਹਰਭਜਨ ਮਾਨ। ਹਰਭਜਨ ਮਾਨ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਕਤਰ ਹਿੰਦੀ ਰੇਡੀਓ ਸਟੇਸ਼ਨ ਰੇਡੀਓ ਆਲਵ 106.3 FM ਜੀਓ ਬਿੰਦਾਸ।
0: ਆਲਿਵ ਸੁਨੋ ਰੇਡੀਓ ਨੈਟਵਰਕ, ਕਤਰਸ ਨੰਬਰ 1 ਏਸ਼ੀਅਨ ਰੇਡੀਓ ਨੈਟਵਰਕ।

0: मौसम औसम हो रहा है ये कहे हुए ऐसा लग रहा है कि जैसे जमाना हो गया है।
1: वेलकम टू 106.3 रेडियो ऑलिव पर, मैं हूँ आपकी कसूस और शो आपके लिए लाइफ मस्त है लेकर आ गई हूँ और हर रोज आती हूँ टेम्परेचर बताती हूँ, फिर आप मुझसे लड़ाई झगड़ा करते हैं कि यार कसूस हमारे यहाँ तो ज्यादा टेम्परेचर हो रहा है, आप तो कम बता रहे हैं। अब मैं क्या बात करूँ, मेरा फोन जो है वो मुझे कम टेम्परेचर बताता है। तो खैर कल जो है कंपेरेटिवली थोड़ा कम गर्मी थी एंड हमें अच्छा लगा। अब वीकेंड आ रहा है सो आई होप कि टेम्परेचर और थोड़ा कम हो जाए एंड थोड़ी सी राहत ठंडक मिल जाए। फिलहाल ये कहते हुए कूल सॉन्ग ऑफ द आवर जो है आपकी नज़र में कर रही हूँ, सो ये अमेजिंग वाला गाना इन्जॉय करो, फिर लौट गया जरा बॉलीवुड वॉलीवुड की बातें कर लेंगे। स्टे ट्यून्ड रहिए जियो बिंदास
2: रेडियो ऑलिव पर, आने वाला गाना कूल सॉन्ग ऑफ द आवर।
3: क्या बात है सर, क्या पर ये बात है कूल सॉन्ग।

0: 6.3 FM, Gio Bendaz. दोहा बैंक और लुलु लाए हैं शॉपिंग का एक रिवॉर्डिंग एक्सपीरियंस।
1: अब अप्लाई कीजिए दोहा बैंक लुलु मास्टर कार्ड प्लैटिनम क्रेडिट कार्ड के लिए और पाइए कतरी रियाल 500 लुलु शॉपिंग वाउचर।
0: लुलु स्टोर्स पर हर स्पेंड के साथ मिल सकता है अप टू 5% सेविंग्स लुलु पॉइंट्स के फॉर्म में।
1: प्लस एंजॉय कीजिए एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस, माई बुक ऑफर्स, डाइनिंग डील्स और लाइफस्टाइल प्रिविलेजेस। बस कार्ड एक्टिवेट कीजिए लुलु पर मिनिमम कतरी रियाल 1 स्पेंड कीजिए और रिवॉर्ड्स का मजा लीजिए।
0: ऑफर वैलिड टिल 30th June 2026। दोहा बैंक लुलु MasterCard Platinum. Shopping now more rewarding. TNC apply.
2: Grow your brand across Qatar's key audiences. Connect with Hindi listeners on Radio Olive 106.3 FM, Malayalam audiences on Radio Suno 91.7 FM, and Arabic listeners on Tetkar 107.4 FM. On-air visibility supported by performance-driven digital marketing campaigns. Simple, effective, integrated. Call 3009-1063 or 3082-1063.

देखिए इतना तो LHS को RHS में मैथ्स में कंपेयर नहीं किया जाता जितना कृति सैनन को दीपिका पडुकोन से कंपेयर किया जा रहा है। वेलकम जी 106.3 रेडियो ऑलिफ पर, मैं हूँ आपकी कसर और शो आपके लिए लाइफ मस्त है लेकर आ गई हूँ। एंड आज 18 तारीख है, कल 19 तारीख है, नहीं डेट याद नहीं दिला रही हूँ आपको, ये याद दिला रही हूँ कि कॉकटेल 2 जो है वो रिलीज हो रही है। एंड इतना कंपैरिजन पिछली कॉकटेल्स यानी कॉकटेल 1 से कॉकटेल 2 का हो चुका है कि लोग ऑटोमेटिकली कॉकटेल 1 की व्यूअरशिप बढ़ा रहे हैं, मतलब लोगों ने कॉकटेल 1 अब देखनी ज़्यादा शुरू कर दी है। सो मुझे नहीं लगता कि कॉकटेल 2 को इतनी बड़ी ओपनिंग मिल पाएगी, अगर कॉकटेल 1 को फिर से ओपन कर देते, फिर से रिलीज कर देते तो मुझे लगता है ज्यादा फायदा होता। खैर ये सब तो बातें हैं, लेकिन कॉकटेल 2 का अभी तक का रिस्पांस तो बहुत अच्छा आ रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि अच्छा फर्स्ट डे कलेक्शन इसे मिल पाएगा, लेकिन फर्स्ट डे फर्स्ट शो के बाद ही हमें पता चल पाएगा कि ये मूवी कैसी है। सो मैं भी इंतजार करती हूँ, आप भी इंतजार करो और साथ में अमेजिंग वाला गाना इंजॉय करो। मैं आगे आके जो है बताती हूँ कि स्ट्रेस जो है किस किस चीज़ों से कम होता है। मैं वो आपकी कसर मुलाकात होगी थोड़ी सी देर में, स्टे ट्यून्ड रहिए और कहते रहिए जियो बिंदास।

0: आजकल किसी को भी कोई काम करना आए या ना आए, स्ट्रेस तो आ ही जाता है। देखो, वेलकम जी 106.3 रेडियो ऑलिवर, मैं हूँ आपकी कशिश और शो आपके लिए लाइफ मस्त लेकर आ गई हूँ। एंड वीकेंड के चलते आप कोई ऐसी एक्टिविटी जरूर सोच रहे होंगे जिससे आपका स्ट्रेस थोड़ा कम हो जाए लेकिन पैसे खर्च ना हो। तो देखिए, एक बहुत ही अमेजिंग सी चीज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। अब अक्सर क्या होता है कि हम स्ट्रेस में या तो ज्यादा खाना खाने लग जाते हैं या तो कोई कंटेंट देखने लग जाते हैं और उसमें बहुत टाइम वेस्ट हो जाता है, लेकिन हमारी माइंड को पीस नहीं मिल पाती है। सो इस सीरीज में यानी सेगमेंट में मैं आपको हर रोज एक ऐसी चीज बताती हूँ जिससे आपका स्ट्रेस कम हो सकता है। सो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ हमारे बचपन की फेवरेट एक्टिविटी जो है कलरिंग। अब देखिए, कलरिंग बुक्स जो है वो तो मार्केट में बहुत सारी आपको मिल जाएंगी, लेकिन वो होती है बच्चों के लिए जिससे आपका इंटरेस्ट जो है वो लूज हो जाता है। लेकिन एक अडल्ट कलरिंग बुक जो है वो भी आती है जिसे आप खरीद सकते हैं। उसमें इनफिनाइट जो है कलर ऑप्शंस होते हैं। सो आप उसमें कलर करना शुरू कीजिए, लास्ट में कुछ ऐसा बनेगा जो आपको मोटिवेटेड रखेगा और आपको अंदर से ना खुश करेगा कि ओ ये मैंने ड्रॉ किया है। और इसी के साथ साथ कुछ ऐसी बहुत सारी आर्टिस्टिक एक्टिविटीज जो है वो होती हैं। आप एक किट जो है वो ले सकते हैं जिससे आप पोर्ट्रेट्स बना सकते हैं एंड उसमें सारे इंस्ट्रक्शंस दिए होते हैं। सो आपको ऐसा लगेगा कि मेरे पास आर्टिस्टिक नॉलेज नहीं है लेकिन मैं फिर भी कर रही हूँ। इससे आपको मोटिवेशन भी मिलेगा एंड आपका माइंड जो है वो काम भी हो जाएगा, आपको पीस भी मिल जाएगी। तो देखो यार, अपनी इस दोस्त की इतनी सी बात मानो, स्ट्रेस को जो है भगाने के लिए थेरेपी से पहले खुद पे ध्यान दो। मैं हूँ आपकी कशिश, बातचीत जो है जारी रखेंगे लेकिन इस अमेजिंग वाले गाने के उस पार। सो स्टे ट्यून्ड रहो और कहते रहो जियो बिंदास।
1: रेडियो ऑलिव पर फ्रेश फ्रेश फ्रेश फ्रेश फ्रेश ये गाना फ्रेश है, फ्रेश सॉन्ग ऑफ द आवर ये गाना।

0: Trek. Brought to you by Nanatal Pahar, the ultimate Katri adventure. Souk Waqif Alkhol.
1: Doha Bank और Lulu लाए है शॉपिंग का एक रिवॉर्डिंग एक्सपीरियंस।
2: अब अप्लाई कीजिए Doha Bank Lulu Mastercard Platinum Credit Card के लिए और पाइए कतरी रियाल 500 Lulu शॉपिंग वाउचर।
1: Lulu स्टोर्स पर हर स्पेंड के साथ मिल सकता है अप टू 5% सेविंग्स Lulu पॉइंट्स के फॉर्म में।
2: प्लस एंजॉय कीजिए एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस, माई बुक ऑफर्स, डाइनिंग डील्स और लाइफ स्टाइल प्रिविलेजेस। बस कार्ड एक्टिवेट कीजिए Lulu पर मिनिमम कतरी रियाल एक स्पेंड कीजिए और रिवॉर्ड्स का मजा लीजिए।
1: ऑफर वैलिड टिल 30 June 2026। Doha Bank Lulu Mastercard Platinum. Shopping now more rewarding. TNC apply.
3: Mehul Kapoor, video.

0: बचपन में जब मुझे स्कूल जाना होता था ना, तो मैं बहुत खुश होकर जाया करती थी कि यार चलो अपने फ्रेंड से मिलने का मौका मिलेगा। एंड वीकेंड्स आते थे ना, तो मुझे ऐसा लगता था कि यार मुझे मेरे दोस्तों से दूर क्यों किया जा रहा है। लेकिन शायद अडल्टिंग इसी को कहते हैं, जब आपको वीकेंड जो है वो कम पड़ने लग जाए। वेलकम जी 106.3 रेडियो आलोफ पर, मैं हूँ आपकी कशिश। शो आपके लिए लाइफ मस्त है लेकर आ गई हूँ। एंड जैसे कि आपको पता ही है कि वीकेंड जो है वो आ चुका है, एंड कल क्या क्या काम करने हैं मुझे, ये अभी से मेरे दिमाग में गोल गोल घूमने लग गया है कि यार बर्तन धोने हैं, कपड़े अलमारी में रखने हैं, मम्मी पापा से अच्छे से डिटेल में बातचीत करनी है। मुझे समझ नहीं आ रहा मम्मी पापा से बातचीत करना कब से हमारे काम की लिस्ट में आ गया। आप बताइए वीकेंड पे ऐसे कौन कौन से काम है जो आपको सबसे ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग लगते हैं और आपको ऐसा लगता है कि यार इसके लिए तो अलग से एक दिन देना चाहिए। 3311063 हमारा व्हाट्सएप वाला नंबर है, इस पर आकर आप मुझे बता सकते हैं। खैर मुलाकात होगी हमारी थोड़ी सी देर में, सो स्टे ट्यून रहिए और अपनी अपनी बातें मुझे बता दीजिए व्हाट्सएप करके। फिलहाल अमेजिंग वाला गाना आ रहा है आपके रेडियो सेट्स पर, एंजॉय कीजिए और कहते रहिए जियो बिंदास।
1: रेडियो ऑलिव पर आने वाला गाना कूल सॉन्ग ऑफ द आवर।

0: 106.3 FM, Gio Bendaz.
1: Your daily surprise is here. अपना हाला रिचार्ज करो और पाओ फ्री डेटा या मिनट्स का सरप्राइज. क्लेम करो ओरिडू ऐप पर. एक्सपीरियंस मोर विद ओरिडू.

भाई साहब, बात हम इस बारे में कर रहे थे कि वीकेंड जो है वो कम पड़ता है, लेकिन काम जो है वो कभी कम नहीं होते हैं। AI सबकी जॉब ले रहा है, मैं तो इंतजार कर रही हूँ ये कपड़े धोने वाली जॉब AI मुझसे कब लेगा। वेलकम बैक 106.3 रेडियो वाले पर, मैं हूँ आपकी कशिश, शो आपके लिए ले आई हूँ। लाइफ मस्त है एंड बहुत सारी अमेजिंग बातों पे हम बातें करते हैं, लेकिन आज हम दुखड़े पर बात कर रहे हैं, असली रियल दुख पर बात कर रहे हैं। एक दिन एक्स्ट्रा मिलना चाहिए हमें सिर्फ काम करने के लिए, और एक वीकेंड मिलना चाहिए रिलैक्स करने के लिए। बहुत सारे लोगों ने मुझे मैसेज किया है, ये बताया है कि ऐसे कौन कौन से काम है जो वीकेंड पे करना नहीं चाहते हैं, बट एक वीकेंड मिलता है इसीलिए उसी वीकेंड पे करना पड़ता है। सो रिलेटिव से बात करना, कपड़े धोना, बर्तन धोना, खाना जो है वो प्रिपेयर करके रखना, रिश्तेदारों से मिलने के लिए जाना भी एक काम है, इसमें काउंट किया जा रहा है। यार लोगों, फिर क्या करना चाहते हो आप? सिर्फ सोने के लिए आपको एक दिन चाहिए क्या? 106.3 रेडियो ऑल पर, मैं हूँ आपकी कशिश। लाइफ मस्त शो में आप भी कंट्रीब्यूट कर सकते हैं 3311063 पर अपने मैसेजेस भेज के, कि वीकेंड पे ऐसे कौन से काम है जो आप करते हैं उसके लिए आपको अलग से छुट्टी मिलनी चाहिए, बताइए मुझे मैसेज करके। फिलहाल एक अमेजिंग वाला गाना आ रहा है आपके रेडियो सेट्स पर, इसे एंजॉय कीजिए और कहते रहिए जियो बिंदास।

0: رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدنا الوسيلة والفضيلة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: दोहा बैंक और लूलू लाए हैं शॉपिंग का एक रिवॉर्डिंग एक्सपीरियंस।
2: अब अप्लाई कीजिए दोहा बैंक लूलू मास्टर कार्ड प्लैटिनम क्रेडिट कार्ड के लिए और पाइए कतरी रियाल 500 लूलू शॉपिंग वाउचर।
1: लूलू स्टोर्स पर हर स्पेंड के साथ मिल सकता है अप टू 5% सेविंग्स लूलू पॉइंट्स के फॉर्म में।
2: प्लस एंजॉय कीजिए एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस, माय बुक ऑफर्स, डाइनिंग डील्स और लाइफस्टाइल प्रिविलेजेस। बस कार्ड एक्टिवेट कीजिए लूलू पर मिनिमम कतरी रियाल 1 स्पेंड कीजिए और रिवॉर्ड्स का मजा लीजिए।
1: ऑफर वैलिड टिल 30th June 2026। दोहा बैंक लूलू MasterCard Platinum. Shopping now more rewarding. TNC apply.
3: Fresh fish on the grill, slow cooked mandi, perfectly spiced prawns, and that special chutney. No noise, no drama. Just seafood done right. BBQ fish, crabs, prawns, crafted with patience, served with pride. Danatal Bahar, the ultimate Qatari adventure. Souq Waqif, Alkhur.

यार देखो, लोग आपको अलग अलग टाइप की मूवीज जो है वो रिकमेंड करेंगे, अलग अलग यू नो जॉनर्स की मूवी रिकमेंड करेंगे, लेकिन मैं आपकी दोस्त हूँ, मुझे पता है कि आपको वीकेंड पे बैठकर अपना दिमाग वेस्ट नहीं करना है, कुछ ब्रेन रॉट से देखने का मन हो रहा है। वेलकम जी 106.3 रेडियो ऑलर पर, मैं हूँ आपकी कशिश, शो आपके लिए ले आई हूँ लाइफ मस्त है। एंड एक ऐसी मूवी मैं आपको आज रिकमेंड करना चाहती हूँ, एक्चुअल में इस मूवी के बारे में आपको पता है, लेकिन मैं आपको याद दिला रही हूँ कि ये वो मूवी है जो आप देख सकते हो, बिल्कुल एफर्टलेस है, जो आप अपने वीकेंड के सारे काम करते हुए या खाना खाते हुए ये मूवी बस चालू कर दीजिए, कहीं से भी बीच से देखना चालू कर दीजिए, आप देख सकते हैं ये मूवी। मूवी का नाम है 30 मार खां। जी हाँ, एक टाइम पे क्रिंज कही जाने वाली मूवी, जब लोग इस मूवी का इतना मजाक उड़ा रहे थे कि खुद फराह खान ने अपनी आगे की मूवीज में इस मूवी को ट्रोल किया था, लेकिन आज ये मूवी एक कल्ट बन चुकी है, लोग इसे लिटरली बहुत प्रेज कर रहे हैं, अहेड ऑफ द टाइम कह रहे हैं। सो कैटरीना कैफ, अक्षय कुमार, अक्षय खन्ना एंड बहुत सारे अमेजिंग एक्टर्स के साथ ये मूवी जो है ये मेरी एक प्लेलिस्ट में जगह बना चुकी है। यू नो ये कंफर्ट मूवी है, जैसे कभी खुशी कभी गम है, बिल्कुल वैसे ही 30 मार खां है। जब मुझे ब्रेन रोट कॉमेडी देखनी होती है मैं 30 मार खां देख लेती हूँ। सो मेरे तरफ से इसे 4.5/5 जो है मैं दे रही हूँ। सो जल्दी से जाइए 30 मार खां देखिए। आपको कौन सी मूवीज जो है वो पसंद है या मुझे बता सकते हैं 3311063 पर मैसेज करके। फिलहाल मैं चलती हूँ, अमेजिंग वाले गाने इंतजार कर रहे हैं आपका, स्टे ट्यून्ड रहिए।

0: सीबी 2026 मिलियन रियाल्स ड्रीम।
1: अब सिर्फ सेविंग्स नहीं, सपने ग्रो होंगे। जीतिए पूरे 5 मिलियन रियाल्स कैश प्राइजेस।
0: जीतने के चार रास्ते। पहला, अपना अकाउंट बैलेंस बढ़ाइए। हर 10,000 रियाल्स ग्रोथ पर पाइए एक कूपन।
1: दूसरा, अगर सैलरी 4,000 प्लस है या 50% सेव किया है तो आप एलिजिबल है।
0: तीसरा, नए कस्टमर्स को पहली सैलरी या 10,000 फंडिंग पर गारंटीड कूपन। और चौथा, 9 महीने रेगुलर सैलरी पर पाइए एक एक्स्ट्रा कूपन और मेगा ड्रॉ टिकट।

0: थे। बाकी सब ठीक,
1: बस चल रहा है।
0: बाकी सब ठीक,
2: बस चल रहा है।
0: बाकी सब ठीक है ना?
1: बस चल रहा है भाई।
0: व्हाट अबाउट यू?
2: हाँ चल रहा है।
0: बाकी सब ठीक,
1: बस चल रहा है।
0: बाकी सब ठीक,
2: बस चल रहा है।
0: बाकी सब ठीक है ना?
1: हाँ ठीक है।
0: और तेरा?

0: कीटो डाइट चल रहा है,
1: बाकी सब ठीक
0: बस चल रहा है,
1: बाकी सब ठीक
0: बस चल रहा है,
1: तेरा भी बोलना
0: मेरा भी चल रहा है। व्हाट अबाउट यू?
1: हाय लिख के दू गया।

0: बाकी सब ठीक
1: बस चल रहा है।
0: बाकी सब ठीक
1: बस चल रहा है।
2: तेरा भी बोलना
1: मेरा भी चल रहा है।
0: व्हाट अबाउट यू?
3: हाय
4: आपका वीकेंड कितना भी प्रोडक्टिव हो प्रशीक से ज्यादा प्रोडक्टिव हो ही नहीं सकता। वेलकम जी 106.3 रेडियो आलू पर, मैं हूँ आपकी कशिश और शो आपके लिए लाइफ मस्त है लेकर आ गई हूँ एंड अपने साथ प्रशीक को ले आई हूँ।
5: पहले मुझे इंट्रोड्यूस करो भाई।
4: प्रशीक
5: कौन हूँ?
4: प्रशीक हमारे यहाँ के मोस्ट एलिजिबल बैचलर, मोस्ट हैंडसम इंसान इन रेडियो ऑलिव। इनके बनाए हुए जिंगल्स, इनके बनाए हुए एड्स, इनके बनाए हुए अमेजिंग प्रोडक्शंस आप सारा दिन रेडियो ऑलिव पर सुनते हैं।
5: थैंक यू सो मच गाइस।
4: बस इतना ही इंट्रोडक्शन, इतना ही झूठ बोल सकती थी मैं।
5: बीसीएल में इतना ही होगा।
4: सो प्रशीक मैं बस आपको बस इसीलिए बुलाकर लेकर आई हूँ। मैं आपसे जानना चाहती थी कि

0: आप अपना वीकेंड किस तरीके से स्पेंड करते हैं?
1: सबसे पहले मैं सुबह सुबह उठ जाता हूँ।
0: सुबह सुबह मतलब 12 बजे?
1: सुबह सुबह 12 बजे उठ जाता हूँ। उसके बाद मैं उठ के तुरंत मैं थोड़े से रील्स देखता हूँ।
0: अच्छा,
1: ठीक है।
0: कितनी देर?
1: एक आध घंटा देखता हूँ।
0: एक आध घंटा।
1: उसके बाद मैं स्पेशली खुद होके कपड़े धोता हूँ वॉशिंग मशीन में डाल के। उसके बाद मैं थोड़ा सा चिल मारता हूँ, बहुत अच्छा खाना खाता हूँ ऑर्डर करके। उसके बाद मैं बहुत ही प्रोडक्टिव कुछ मूवी देखता हूँ जिससे मुझे कुछ ना कुछ सीखने को मिले।
0: yes.
1: जैसे अभी रिसेंटली मैंने धमाल देखी थी।
0: हाँ।
1: तो धमाल से मुझे सीख लिया कि W के नीचे कुछ ना कुछ तो मिलेगा। ठीक है। उसके बाद मैं शाम को बहुत अर्जेंट काम से सो जाता हूँ।
0: अच्छा।
1: उसके बाद फिर मैं उठता हूँ, फिर वापस से कोई मूवी देखता हूँ, फिर खाना वाना खा के वापस से सोता हूँ। ओह गॉड, उलाला मजा आ जाता है।
0: देखिए, मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि ये जो प्रशिक बता रहे हैं ये उनके कल का प्लान नहीं है, ये उनके हर वीकेंड का प्लान है। कॉपी पेस्ट, ये इंसान यही काम करता है।
1: बस थोड़ा सा जिम भी जाता हूँ।
0: हाँ, थोड़ा सा जिम बीच में अगर चले जाते हैं तो चले जाते हैं, वरना कोई इंटरेस्ट नहीं है हमें देखिए कुछ और करने में। बस प्रशिक से सीख लेते हुए आप भी अपने वीकेंड को इसी तरह स्पेंड कीजिए, और अगर कुछ अलग डिफरेंट आप कर रहे हैं तो 3311063 पर जो है मैसेज करके हमें बता दीजिए। बाकी मैं तो आपके साथ हुई, अमेजिंग गाने भी आपके साथ ही हैं, सो बस हमारे साथ बने रहिए और कहते रहिए
1: जियो बिंदास।

0: आप सुन रहे हैं कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 एफएम।
1: बिंदास
2: टाइम चेक
3: ब्रॉट टू यू बाय
2: नानाताल पहाड़ दी अल्टीमेट कतरी एडवेंचर सुकवाकिफ अलखोर।
0: दोहा बैंक और लुलू लाए हैं शॉपिंग का एक रिवॉर्डिंग एक्सपीरियंस।
4: अब अप्लाई कीजिए दोहा बैंक लुलू मास्टर कार्ड प्लैटिनम क्रेडिट कार्ड के लिए और पाइए कतरी रियाल 500 लुलू शॉपिंग वाउचर।
0: लुलू स्टोर्स पर हर स्पेंड के साथ मिल सकता है अप टू 5% सेविंग्स लुलू पॉइंट्स के फॉर्म में।
4: प्लस इंजॉय कीजिए एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस माई बुक ऑफर्स डाइनिंग डील्स और लाइफस्टाइल प्रिविलेजेस। बस कार्ड एक्टिवेट कीजिए लुलू पर मिनिमम कतरी रियाल 1 स्पेंड कीजिए और रिवॉर्ड्स का मजा लीजिए।
0: ऑफर वैलिड टिल 30th June 2026। दोहा बैंक Lulu Mastercard Platinum. Shopping now more rewarding. TNC apply.
5: Grow your brand across Qatar's key audiences. Connect with Hindi listeners on Radio Olive 106.3 FM. Malayalam audiences on Radio Suno 91.7 FM. And Arabic listeners on Tetkar 107.4 FM. On-air visibility supported by performance-driven digital marketing campaigns. Simple, effective, integrated. Call 3009-1063 or 3082-1063.
6: Hello to all the listeners of

0: पहले जब मैं हर चीज को क्यूट कह दिया करती थी ना, तो मेरे पापा मुझसे कहते थे कि ये क्यूट क्या है, हर बात पे क्यूट कहाँ से ले आती हो। वेलकम टू 106.3 रेडियो ऑलिफर, मैं हूँ आपकी कशिश और शो आपके लिए लाइफ मस्त है लेकर आ गई हूँ। एंड देखिए, अगर आप भी हर बात पे क्यूट ओ ऐसा सब कह देते हैं, सो अब ये जो है साइंटिफिक चीज हो गई है। हाँ जी बिल्कुल, किसी इंजीनियरिंग की तरह अब आपको क्यूट स्टडीज में भी सर्टिफिकेट मिलेगा। नहीं नहीं, क्यूट होने का सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा, क्यूट चीजें ड्रॉ करने का सर्टिफिकेट मिलेगा। हाँ जी, अब क्यूट स्टडी नाम का एक सब्जेक्ट जो है वो इंट्रोड्यूस हो चुका है, जहां पर एक सर्टिफिकेशन आपको मिलेगा क्यूट कवाई आर्ट और क्यूट चीजें बनाने के लिए। यस, ऐसी चीजें जो आंखों को बहुत अच्छी लगती हैं, बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव होती हैं, उन सब चीजों को ड्रॉ करने के लिए, बनाने के लिए जो है एक स्पेशल पढ़ाई करी जाएगी। देखिए, लेकिन फिर भी मुझसे क्यूट तो कोई कुछ बना ही नहीं पाएगा। बस इसी सेल्फ अप्रिसिएशन के साथ आगे बढ़ते हैं और अमेजिंग वाला गाना जो है वो इंजॉय करते हैं। मैं हूँ आपकी कशिश, मेरे साथ कहते रहिए जियो बिंदास।
1: रेडियो ऑलिव पर आने वाला गाना कूल सॉन्ग ऑफ द आवर।
2: क्या बात है सर, क्या पर ये बात है।

0: दोहा बैंक और लुलु लाए हैं शॉपिंग का एक रिवॉर्डिंग एक्सपीरियंस।
1: अब अप्लाई कीजिए दोहा बैंक लुलु मास्टर कार्ड प्लैटिनम क्रेडिट कार्ड के लिए और पाइए कतरी रियाल 500 लुलु शॉपिंग वाउचर।
0: लुलु स्टोर्स पर हर स्पेंड के साथ मिल सकता है अप टू 5% सेविंग्स लुलु पॉइंट्स के फॉर्म में।
1: प्लस एंजॉय कीजिए एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस, माई बुक ऑफर्स, डाइनिंग डील्स और लाइफस्टाइल प्रिविलेजेस। बस कार्ड एक्टिवेट कीजिए लुलु पर मिनिमम कतरी रियाल 1 स्पेंड कीजिए और रिवॉर्ड्स का मजा लीजिए।
0: ऑफर वैलिड टिल 30th June 2026। दोहा बैंक लुलु मास्टर कार्ड प्लैटिनम शॉपिंग नाउ मोर रिवॉर्डिंग। TNC अप्लाई।
2: शैकमैन की पावर पैक्ड रेंज, हेवी ट्रक्स, टिपर्स, ट्रेलर्स और बूम ट्रक्स, दमदार परफॉर्मेंस और भरोसा सिर्फ कार्मिल के साथ। विजिट कार्मिल ग्रुप।

क्योंकि लाइफ मस्त है। Yeah, wanna feel that?

अभी तक मैंने ये देखा था कि जितने केक्स थी, पेस्ट्रीज थी, वो ओरिजिनल चीजों से इंस्पायर होके बनाई जाती थी. यानी एक मतलब असली बैग जैसा दिखने वाला केक, ये सब बहुत कॉमन हो गया था, लोग अक्सर यूज कर रहे थे. लेकिन अब फैशन अलग लेवल पे पहुंच चुका है. वेलकम जी 106.3 रेडियो ऑल पर, मैं हूँ आपकी कशिश, शो आपके लिए लाइफ मस्त है लेकर आ गई हूँ. एंड वीकेंड पे एक फैशन वाली चीज मैं आपसे जो शेयर करना चाहती हूँ, वो इंस्टाग्राम पे इस वक्त काफी वायरल है एंड लोग इसका पूरा पूरा हॉल वीडियो बना रहे हैं कि हमारे पास ऐसी और कौन कौन सी चीजें अवेलेबल है. तो देखिए यार, पहले ऐसे होता था कि हैंडबैग के शेप का आपको केक मिल जाता था, कार शेप का आपको केक मिल जाता था, पेस्ट्रीज मिल जाती थी, बिस्किट्स मिल जाती थी. लेकिन अब जो है बिस्किट्स, पेस्ट्री, इन सब के शेप का बैग जो है वो काफी वायरल हो रहा है. पूरे का पूरा डोनट बैग, केक पीस बैग या फिर एक केक शॉप बैग जो है, ये इस वक्त काफी ट्रेंड में चल रहा है. सो जितनी भी खाने पीने की चीजें हैं उन सब का बैग बना दे रहे हैं लोग, और पूरा उसको रियलिस्टिक रखने की कोशिश करी गई है. यानी जितना असली दिख सकता है उतना असली बना दो इसको. यस देखिए, ऐसी फैशन की और बहुत सारी बातचीत हम करते रहेंगे. वैसे वीकेंड है और धीरे धीरे करके मेरे जाने का वक्त भी होता जा रहा है. सो आप ये अमेजिंग वाला गाना जो है वो एंजॉय करके आओ, फिर मैं आपसे करूंगी टाटा बाय बाय. स्टे ट्यून्ड रहिए और कहते रहिए जियो बिंदास.

0: on the grill, slow-cooked mandi, perfectly spiced prawns, and that special chutney. No noise, no drama. Just seafood done right. BBQ fish, crabs, prawns, crafted with patience. Serve with pride. Danatal Pahar, the ultimate Qatari adventure. Souq Waqif Al Khor.
1: Football boundaries नहीं जानता और कतर का कल्चर कोई लिमिट्स नहीं जानता। इस वर्ल्ड कप जब कतरी फैंस अमेरिका पहुंचे तो उन्होंने सिर्फ मैच में पॉइंट्स नहीं जीता बल्कि सबका दिल जीत लिया। अपने ट्रेडिशनल कतरी थोब में फुल प्राइड के साथ उन्होंने अमेरिकन स्टेडियम में कतर के कल्चरल वैल्यूज को शोकेस किया। नो मैटर वेयर द गेम इज, आइडेंटिटी हमेशा साथ रहती है और यही है द हिवारी इनिशिएटिव जिसकी पूरी दुनिया दीवानी है। Culture travels, football connects, and Hiwari is bringing Qatar to the

देखिए लाइफ में एक अच्छी चीज आती है तो दूसरी अच्छी चीज को जाना पड़ता है, यही लाइफ का नियम है, रूल है। बस इसीलिए वीकेंड आ गया है, इस वजह से मुझे यहाँ से जाना पड़ेगा। वेलकम बैक जी, 106.3 रेडियो ऑलिव पर, मैं हूँ आपकी कशिश और मेरे साथ लाइफ मस्त है जो आप एंजॉय कर रहे थे, लेकिन अब वक्त हो गया है मेरे यहाँ से जाने का, आपको टाटा बाय बाय करने का, क्योंकि मुझे भूख लग रही है एंड मेरा भी तो वीकेंड है। देखिए लेकिन आपको दुखी होने की कोई बात नहीं, कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं जो है आपके लिए टेक टॉक लेकर आऊंगी कल भी शाम को 4 बजे। सो स्टे ट्यून रहिएगा 106.3 रेडियो ऑल पर। बाकी अपना वीकेंड बहुत ही बेहतरीन तरीके से एंजॉय कीजिएगा, वही कहूंगी जो हर रोज कहती हूँ कि खाते रहिए, जो है पानी पीते रहिए, गाड़ी धीरे धीरे हौले हौले चलाइए, अपनों का ख्याल रखिए, अपना ख्याल रखिए, मुझे दुआओं में याद रखिए, और बाकी स्टे ट्यून तो रहना ही है। और फिर जियो विद अस, बाय बाय, टेक केयर।

0: आप सुन रहे हैं रेडियो ओलिव 106.3 FM जियो बिंदास। दोहा बैंक और लुलु लाए है शॉपिंग का एक रिवॉर्डिंग एक्सपीरियंस।
1: अब अप्लाई कीजिए दोहा बैंक लुलु मास्टर कार्ड प्लैटिनम क्रेडिट कार्ड के लिए और पाइए कतरी रियाल 500 लुलु शॉपिंग वाउचर।
0: लुलु स्टोर्स पर हर स्पेंड के साथ मिल सकता है अप टू 5% सेविंग्स लुलु पॉइंट्स के फॉर्म में।
1: प्लस एंजॉय कीजिए एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस, माय बुक ऑफर्स, डाइनिंग डील्स और लाइफस्टाइल प्रिविलेजेस। बस कार्ड एक्टिवेट कीजिए लुलु पर मिनिमम कतरी रियाल 1 स्पेंड कीजिए और रिवॉर्ड्स का मजा लीजिए।
0: ऑफर वैलिड टिल 30th June 2026। दोहा बैंक लुलु Mastercard Platinum. Shopping now more rewarding. TNC apply.

0: आप सुन रहे हैं कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM.
1: Your daily surprise is here. अपना हाला रिचार्ज करो और पाओ फ्री डेटा या मिनट्स का सरप्राइज. क्लेम करो ओरेडू ऐप पर. एक्सपीरियंस मोर विद ओरेडू.
2: फुटबॉल बाउंड्रीज नहीं जानता और कतर का कल्चर कोई लिमिट्स नहीं जानता. इस वर्ल्ड कप जब कतरी फैंस अमेरिका पहुंचे तो उन्होंने सिर्फ मैच में पॉइंट्स नहीं जीता बल्कि सबका दिल जीत लिया. अपने ट्रेडिशनल कतरी थोप में फुल प्राइड के साथ उन्होंने अमेरिकन स्टेडियम में कतर के कल्चरल वैल्यूज को शोकेस किया. नो मैटर वेयर द गेम इज, आइडेंटिटी हमेशा साथ रहती है और यही है द हिवारी इनिशिएटिव जिसकी पूरी दुनिया दीवानी है. कल्चर ट्रैवल्स, फुटबॉल कनेक्ट्स एंड हिवारी इज ब्रिंगिंग कतर टू द वर्ल्ड.
3: हेलो लिसनर्स, मेरा नाम है राजपाल यादव और आप सुन रहे हैं कतर का नंबर वन हिंदी रेडियो स्टेशन रेडियो ऑलिव 106.

0: दोहा बैंक और लुलू लाए है शॉपिंग का एक रिवॉर्डिंग एक्सपीरियंस।
1: अब अप्लाई कीजिए दोहा बैंक लुलू मास्टर कार्ड प्लैटिनम क्रेडिट कार्ड के लिए और पाइए कतरी रियाल 500 लुलू शॉपिंग वाउचर।
0: लुलू स्टोर्स पर हर स्पेंड के साथ मिल सकता है अप टू 5% सेविंग्स लुलू पॉइंट्स के फॉर्म में।
1: प्लस एंजॉय कीजिए एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस, माई बुक ऑफर्स, डाइनिंग डील्स और लाइफस्टाइल प्रिविलेजेस। बस कार्ड एक्टिवेट कीजिए लुलू पर मिनिमम कतरी रियाल 1 स्पेंड कीजिए और रिवॉर्ड्स का मजा लीजिए।
0: ऑफर वैलिड टिल 30th June 2026। दोहा बैंक लुलू मास्टरकार्ड प्लैटिनम, शॉपिंग नाउ मोर रिवॉर्डिंग। TNC अप्लाई।
2: लाइफ 24/7 चलती है तो डेंटल केयर सिर्फ ऑफिस आवर्स में क्यों मिले? नसीम सर्जिकल एंड मेडिकल सेंटर सी रिंग रोड का डेंटल डिपार्टमेंट अब है 24/7 ओपन। रूटीन केयर, ट्रीटमेंट या डेंटल इमरजेंसी, एक्सपर्ट डेंटिस्ट और एडवांस फैसिलिटीज के साथ केयर हर वक्त अवेलेबल है। कॉल 4411133। ऑल्सो विजिट आवर डेंटल सेंटर्स इन अजीजिया और मुंतजा। नसीम सर्जिकल एंड मेडिकल सेंटर, हेल्दी स्माइल्स एनी टाइम।
3: इस खेल में प्लेयर प्लेयर नहीं वॉरियर कहलाते हैं। यहां हर गोल पे एड्रेनलिन रश हाई होता है। यहां हर चोट एक मेडल है। हारना मना है और डरना गुना है। यहां सेलिब्रेशन के लिए ढोल नहीं, दिलों की धड़कन शोर करती है। और ऑडियंस चीयर नहीं, रोर करती है। बिकॉज इट्स नॉट जस्ट अ गेम, इट्स एन इमोशन।

0: फीफा की हर डिटेल के लिए सुनिए रेडियो ऑलिव
1: इन एसोसिएशन विद
0: डाउनलोड द सिटी एक्सचेंज मोबाइल ऐप नाउ टू सेंड मनी क्विकली एट द बेस्ट एक्सचेंज रेट्स
2: ऑल्सो पाम स्विस गोल्ड बार्स आर नाउ अवेलेबल एट द बेस्ट प्राइस एट सिटी एक्सचेंज
0: योर ट्रस्टेड रेमिटेंस पार्टनर.
3: Grow your brand across Qatar's key audiences. Connect with Hindi listeners on Radio Olive 106.3 FM, Malayalam audiences on Radio Suno 91.7 FM, and Arabic listeners on Tetkar 107.4 FM. On-air visibility supported by performance-driven digital marketing campaigns. Simple, effective, integrated. Call 3009-1063 or 3082-1063.
4: Olive Music Marathon. Ek ghanta. Non-stop, back to back.

0: 106.3 FM Gio Bendaz. दोहा बैंक और लुलू लाए हैं शॉपिंग का एक रिवॉर्डिंग एक्सपीरियंस।
1: अब अप्लाई कीजिए दोहा बैंक लुलू मास्टर कार्ड प्लैटिनम क्रेडिट कार्ड के लिए और पाइए कतरी रियाल 500 लुलू शॉपिंग वाउचर।
0: लुलू स्टोर्स पर हर स्पेंड के साथ मिल सकता है अप टू 5% सेविंग्स लुलू पॉइंट्स के फॉर्म में।
1: प्लस एंजॉय कीजिए एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस, माई बुक ऑफर्स, डाइनिंग डील्स और लाइफस्टाइल प्रिविलेजेस। बस कार्ड एक्टिवेट कीजिए लुलू पर मिनिमम कतरी रियाल 1 स्पेंड कीजिए और रिवॉर्ड्स का मजा लीजिए।
0: ऑफर वैलिड टिल 30th June 2026। दोहा बैंक लुलू मास्टरकार्ड प्लैटिनम शॉपिंग नाउ मोर रिवॉर्डिंग। टीएनसी अप्लाई।
2: शैकमैन की पावर पैक्ड रेंज, हेवी ट्रक्स, टिपर्स, ट्रेलर्स और बूम ट्रक्स, दमदार परफॉर्मेंस और भरोसा सिर्फ कार्मिल के साथ। विजिट कार्मिल ग्रुप नाउ।
3: ऑलिव म्यूजिक मैराथन, एक घंटा नॉन स्टॉप बैक टू बैक गाने।

0: आप सुन रहे हैं रेडियो ओलिव 106.3 FM जियो बिंदास
1: इस वेकेशन प्यार से हमारा इंतजार करने वाले अपनों को एक गोल्डन सरप्राइज क्यों ना दे मलबार गोल्ड एंड डायमंड्स के गोल्डन समर ऑफर के साथ डायमंड एंड प्रेशियस जेम ज्वेलरी खरीदने पर पाइए फ्री कैश वाउचर्स अपने पुरानी गोल्ड ज्वेलरी को एक्सचेंज कीजिए विदाउट एनी लॉस और अब विद द इंपोर्ट ड्यूटी रिविजन इन इंडिया यू कैन नाउ सेव अप टू 15% ऑन गोल्ड प्राइसेस हियर इन जीसीसी विजिट मलबार गोल्ड एंड डायमंड्स टुडे
2: मॉर्निंग्स एंड नाइट

0: ऑलिव रिचार्ज हर दोपहर 2 से 6 रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम पर जियो बिंदास
1: इन एसोसिएशन विद होम्स आर अस वी कंप्लीट योर होम।

What a beautiful track yaar. अमरिंदर गिल की आवाज में जदू मिल के बैठांगे ते गल्ला बहुत करनिया ने यार. हां जी, बहुत सारी बातें करने के लिए आ गई हूं मैं आपके साथ. यू आर लिसनिंग टू रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम. तनिषा गिल जी आपके साथ ऑलिव रिचार्ज लेकर अ वेरी गुड आफ्टरनून मेरी जान. और खुशी की लहर जो दौड़ी है वीकेंड का नाम सुनते ही, वो तो अलग ही लेवल पे है भाई. तो

बताइए थर्सडे कैसा ट्रीट कर रहा है आपको, जून 18th, व्हाट्स द वाइब ऑफ दिस थर्सडे? ऑब्वियसली वीकेंड आता है ना, तो हम वैसे प्लानिंग वाले मोड में चल जाते हैं कि क्या क्या करना है वीकेंड पे एंड ऑल. सो प्लान्स अगर बन गए हैं तो वो भी बिंदास शेयर कीजिए मुझसे.

0: हो, बड़े बड़े वादे। कॉकटेल 2 से ये गाना कल मूवी रिलीज हो रही है, कौन कौन देखने जा रहा है ये भी बता दो जी।
1: होने दो बत्तियां, होने दो बत्तियां।
0: ब्यूटीफुल ट्रैक एंड थोड़ा नॉस्टैल्जिया का तड़का भी तो बनता है। और बॉम्बे वाइकिंग्स के बाद जावेद बशीर साहब आपका इंतजार कर रहे हैं। कर दिया यार। वेल, इन सबको मैं तभी आने दूंगी जब मेरे पास आएंगे आपके मैसेजेस। तो फटाफट से आ जाओ 3311063 पर मैसेज कीजिए और बताइए हाउ आर यू, हाउ हैव यू बिन मेरी जान, हाउ इज द डे गोइंग सो फार, लंच वंच हो गया कि नहीं, ऑफिस में सब बढ़िया चल रहा है, वीकेंड सेट है आपका, बता दो फटाफट से आ जाओ। और फिलहाल सुनते हैं कॉकटेल 2 से अरिजीत सिंह और सुनिधि चौहान की आवाज में तुझको। स्टे ट्यून्ड, बिंदास मेरी जान।

0: listening to Radio Olive 106.3 FM. दोहा बैंक और लुलु लाए हैं शॉपिंग का एक रिवॉर्डिंग एक्सपीरियंस।
1: अब अप्लाई कीजिए दोहा बैंक लुलु मास्टर कार्ड प्लैटिनम क्रेडिट कार्ड के लिए और पाइए कतरी रियाल 500 लुलु शॉपिंग वाउचर।
0: लुलु स्टोर्स पर हर स्पेंड के साथ मिल सकता है अप टू 5% सेविंग्स लुलु पॉइंट्स के फॉर्म में।
1: प्लस एंजॉय कीजिए एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस, माय बुक ऑफर्स, डाइनिंग डील्स और लाइफस्टाइल प्रिविलेजेस। बस कार्ड एक्टिवेट कीजिए लुलु पर मिनिमम कतरी रियाल एक स्पेंड कीजिए और रिवॉर्ड्स का मजा लीजिए।
0: ऑफर वैलिड टिल 30th June 2026। दोहा बैंक लुलु MasterCard Platinum. Shopping now more rewarding. TNC apply.
2: Hi Radio Olive 106.3 listener. This is Shah Rukh Khan.
3: Hi, this is Ajay Devgan.
4: Hi, this is Akshay Kumar.
5: Hi, this is Anushka Sharma.
6: And I'm Arshul Vasi.
7: This is Ranveer Singh. Stay tuned.

नंदिनी सरकार और जैब की आवाज में फितूर मूवी से होने दो बतिया तनीषा के साथ सुना आपने ये सुंदर सा गाना। ऑलिव रिचार्ज चल रहा है यहाँ पर और एक बहुत ही सुंदर सी बात भी मैं करने वाली हूँ। हम सब बहुत वेल्दी हैं, हम ये रियलाइज नहीं करते। इन विच कॉन्टेक्स्ट आई एम सेइंग दैट, सो इफ यू हैव अ पर्सन जिसके साथ यू कैन बी एनी वर्जन ऑफ योर सेल्फ, यू नो वन मिनट यू आर लाफिंग, कुछ भी सिली सी चीज के ऊपर आप दोनों बात करके हंस रहे हैं एंड देन नेक्स्ट मोमेंट वो कॉन्वर्सेशन इतनी सीरियस हो जाती है कि यू नो आपको सडनली फील होता है कि अरे ये मूड कैसे चेंज हो गया एंड यू कैन टॉक टू दैट पर्सन अबाउट एनी थिंग। दे हैव सीन एवरी वर्जन ऑफ यू, एवरी फ्लॉ ऑफ यू एंड जो आपकी खूबियाँ हैं वो भी उन्हें बहुत अच्छे से पता है एंड दे आर स्टिल देयर, यू नो आपके हर गुड बैड इविल अमेजिंग हर साइड को जानते हुए दे आर बाय योर साइड। Then you are the wealthiest person out there, meri jaan. And हम सब हैं, हम सब के पास कोई ना कोई एक ऐसा इंसान जरूर होता है जो you know हमें freedom देता है कि you know you can be whoever you want to be with me. You don't have to pretend at all. आप अपना raw real version दिखा सकते हो उस इंसान को and we don't acknowledge that a lot. So this is your reminder. If that person is there in your life, you know, it can be your friend, it can be your family, siblings, your partner, anybody. जो भी आपको लगता है जिस इंसान के सामने आप अपना रॉ और अनफिल्टर्ड वर्जन रहते हो, डू लेट देम नो दैट हाउ लकी यू आर दैट दे आर इन योर लाइफ। यस, सेंडिंग अ ब्यूटीफुल ट्रैक ओनली ऑन रेडियो ऑलिव, जियो बिंदास मेरी जान। कूल सॉन्ग रेडियो ऑलिव पर आने वाला गाना कूल सॉन्ग ऑफ द ईयर।

0: आप सुन रहे हैं कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम।
1: बिंदास Fresh fish on the grill, slow cooked mandi, perfectly spiced prawns, and that special chutney. No noise, no drama. Just seafood done right. BBQ fish, crabs, prawns, crafted with patience, served with pride. Danadal Bahar, the ultimate Katri adventure. Souq Waqif Alkhol.
2: A ring for the newly married? Cute little bangle for the newborn?
3: अरे यार, holiday season is here और फिर वही gifting का tension. फिर मलबार गोल्ड एंड डायमंड्स गोल्डन समर के साथ आइए फ्री कैश वाउचर्स ऑन डायमंड एंड प्रेशियस जेम ज्वेलरी परचेजेस प्लस एक्सचेंज योर गोल्ड ज्वेलरी एंड अपग्रेड टू द लेटेस्ट डिजाइंस विदाउट एनी लॉस और सुनो देयर इज मोर विद द इंपोर्ट ड्यूटी रिवीजन इन इंडिया यू कैन नाउ सेव अप टू 15% ऑन गोल्ड प्राइसेस हियर इन द GCC विजिट मलबार गोल्ड एंड डायमंड्स टुडे.
4: Grow your brand across Qatar's key audiences. Connect with Hindi listeners on Radio Olive 106.3 FM, Malayalam audiences on Radio Suno 91.7 FM, and Arabic listeners on Tetkar 107.4 FM. On-air visibility supported by performance-driven digital marketing campaigns. Simple, effective, integrated. Call 3009-1063 or 3082-1063.
0: Olive Recharge Radio Olive 106.3 FM par Jio Bindas
5: Olive Recharge.
6: This hour is brought to you by
1: Malabar Gold and Diamonds, the responsible jeweler. Malabar Gold and Diamonds ki har jewelry piece ethically sourced hoti hai aur aati hai Malabar Promise ke saath, jahan milti hai complete transparency aur bharosa. In association with
7: Doha Bank,
1: make shopping more rewarding. Get a 500 Qatri Riyal Lulu voucher with your new Doha Bank Lulu Mastercard Platinum Credit Card. Just spend 1 Qatri Riyal to unlock up to 5% rewards. Apply before June 30th. TNC apply.

You're listening to Radio Olive 106.3 FM, Drisha Ab ke saath. Ye tune kya kiya Javed Bashir sahab ki awaaz mein suna aapne, bahut hi kamaal ka gana. Olive Recharge chal raha hai yahan par aur bhai Qadri Cabinet ne review kar diya hai draft for Child Digital Protection Law. और उसके जो key points हैं वो basically ये है कि you know it is aiming to improve online safety for children and teenagers. अभी इतना ज़्यादा internet हमारे पास available है, you know all sorts of information and content is out there. कोई भी access कर सकता है आपकी details and everything, because हम इतने ज़्यादा active हो गए हैं social media पे. We want to post everything, you know हमारी life में क्या चल रहा है, and it is काफ़ी हद तक harmful as well. So थोड़ा बच्चों के लिए filter करके रखना ये चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. ये जो लॉ ड्राफ्ट किया गया है, इट इज़ टू रेगुलेट द यूज़ ऑफ डिजिटल प्लेटफॉर्म्स बाय इंडिविजुअल्स अंडर 16 ईयर्स ऑफ एज. सो 16 साल से नीचे के जो बच्चे हैं उनके लिए ये लॉ ड्राफ्ट किया जा रहा है. एंड बेसिक एम यही है कि यू नो जितने भी ऑनलाइन रिस्क है, हार्मफुल डिजिटल कॉन्टेंट है, वो बच्चों तक ना पहुँचे, उससे वो सेफ रहे. इट ऑब्वियसली अफेक्ट्स देम अलॉट, यू नो देर इज साइबर बुलिंग, देर इज एक्सपोजर टू इनअप्रोप्रिएट और हार्मफुल कॉन्टेंट, और उसका गलत असर पड़ रहा है. ऑल्सो जो ये छोटे छोटे रील फॉर्मेट्स आ चुके हैं, इसने हमारे टाइम स्पैन को, अटेंशन स्पैन को तो वैसे ही बर्बाद करके रख दिया है. अडल्ट का बुरा हाल हो रखा है, तो बच्चों के ऊपर तो सोचो क्या ही उसका इफेक्ट हो रहा होगा, इम्पैक्ट हो रहा होगा. सो इट इज़ अ रियली गुड स्टेप, एंड इट विल ऑब्वियसली हेल्प द पेरेंट्स ऑल्सो टू प्रोटेक्ट देयर माइनर्स, एंड दैट्स अ रियली गुड इनिशिएटिव. एंड ऑन दैट नोट, एक बहुत ही अमेजिंग गाना, मस्त मगन फ्रॉम द मूवी टू स्टेट्स, भेज रही हूँ. स्टे ट्यून्ड एंड रिव्यू विद अस.

0: Your daily surprise is here. अपना हाला रिचार्ज करो और पाओ फ्री डेटा या मिनट्स का सरप्राइज. क्लेम करो Ooredoo ऐप पर. एक्सपीरियंस मोर विद Ooredoo.
1: सोचो अगर सेविंग से आप बन जाओ मिलियनेयर, कमर्शियल बैंक के सेव एंड विन कैंपेन में भाग लीजिए.
2: हर 10,000 कतरी रियाल सेविंग ग्रोथ पे मिलेगा एक कूपन, या सिर्फ 50% सैलरी सेव करो एंड एंटर द ड्रॉ.
1: न्यू कस्टमर हो तो अकाउंट खोलो और फर्स्ट सैलरी ट्रांसफर पे गारंटीड चांस टू विन,
2: और 9 महीने की कंसिस्टेंट सैलरी ट्रांसफर के साथ मेगा ड्रॉ में एंट्री पक्की.
1: तो फिर सोचना क्या, अगले मिलियनेयर आप हो सकते हो. आज ही शुरू करो सेविंग्स. कमर्शियल बैंक, सेव एंड विन.
3: डॉक्टर ऑन एयर ब्रॉट टू यू बाय नसीम हेल्थकेयर.
4: डू यू नो द नंबर वन रीजन व्हाई एडल्ट्स लूज देयर टीथ इज नॉट बिकॉज ऑफ कैविटीज, इट इज बिकॉज ऑफ गम डिजीज, आल्सो कॉल्ड एज पीरियडोंटाइटिस. हेलो, माय नेम इज डॉक्टर मोहम्मद बासिल. आई एम अ पीरियडोंटिस्ट फ्रॉम नसीम मेडिकल सेंटर. नाउ दिस स्टार्ची एंड शुगरी फूड डेब्रिस दैट इज लेफ्ट बिहाइंड इन योर माउथ आफ्टर ईच ऑफ आवर मील्स इंटरैक्ट्स विद सर्टेन बैक्टीरिया एंड फॉर्म्स अ सॉफ्ट कोटिंग ऑन द टीथ कॉल्ड एज प्लैक, विच कैन बी रिमूव्ड बाय प्रॉपर टूथ ब्रशिंग. But if left behind, it hardens to form something called as calculus or tartar, which can only be removed by professional cleaning. When untreated, it irritates the gum tissues, leading to inflammation of the gums. This inflammation then spreads to the bone supporting your teeth, causing bone loss and ultimately loss of your teeth. So make sure you visit your dentist before you go from a beautiful smile to a toothless smile.
3: Doctor on air. Brought to you by Naseem Healthcare.
5: Only laga aur ho ja recharge.
6: Olive Recharge. Radio Olive 106.3 FM par. Jio Bindas.
5: Olive Recharge.
3: This hour is brought to you by
0: Malabar Gold and Diamonds, the responsible jeweler. Malabar Gold and Diamonds ki har jewelry piece ethically sourced hoti hai aur aati hai Malabar Promise ke saath, jahan milti hai complete transparency aur bharosa.
7: In association with
8: Doha Bank,
7: make shopping more rewarding. Get a 500 Qatri Riyal Lulu voucher with your new Doha Bank Lulu Mastercard Platinum Credit Card. Just spend 1 Qatri Riyal to unlock up to 5% rewards. Apply before June 30th. TNC apply.

0: सुनते हैं नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM. दोहा बैंक और लुलू लाए हैं शॉपिंग का एक रिवॉर्डिंग एक्सपीरियंस।
1: अब अप्लाई कीजिए दोहा बैंक लुलू मास्टर कार्ड प्लैटिनम क्रेडिट कार्ड के लिए और पाइए कतरी रियाल 500 लुलू शॉपिंग वाउचर।
0: लुलू स्टोर्स पर हर स्पेंड के साथ मिल सकता है अप टू 5% सेविंग्स लुलू पॉइंट्स के फॉर्म में।
1: प्लस एंजॉय कीजिए एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस, माई बुक ऑफर्स, डाइनिंग डील्स और लाइफ स्टाइल प्रिविलेजेस। बस कार्ड एक्टिवेट कीजिए लुलू पर मिनिमम कतरी रियाल 1 स्पेंड कीजिए और रिवॉर्ड्स का मजा लीजिए।
0: ऑफर वैलिड टिल 30th June 2026। दोहा बैंक Lulu Mastercard Platinum. Shopping now more rewarding. TNC apply.
2: Football boundaries नहीं जानता और कतर का कल्चर कोई लिमिट्स नहीं जानता। इस वर्ल्ड कप जब कतरी फैंस अमेरिका पहुंचे तो उन्होंने सिर्फ मैच में पॉइंट्स नहीं जीता बल्कि सबका दिल जीत लिया। अपने ट्रेडिशनल कतरी थोप में फुल प्राइड के साथ उन्होंने अमेरिकन स्टेडियम में कतर के कल्चरल वैल्यूज को शोकेस किया। No matter where the game is, identity हमेशा साथ रहती है और यही है द हिवारी इनिशिएटिव जिसकी पूरी दुनिया दीवानी है। कल्चर ट्रैवल्स, फुटबॉल कनेक्ट्स एंड हिवारी इज ब्रिंगिंग कतर टू द

0: दोहा बैंक और लुलू लाए हैं शॉपिंग का एक रिवॉर्डिंग एक्सपीरियंस।
1: अब अप्लाई कीजिए दोहा बैंक लुलू मास्टर कार्ड प्लैटिनम क्रेडिट कार्ड के लिए और पाइए कतरी रियाल 500 लुलू शॉपिंग वाउचर।
0: लुलू स्टोर्स पर हर स्पेंड के साथ मिल सकता है अप टू 5% सेविंग्स लुलू पॉइंट्स के फॉर्म में।
1: प्लस एंजॉय कीजिए एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस, माई बुक ऑफर्स, डाइनिंग डील्स और लाइफस्टाइल प्रिविलेजेस। बस कार्ड एक्टिवेट कीजिए लुलू पर मिनिमम कतरी रियाल 1 स्पेंड कीजिए और रिवॉर्ड्स का मजा लीजिए।
0: ऑफर वैलिड टिल 30th June 2026। दोहा बैंक Lulu Mastercard Platinum. Shopping now more rewarding. TNC apply.
2: Hi Radio Olive. Radio Olive. 106.3 listeners. This is Shahrukh Khan.
3: Shahrukh Khan.
4: I'm in number one. Radio Olive.
5: Olive Suno Radio Network. Qatar's number one Asian Radio Network.
6: Humle laga aur ho ja recharge.
7: Olive
8: recharge. Olive recharge. रेडियो ऑलिव 106.3 FM पर जियो बिंदास।
9: दिस आवर इज ब्रॉट टू यू बाय
10: मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स, द रिस्पांसिबल ज्वेलर। मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स की हर ज्वेलरी पीस एथिकली सोर्स्ड होती है और आती है मलाबार प्रॉमिस के साथ, जहां मिलती है कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी और भरोसा
11: इन एसोसिएशन विद
12: दोहा बैंक।
1: मेक शॉपिंग मोर रिवॉर्डिंग। गेट अ 500 कतरी रियाल लुलू वाउचर विद योर न्यू दोहा बैंक लुलू मास्टर कार्ड प्लैटिनम क्रेडिट कार्ड। जस्ट स्पेंड 1 कतरी रियाल टू अनलॉक अप टू 5% रिवॉर्ड्स। अप्लाई बिफोर June 30th। TNC अप्लाई।

0: Amit Mishra aur Anushka ke awaaz mein Man My Emotion from the movie Dilwale only on Radio 106.3 FM. Tanisha aapke saath all reach out chal raha hai yahan par aur bhai Doha Bank aur Lulu aapke liye jo kamal offer lekar aaya na it will make your shopping more rewarding and amazing. Ji. All you have to do is just apply for Doha Bank Lulu Mastercard Platinum Credit Card or you can get up to 500 riyal ka Lulu shopping voucher. And not just that, जब भी आप लुलू स्टोर पर स्पेंड करेंगे आपको 5% सेविंग्स मिलेंगी लुलू पॉइंट्स के फॉर्म में तो वो आप बाद में रिडीम कर सकते हैं ऑल्सो यू कैन एन्जॉय एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस माई बुक ऑफर्स डाइनिंग डील्स और लाइफ स्टाइल प्रिविलेजेस बस कार्ड एक्टिवेट करना है लुलू पर एक रियाल मिनिमम आपने स्पेंड करना है और रिवॉर्ड्स का मजा ले सकते हैं दैट्स ऑल दिस ऑफर इज वैलिड टिल 30th June ओनली सो फटाफट से जाइए और अप्लाई कीजिए फॉर दोहा बैंक लुलू मास्टर कार्ड प्लैटिनम क्रेडिट कार्ड एंड अपनी शॉपिंग को और भी मजेदार बनाइए और सुन रही है रेडियो ऑलिव जियो बिंदास
1: अब सुनिए ऑलिव का जबरदस्त है जबरदस्त

0: सुन रहे हैं कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 एफएम।
1: क्या आप एक प्रोफेशनल इलेक्ट्रीशियन या प्लम्बर हैं? तो अब अपनी स्किल्स को प्रूफ करने का वक्त आ गया है। हासिल कीजिए एक ऑफिशियल कहरामा सर्टिफिकेशन, पाइए अपना लाइसेंस जो आपके लिए कतर में नए जॉब अपॉर्चुनिटीज के दरवाजे खोल देगा। एक ऐसे सर्टिफिकेट के साथ जो आपकी ब्रिलियंस और क्वालिटी स्टैंडर्ड्स का कमिटमेंट शो करता है। इस मौके को हाथ से जाने मत दीजिए, अभी रजिस्टर कीजिए और बन जाइए अपने फील्ड के टॉप कॉन्ट्रैक्टर्स और टेक्नीशियंस में से एक। बस विजिट कीजिए कहरामा की वेबसाइट www.km.qa और खुद को कीजिए सर्टिफाइड, बनिए सर्टिफाइड के साथ बनिए।
2: ग्रो योर ब्रांड अक्रॉस कतर्स की ऑडियंसेस, कनेक्ट विद हिंदी लिसनर्स ऑन रेडियो ओलिव 106.3 एफएम, मलयालम ऑडियंसेस ऑन रेडियो सुनो 91.7 एफएम एंड अरबिक लिसनर्स ऑन तत्कार 107.4 एफएम। ऑन एयर विजिबिलिटी सपोर्टेड बाय परफॉर्मेंस ड्रिवन डिजिटल मार्केटिंग कैंपेन्स, सिंपल इफेक्टिव इंटीग्रेटेड। कॉल 3009-1063 और 3082-1063।
3: लगा और हो जा रिचार्ज, ओलिव रिचार्ज,
4: ओलिव रिचार्ज, रेडियो ओलिव 106.3 एफएम पर जियो बिंदास।
3: ओलिव रिचार्ज।
5: This hour is brought to you by
6: Malabar Gold and Diamonds, the responsible jeweler. Malabar Gold and Diamonds की हर jewellery piece ethically sourced होती है और आती है Malabar Promise के साथ, जहाँ मिलती है complete transparency और भरोसा.
7: In association with
8: Doha Bank,
7: make shopping more rewarding. Get a 500 Qatri Riyal Lulu voucher with your new Doha Bank Lulu Mastercard Platinum Credit Card. Just spend 1 Qatri Riyal to unlock up to 5% rewards. Apply before June 30th. TNC apply.

You're listening to Radio Olive 106.3 FM, Dinisha आपके साथ Olive Retard चल रहे हैं यहाँ और Qatar Civil Aviation Authority ने introduce कर दिया है नए rules for carrying power banks. So काफी सारे cases हमने सुना, you know, battery explosions and all के. So that is why, you know, for our own safety, दो maximum power banks allowed है for a person to carry and each power bank उसका capacity 100 watt से ज्यादा का नहीं होना चाहिए. ये तो हमें पता ही है कि power bank जो है वो कैबिन बैगेज हैंड लगेज में ही अलाउड है, आप उसको चेक इन बैगेज में नहीं डाल सकते हैं और चार्जिंग करना भी अलाउड नहीं है पावर बैंक को चार्ज करना बेसिकली. लाइक ऑब्वियसली इफ यू आर यूजिंग पावर बैंक आप फोन चार्ज कर सकते हैं बट यू कैन नॉट चार्ज योर पावर बैंक थ्रू द इन फ्लाइट सॉकेट्स और चार्जिंग टर्मिनल्स. ठीक है एंड उसे एक्सेसिबल रखिए इजिली सो दैट अगर कोई भी बैटरी रिलेटेड इंसिडेंट होता है इशू होता है तो वो आप आसानी से हैंडल कर पाए या फिर क्रू हैंडल कर पाए. ओवरहेड बिन्स में नहीं डालना है उनको, लाइक वेर एवर योर हैंड लगेज इज उसको उसके साथ ऊपर ओवरहेड बिन्स में नहीं रख देना है. इट शुड बी एक्सेसिबल नियर टू यू. ओके इन सब चीज़ों का ख्याल रखें एंड वेन एवर यू आर ट्रैवलिंग डू चेक द रूल्स कि यू नो क्या क्या अलाउड है क्या क्या नहीं अलाउड है सो दैट आपको जो लास्ट मिनट हैसल है वो ना हो और बाकी तो आप समझदार हो ही है ना. तो बस इसी बात में भेज रही है कमाल गाना सुनिए स्टे ट्यून्ड एंड ट्रू विद अस.

You're listening to Radio Olive 106.3 FM. Tanisha आपके साथ Olive Talk चल रहा है यहाँ पर और FIFA Madness is on, right? और इसीलिए City Exchange आपके लिए एक बहुत बढ़िया मौका लाया है कुछ कमाल के गिफ्ट शीप ने कहा. All you have to do is go to our social media, Radio Olive के पेज पर जाइए. अगर अभी तक फॉलो नहीं किया तो पहले तो फटाफट से फॉलो कर लो. देन वहां पर आपको दिखेगा एक पोस्ट जहां पर आपने अपनी प्रेडिक्शन लिखनी है कि ये जो कतर और कनाडा का मैच होने वाला है उसमें कौन जीतेगा. We know what the answer will be. फटाफट से जाइए, जाके उस पोस्ट पे कमेंट कीजिए और रेडियो ऑलिव रेडियो सुनो और सिटी एक्सचेंज कतर को फॉलो कीजिए एंड टैग योर थ्री फ्रेंड्स. दैट्स ऑल यू हैव टू डू एंड यू कैन विन समथिंग रियली एक्साइटिंग फ्रॉम सिटी एक्सचेंज. तो ये मौका हाथ से जाना नहीं चाहिए, जल्दी से पहुंचो सोशल मीडिया पर और कर दो ये सारे काम और जीत जाओ बढ़िया से गिफ्ट्स. और सुनते रहो रेडियो ऑलिव, जियो बिंदास मेरी जान.

0: दोहा बैंक और लुलु लाए हैं शॉपिंग का एक रिवॉर्डिंग एक्सपीरियंस।
1: अब अप्लाई कीजिए दोहा बैंक लुलु मास्टर कार्ड प्लैटिनम क्रेडिट कार्ड के लिए और पाइए कतरी रियाल 500 लुलु शॉपिंग वाउचर।
0: लुलु स्टोर्स पर हर स्पेंड के साथ मिल सकता है अप टू 5% सेविंग्स लुलु पॉइंट्स के फॉर्म में।
1: प्लस एंजॉय कीजिए एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस, माई बुक ऑफर्स, डाइनिंग डील्स और लाइफस्टाइल प्रिविलेजेस। बस कार्ड एक्टिवेट कीजिए लुलु पर मिनिमम कतरी रियाल 1 स्पेंड कीजिए और रिवॉर्ड्स का मजा लीजिए।
0: ऑफर वैलिड टिल 30 June 2026। दोहा बैंक लुलु मास्टर कार्ड प्लैटिनम। शॉपिंग नाउ मोर रिवॉर्डिंग। TNC अप्लाई।

0: ऑलिव रिचार्ज आरजे तनीशा के साथ हर दोपहर 2 से 5 रेडियो ऑलिव 106.3 FM पर जियो बिंदास।
1: This hour is brought to you by
2: Malabar Gold and Diamonds, the responsible jeweler. Malabar Gold and Diamonds की हर jewelry piece

गई थी पर उसे वापस लाने का काम भी तो आप ही ने किया था सर. You're listening to Radio All Over 106.3 FM, Tanisha आपके साथ. All Every Jar जुल रहे हैं यहाँ पर और वक्त हो चुका है. Lame jams का वक्त हो गया और आज का मेरा सवाल ओहो क्रेजी लेम है ये तो. सो ध्यान से सुनिएगा. द क्वेश्चन इज कि व्हेनेवर वी कट द नेल्स व्हाई इट डज नॉट ब्लीड. खून क्यों नहीं आता है जब भी हम नेल्स कट करते हैं, ये आपने मुझे बताना है. 3311063 पर मैसेज कीजिए या फिर कॉल कर दीजिए 4444106 पर. लॉजिक पे मैं जाना कि उसमें तो होता ही नहीं है ना, खून तो कैसे आएगा. नहीं, लेम है. सोचो जरा, व्हेनेवर वी कट आर नेल्स व्हाई इट डज नॉट ब्लीड. इसका जवाब चाहिए.

वीकेंड को डेडिकेट करती हूँ मैं ये। आईने में देख लिया मैंने, मेरा आशिक छल्ला बल्ला, मेरा बलमा छल्ला बल्ला। ये सारे कमाल के गाने लाइन अप इस घंटे में आपके लिए। इंतजार कर रही हूँ आपके मैसेज का 3311063 पर। व्हेनेवर वी कट आवर नेल्स व्हाई इट डज नॉट ब्लीड, बताएं मुझे सेंडिंग आसिम अजहर की आवाज में। तू तू है वही। स्टे ट्यून्ड टू रेडियो ऑल।

0: Manila's number one radio station. Radio Olive 106.3 FM. Gio Bindas. Doha Bank और Lulu लाए हैं शॉपिंग का एक रिवॉर्डिंग एक्सपीरियंस।
1: अब अप्लाई कीजिए Doha Bank Lulu Mastercard Platinum Credit Card के लिए और पाइए कतरी रियाल 500 Lulu शॉपिंग वाउचर।
0: Lulu स्टोर्स पर हर स्पेंड के साथ मिल सकता है अप टू 5% सेविंग्स Lulu पॉइंट्स के फॉर्म में।
1: प्लस एंजॉय कीजिए एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस, माई बुक ऑफर्स, डाइनिंग डील्स और लाइफस्टाइल प्रिविलेजेस। बस कार्ड एक्टिवेट कीजिए Lulu पर मिनिमम कतरी रियाल एक स्पेंड कीजिए और रिवॉर्ड्स का मजा लीजिए।
0: ऑफर वैलिड टिल 30th June 2026। Doha Bank Lulu Mastercard Platinum. Shopping now more rewarding. TNC apply.
2: Football boundaries नहीं जानता और कतर का कल्चर कोई लिमिट्स नहीं जानता. इस वर्ल्ड कप जब कतरी फैंस अमेरिका पहुंचे तो उन्होंने सिर्फ मैच में पॉइंट्स नहीं जीता बल्कि सबका दिल जीत लिया. अपने ट्रेडिशनल कतरी थोप में फुल प्राइड के साथ उन्होंने अमेरिकन स्टेडियम में कतर के कल्चरल वैल्यूज को शोकेस किया. नो मैटर वेयर द गेम इज, आइडेंटिटी हमेशा साथ रहती है और यही है द हिवारी इनिशिएटिव जिसकी पूरी दुनिया दीवानी है. कल्चर ट्रैवल्स, फुटबॉल कनेक्ट्स एंड हिवारी इज ब्रिंगिंग कतर टू द वर्ल्ड.
3: Grow your brand across Qatar's key audiences. Connect with Hindi listeners on Radio Olive 106.3 FM, Malayalam audiences on Radio Suno 91.7 FM, and Arabic listeners on Tetkar 107.4 FM. On-air visibility supported by performance-driven digital marketing campaigns. Simple, effective, integrated. Call 3009-1063 or 3082-1063.
4: Hi, मैं हूँ सारिका. आप मुझे सुन रहे हैं रेडियो ओलिव 106.3.
5: ओलिव सुनो रेडियो नेटवर्क, कतर्स नंबर वन एशियन रेडियो नेटवर्क.

0: तनिषा दिलजीत दोसांझ की आवाज में वाटर सुना आपने ऑन रेडियो ऑल ओवर 106.3 एफएम तनिषा आपके साथ ऑल ओवर रिचार्ज चल रहा है यहाँ पर और मैंने पूछा था लेम जेम्स का सवाल जी सो आज का सवाल था कि व्हेनेवर वी कट आवर नेल्स व्हाई इट डज नॉट ब्लीड और भाई साहब क्रेजी मुझे किसी ने डिसअपॉइंट नहीं किया आज सब एकदम करेक्ट आंसर के साथ आ गए हैं पहली बार में जी हाँ सो आई हैव गॉट आंसर्स फ्रॉम योगिनी विजय हामिद एंड इमरान आजाद अब्रार संदू रिशिन ऑल दीज पीपल हैव आंसर्ड एंड सबने सही जवाब दिया है और जवाब हम सुनेंगे इस क्यूटी की आवाज में
1: मैं हूँ आरोही और जब हम नेल्स काटते हैं तो उनमें से खून नहीं निकलता क्योंकि उसको हिंदी में बोलते हैं नाखून
0: एकदम सही जवाब आरोही थैंक यू सो मच मेरी जान शी सो क्यूट ना उनकी आवाज से पता चल रहा है वेरी क्यूट थैंक यू सो मच डार्लिंग फॉर पार्टिसिपेटिंग इन माय लेमनेस दिन बना दिया मेरा एक्चुअली वीकेंड बना दिया मेरा ऑन दैट नोट सेंडिंग वेरी वेरी कूल सॉन्ग ऑफ द आवर फॉर यू स्टे ट्यून एंड जियो विद अस मेरी जान कूल रेडियो ऑलिव पर आने वाला गाना कूल सॉन्ग ऑफ द आवर
2: क्या बात है सर क्या बात ये बात है कूल सॉन्ग

0: listening to Radio Olive 106.3 FM. दोहा बैंक और लुलु लाए हैं शॉपिंग का एक रिवॉर्डिंग एक्सपीरियंस।
1: अब अप्लाई कीजिए दोहा बैंक लुलु मास्टर कार्ड प्लैटिनम क्रेडिट कार्ड के लिए और पाइए कतरी रियाल 500 लुलु शॉपिंग वाउचर।
0: लुलु स्टोर्स पर हर स्पेंड के साथ मिल सकता है अप टू 5% सेविंग्स लुलु पॉइंट्स के फॉर्म में।
1: प्लस एंजॉय कीजिए एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस, माय बुक ऑफर्स, डाइनिंग डील्स और लाइफस्टाइल प्रिविलेजेस। बस कार्ड एक्टिवेट कीजिए लुलु पर मिनिमम कतरी रियाल 1 स्पेंड कीजिए और रिवॉर्ड्स का मजा लीजिए।
0: ऑफर वैलिड टिल 30th June 2026। दोहा बैंक लुलु मास्टरकार्ड प्लैटिनम शॉपिंग नाउ मोर रिवॉर्डिंग। टीएनसी अप्लाई।
2: शैकमैन की पावर पैक्ड रेंज, हेवी ट्रक्स, टिपर्स, ट्रेलर्स और बूम ट्रक्स, दमदार परफॉर्मेंस और भरोसा सिर्फ कार्मिल के साथ। विजिट कार्मिल ग्रुप नाउ।
3: ऑलिव लगा और हो जा रिचार्ज। ऑलिव रिचार्ज।
4: ऑलिव रिचार्ज। रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम पर जियो बिंदास।
3: ऑलिव रिचार्ज।
5: This hour is brought to you by
6: Malabar Gold and Diamonds, the responsible jeweler. Malabar Gold and Diamonds की हर jewellery piece ethically sourced होती है और आती है Malabar Promise के साथ, जहाँ मिलती है complete transparency और भरोसा.
7: In association with
8: Doha Bank,
1: make shopping more rewarding. Get a 500 Qatri Riyal Lulu voucher with your new Doha Bank Lulu Mastercard Platinum Credit Card. Just spend 1 Qatri Riyal to unlock up to 5% rewards. Apply before June 30th. TNC apply.
9: Hit it!

You're listening to Radio 106.3 FM, Shankar Mahadevan ki awaaz mein. Kal Ho Nao movie se Pretty Woman suna aapne. Acha, main jab ye gana aaya tha, tab Pretty Woman nahi pata tha ki iska title hai, theek hai? Na maine socha ki wo Pretty Woman bol raha hoga. Main sunti thi Kuriguma. I don't know why. I just made sense of it in my head and I was like, हाँ वो तो कुड़ीगुमा ही गा रहा है. एंड ऐसे कई सारे गाने हैं ना जिनका कुछ ऐसे एक दो वर्ड्स इंग्लिश में होते या फिर सेंटेंसेस इंग्लिश में होते थे तो वो समझ में नहीं आते थे प्रॉपरली. एंड हम अपने मन से कुछ भी बना लेते थे जो फिट हो रहा है उस रिदम में, वो लिरिक्स है इसके. आई यूज टू डू दैट अलॉट. यस, गिल्टी एज चार्ज्ड. वेल, यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात करनी है मैंने आपसे. प्रिटी वुमेन की बात हुई है तो प्रिटी वुमेन को हैप्पी वुमेन बनाने के लिए एक बहुत बढ़िया ऑफर लेकर आया है मालाबार गोल्डन डायमंड्स आपके लिए. जी हाँ, सो इस हॉलीडे सीजन में आप अपने प्रिटी वुमेन को सरप्राइज कर सकते हैं विद अ गिफ्ट. प्रिटी वुमेन और एनी यू नो प्रिटी ह्यूमन बीइंग इन योर लाइफ यू वांट टू सरप्राइज विद दैट गिफ्ट, आप मालाबार गोल्डन डायमंड्स जाइए. वहां पर जो गोल्डन समर ऑफर चल रहा है जिसमें डायमंड या फिर प्रेशियस जेम ज्वेलरी आप अगर वहां से खरीदते हैं तो आपको मिलेगा फ्री कैश वाउचर. यस, अलॉन्ग विद दैट जो भी आपका पुराना गोल्ड रखा हुआ है एंड यू वॉन्टेड टू एक्सचेंज इट पर डर था कि यू नो लॉस हो जाएगा, तो अब वो डर नहीं है बाबू, क्योंकि मालाबार गोल्डन डायमंड्स पर आप वो एक्सचेंज करवा सकते हैं बिना किसी लॉस के. तो बहुत ही कमाल की अपॉर्चुनिटी है, फटाफट से मौके पे चौका मार दो मेरी जान. पहुंच जाओ मालाबार गोल्डन डायमंड्स और चेकआउट करो उनका प्रेशियस ज्वेलरी कलेक्शन. और सुनते रहो रेडियो 106.3 FM. जियो बिंदास मेरी जान.

0: सोचो अगर सेविंग से आप बन जाओ मिलियनेयर, कमर्शियल बैंक के सेव एंड विन कैंपेन में भाग लीजिए।
1: हर 10,000 कतरी रियाल सेविंग ग्रोथ पे मिलेगा एक कूपन, या सिर्फ 50% सैलरी सेव करो एंड एंटर द ड्रॉ।
0: न्यू कस्टमर हो तो अकाउंट खोलो और फर्स्ट सैलरी ट्रांसफर पे गारंटीड चांस टू विन,
1: और 9 महीने की कंसिस्टेंट सैलरी ट्रांसफर के साथ मेगा ड्रॉ में एंट्री पक्की।
0: तो फिर सोचना क्या, अगले मिलियनेयर आप हो सकते हो। आज ही शुरू करो सेविंग्स, कमर्शियल बैंक, सेव एंड विन।
2: इस खेल में प्लेयर प्लेयर नहीं वॉरियर कहलाते हैं। यहां हर गोल पे एड्रेनलिन रश हाई होता है। यहां हर चोट एक मेडल है। हारना मना है और डरना गुनाह है। यहां सेलिब्रेशन के लिए ढोल नहीं, दिलों की धड़कन शोर करती है। और ऑडियंस चीयर नहीं, रोर करती है। बिकॉज इट्स नॉट जस्ट अ गेम, इट्स एन इमोशन।

बच्चों और दिल की यही प्रॉब्लम है, जो काम करने से मना करोगे वो तो वो डेफिनेटली करेंगे ही करेंगे। You're listening to Radio 106.3 FM, तनिषा के साथ ऑल ओवर रिचार्ज चल रहा है यहाँ पर। और भाई वीकेंड आ गया है और मेरे हो गया है जाने का वक्त। सिमरन आती होगी कुछ ही देर में एकदम वीकेंड रेडी करने के लिए आपको। थोड़ा सा पंप अप तो मैंने कर दिया है, बचा खुचा सब वो कर ही देंगी, बट आपने अपना ढेर सारा ख्याल रखना है मेरी जान। टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, योर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अपना वीकेंड एकदम बढ़िया तरीके से इंजॉय करना है, कोई काम का स्ट्रेस नहीं लेना है, वो हम अगले हफ्ते लेंगे, ठीक है? जब आएगा तब देखा जाएगा यार। लिव इन द प्रेजेंट, फ्यूचर की सोच सोच के प्रेजेंट की बैंड बजा दी है, ऐसे नहीं करना है। और अपने लिए वक्त जरूर निकाल लेना, थोड़ा सा टाइम निकाल लो, खुद के साथ बैठो, इंट्रोस्पेक्ट करो, रेट्रोस्पेक्ट करो, जरूरी होता है, रिफ्लेक्शन जरूरी होते हैं। सो डू दैट और बस इंजॉय करो यार, ठीक रहो, चिल करो और जियो बिंदास मेरी जान।

लाइफ 24/7 चलती है तो डेंटल केयर सिर्फ ऑफिस आवर्स में क्यों मिले? नसीम सर्जिकल एंड मेडिकल सेंटर सी रिंग रोड का डेंटल डिपार्टमेंट अब है 24/7 ओपन। रूटीन केयर, ट्रीटमेंट या डेंटल इमरजेंसी, एक्सपर्ट डेंटिस्ट और एडवांस फैसिलिटीज के साथ केयर हर वक्त अवेलेबल है। कॉल 4411133। ऑल्सो विजिट आवर डेंटल सेंटर्स इन अजीजिया और मुंतजा। नसीम सर्जिकल एंड मेडिकल सेंटर, हेल्दी स्माइल्स एनी टाइम।

भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त कतर की नंबर वन आरजे सिमरन के साथ जबरदस्त इवनिंग वो शाम 5 से 9 ओनली ऑन 106.3 रेडियो ऑलिव जियो।

कर्जा और सब कुछ राइम कर दिया है। और मैंने आई होप आपको सब समझ लग गया है। और बताओ क्या हाल चाल है पूरा दिन। अगर आपको नहीं समझ में लगा कि क्या चल रहा है यार मेरी लाइफ में आज पूरे दिन में हो क्या रहा है, टेंशन मत लो यार, चार घंटे अपने होने वाले, चिल करो। आपको मैं टेंशन दे दी, आप मुझे टेंशन दो, अपने को दुनिया से क्या लेना देना यार। अपने दिन के बारे में बताओ हैप्पी वीकेंड बोलने के लिए एंड गुड इवनिंग वाले मैसेजेस भेजने के लिए नंबर एक ही है 3311063 पर। ओमेगा पाजी बच गए सिग्नल, प्यार का सिग्नल मिल रहा है आपको इस गाने के साथ। भागम भाग फिल्म से रेमो फर्नांडिस की आवाज, आई लव दिस ट्रैक। इस गाने की जो वाइब है एकदम ऑसम है, सुन के लगेगा आपको। सिमरन थैंक यू यार, और मैं दिली दिल में बोल दूंगी यो वेलकम यार।

0: सुनते हैं नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM. कमर्शियल बैंक प्रेजेंट्स सीबी 2026 मिलियन रियाल्स ड्रीम.
1: अब सिर्फ सेविंग्स नहीं, सपने ग्रो होंगे. जीतिए पूरे 5 मिलियन रियाल्स कैश प्राइजेस.
0: जीतने के चार रास्ते. पहला, अपना अकाउंट बैलेंस बढ़ाइए. हर 10,000 रियाल्स ग्रोथ पर पाइए एक कूपन.
1: दूसरा, अगर सैलरी 4,000 प्लस है या 50% सेव किया है तो आप एलिजिबल है.
0: तीसरा, नए कस्टमर्स को पहली सैलरी या 10,000 फंडिंग पर गारंटीड कूपन. और चौथा, 9 महीने रेगुलर सैलरी पर पाइए एक एक्स्ट्रा कूपन और मेगा ड्रॉ टिकट.
2: शैकमैन की पावर पैक्ड रेंज, हेवी ट्रक्स, टिपर्स, ट्रेलर्स और बूम ट्रक्स, दमदार परफॉर्मेंस और भरोसा सिर्फ कार्मिल के साथ. विजिट कार्मिल ग्रुप नाउ.
3: इस खेल में प्लेयर प्लेयर नहीं, वॉरियर कहलाते हैं. यहाँ हर गोल पे एड्रेनलिन रश हाई होता है. यहाँ हर चोट एक मेडल है. हारना मना है और डरना गुनाह है. यहाँ सेलिब्रेशन के लिए ढोल नहीं, दिलों की धड़कन शोर करती है. और ऑडियंस चीयर नहीं, रोर करती है. बिकॉज इट्स नॉट जस्ट अ गेम, इट्स एन इमोशन.
4: It's not just a game, it's an emotion. It's an emotion.
3: FIFA ki har detail ke liye sunye Radio Olive.
5: In association with,
3: download the City Exchange mobile app now to send money quickly at the best exchange rates.
6: Also, Palm Swiss Gold Bars are now available at the best price at City Exchange,
3: your trusted remittance partner.
7: Main Anil Kapoor. Radio Olive,
3: you're with us. Olive Suno Radio Network, Qatar's number one Asian Radio Network.
8: Radio Olive, I'm number one.
9: इसके स्वैग पे मुंडे जाते हैं दिल हार के. लड़की को पसंद है कड़क चाय मलाई मार के. तो भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त. कतर की नंबर वन आरजे,
10: आरजे सिमरन के साथ.
11: जबरदस्त इवनिंग मेक यू ड्राइव गोल्डन विद.
12: Biggest jewelry festival is now happening at Joyalukkas. Joyalukkas brings you a golden chance to save 40% off on making charges for gold and diamond jewelry.
13: Lulu, hypermarkets, supermarkets and department stores, where the world comes to shop.

0: दे यार, सो रूड। तुझको मिर्ची लगी तो मैं क्या करूं, मैं हिचकियां ले लेके मर जाऊं यार। मैं जरा भी स्पाइसी नहीं खा सकती, जरा से मैंने स्पाइसी खाया मेरी हिचकी चालू जो है वो एकदम से हो जाती है और लोगों को लगता है इसको पानी तो, पर मेरा ऐसा हो रहता है कि नहीं, मेरे को पता है यार मेरी आदत है, इसके यही ड्रामे रहते हैं, हल्का सा स्पाइसी खाया और हिचकी चालू है। 5:22:16 स्टूडियो घड़ी पे हो चुकी है, सिमरन कौर आपके साथ है और आप लोगों का प्यार साथ है यार।
1: हैप्पी वीकेंड सिमरन जी, आपका आवाज सुन के बहुत अच्छा लगता है, आपका गाना भी आज जबरदस्त होएगा। हैप्पी वीकेंड वंस अगेन, हैव ऑसम शो, टेक केयर। Good evening, Jio Bindas.

0: बस सुनते रहना मेरे को। एंड एक चीज क्या आपने सुनी है, देखो इंस्टेंट के बारे में अभी हम सीख ही रहे थे सब लोग ऐसे फोटो खींच के, अब सबकी एक एक बार फोटो आने लगी है। पहले जब नया नया इंस्टेंट आया था इंस्टाग्राम का तो 10-10 फोटो सेम ही डल रही थी, क्योंकि उनको पता ही नहीं था कि उनकी फोटो जो है क्लिक करने से ही अपलोड हो रही है। अब देखो वही स्नैपचैट वाला सीन स्टार्ट हो गया। अभी अगर आप चेक करेंगे तो इंस्टेंट पे अब आप वीडियो भी बना सकते हैं। सो या ट्राई करो। सिमरन गौर आपके साथ, जियो बिंदास।
1: अब सुनिए ऑलिव का जबरदस्त है।

0: सुन रहे हैं कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM। दोहा बैंक और लुलु लाए हैं शॉपिंग का एक रिवॉर्डिंग एक्सपीरियंस।
1: अब अप्लाई कीजिए दोहा बैंक लुलु मास्टर कार्ड प्लैटिनम क्रेडिट कार्ड के लिए और पाइए कतरी रियाल 500 लुलु शॉपिंग वाउचर।
0: लुलु स्टोर्स पर हर स्पेंड के साथ मिल सकता है अप टू 5% सेविंग्स लुलु पॉइंट्स के फॉर्म में।
1: प्लस इंजॉय कीजिए एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस, माई बुक ऑफर्स, डाइनिंग डील्स और लाइफस्टाइल प्रिविलेजेस। बस कार्ड एक्टिवेट कीजिए लुलु पर मिनिमम कतरी रियाल 1 स्पेंड कीजिए और रिवॉर्ड्स का मजा लीजिए।
0: ऑफर वैलिड टिल 30th June 2026। दोहा बैंक लुलु मास्टरकार्ड प्लैटिनम शॉपिंग नाउ मोर रिवॉर्डिंग। TNC apply।
2: क्या आप एक प्रोफेशनल इलेक्ट्रीशियन या प्लम्बर हैं? तो अब अपनी स्किल्स को प्रूफ करने का वक्त आ गया है। हासिल कीजिए एक ऑफिशियल कारामा सर्टिफिकेशन, पाइए अपना लाइसेंस जो आपके लिए कतर में नए जॉब अपॉर्चुनिटीज के दरवाजे खोल देगा। एक ऐसे सर्टिफिकेट के साथ जो आपकी ब्रिलियंस और क्वालिटी स्टैंडर्ड्स का कमिटमेंट शो करता है। इस मौके को हाथ से जाने मत दीजिए, अभी रजिस्टर कीजिए और बन जाइए अपने फील्ड के टॉप कॉन्ट्रैक्टर्स और टेक्नीशियंस में से एक। बस विजिट कीजिए कारामा की वेबसाइट www.km.qa और खुद को रजिस्टर कीजिए। सर्टिफाइड बनिए, सर्टिफाइड के साथ बनिए।
3: Grow your brand across Qatar's key audiences. Connect with Hindi listeners on Radio Olive 106.3 FM, Malayalam audiences on Radio Suno 91.7 FM, and Arabic listeners on Tetkar 107.4 FM. On-air visibility supported by performance-driven digital marketing campaigns. Simple, effective, integrated. Call 3009-1063 or 3082-1063.
4: Iske swag pe munde jaate hain dil haar ke. लड़की को पसंद है कड़क चाय मलाई मार के। तो भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त कतर की नंबर वन आरजे
5: सिमरन के साथ।
6: जबरदस्त इवनिंग मेक यू ड्राइव गोल्डन विद
7: बिगेस्ट ज्वेलरी फेस्टिवल इज नाउ हैपनिंग एट जोयालिकास। जोयालिकास ब्रिंग्स यू अ गोल्डन चांस टू सेव 40% ऑफ ऑन मेकिंग चार्जेस फॉर गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी।
8: लुलु हाइपरमार्केट्स, सुपरमार्केट्स एंड डिपार्टमेंट स्टोर्स वेयर द वर्ल्ड कम्स टू शॉप।

कोर्स फीफा वर्ल्ड कप का आज का मैच जो है हम सब के लिए, कतर में रहने वाले सब लोगों के लिए बहुत ज्यादा खास है क्योंकि आज कतर का मैच है। सो हम लोग प्लान बना रहे थे इसे देखने का एंड मैं अपने दोस्त को बोल रही हूँ, मैंने बोला यार आज मैच है, ही इज लाइक नहीं कल मैच है, मैंने बोला आज मैच है, कल मैच है, कहता है रात के 1 बजे, तो मैं को देखेंगे तो आज ना तो मैच तो आज का हुआ, कहता नहीं मैच कल का हुआ, कोई बात नहीं है मैं अपना सर नहीं मारना चाहूंगी, वो गलत है मैं गलत हूं या वो सही है या मैं सही है मुझे फर्क नहीं पड़ता, रात के 1 बजे कनाडा और कतर का मैच जो है वो होने वाला है। अपनी अपनी जगहें जो है वो आप लोग सेट कर लो क्योंकि मैच जरूर देखना है और कतर को जिताना है। देखो वीकेंड भी है, बहाना भी है, जागरेगा, बट अगर आप नहीं जागे तो कौन कौन जो है ये कतर और कनाडा का मैच देखने का प्लान कर रहा है, घर में देख रहे हैं, बाहर देख रहे हैं, 3311063 पर आप मुझे बता सकते हैं। सुनते रहिए रेडियो ऑलिव कर के।

0: इस वेकेशन प्यार से हमारा इंतजार करने वाले अपनों को एक गोल्डन सरप्राइज क्यों ना दे। मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स के गोल्डन समर ऑफर के साथ डायमंड एंड प्रेशियस जेम ज्वेलरी खरीदने पर पाइए फ्री कैश वाउचर्स। अपने पुरानी गोल्ड ज्वेलरी को एक्सचेंज कीजिए विदाउट एनी लॉस। और अब विद द इंपोर्ट ड्यूटी रिविजन इन इंडिया यू कैन नाउ सेव अप टू 15% ऑन गोल्ड प्राइसेस श्योर इन जीसीसी। Visit Malabar Gold and Diamonds today.
1: Commercial Bank presents CB 2026 Million Riyals Dream.
2: Ab sirf savings nahi, sapne grow honge. Jeetiye pure 5 million riyals cash prizes.
1: Jeetne ke 4 raste. Pehla, apna account balance badhaiye. Har 10,000 riyals growth par paiye ek coupon.
2: Dusra, agar salary 4,000 plus hai ya 50% save kiya hai, to aap eligible hai.
1: Teesra, naye customers ko pehli salary ya 10,000 funding par guaranteed coupon. Aur chautha, 9 महीने रेगुलर सैलरी पर पाइए एक एक्स्ट्रा कूपन और मेगा ड्रॉ टिकट।
3: इसके स्वैग पे मुंडे जाते हैं दिल हार के। लड़की को पसंद है कड़क चाय मलाई मार के। तो भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त। कतर की नंबर वन आरजे
4: आरजे सिमरन के साथ।
5: Zabardast evening. Make you drive golden with.
6: Biggest jewelry festival is now happening at Joyalukkas. Joyalukkas brings you a golden chance to save 40% off on making charges for gold and diamond jewelry.
7: Lulu, hypermarkets, supermarkets and department stores where the world comes to shop.

0: जी लो थोड़ा थोड़ा मर लो,
1: थोड़ा सा जी लो थोड़ा थोड़ा मर लो।
2: जब आप किसी को एंटरटेन कर रहे होते हो और आपको पता लगे कि वो एंटरटेनमेंट फुल ऑन चल रहा है, सामने वाला मजा ले रहा है, वो एंटरटेन हो रहा है, तो कितना मजा आता है ना। इस चीज का प्रूफ है ये।
3: हाय सिमरन,
2: हेलो।
3: बड़ा मजा आ रहा है, बहुत बढ़िया गाने चल रहे हैं और मुझे भी इतना मजा आ रहा है। मैं आज वैसे भी छोले भटूरे बना रही हूँ,
2: अरे
3: वो भी बिना मैदा के, और डांस करते करते इतना बढ़िया काम चल रहा है मेरा कि बस मजा आ रहा है। आ जाओ तुम्हें भी खिला दूंगी।
2: अरे रुचिका जी क्या बात कर दी, हेल्दी वाले छोले भटूरे बना रहे हो, मतलब ठीक है तलेंगे तो सही, पर ठीक है मैदा नहीं है उसमें तो हेल्दी हो ना। और थैंक यू सो मच यार, बड़ा बड़ा अच्छा लगता है जब आप इस तरह के मैसेजेस करते हो, इसलिए मैं हमेशा कहती हूँ यार वॉइस नोट्स जो है और कॉल्स जो है वो शेयर करते रहा करो, जैसे आपका दिन बनता है ना इस तरह से म्यूजिक सुन के बोलते हो सिमरन तुम्हारी बातें सुन के, उसी तरह से आप लोगों की आवाज सुन के भी मेरा दिन जो है वो बन जाता है यार। इतना है कि आपसे प्यार करते हैं, समझते हो कि नहीं समझ रहे हो। सुनते रहो रेडियो ऑल इंडिया, कहते रहो जी अविनाश, एंड खुश रहो यार, एंड हैप्पी वीकेंड। ऑफ कोर्स वीकेंड वाला माहौल जो है वो सेट है, हम लोगों ने भी एक वीकेंड वाला माहौल जो था वो सेट किया था। गाना तो हमको आता नहीं है लेकिन आज गाने वाला माहौल जो है वो जरूर बनने वाला है। 7 से 8 के बीच में एक स्पेशल वाले गेस्ट जो है हमारे साथ होने वाले हैं, सो या तैयारी कर लीजिए।

0: सुनते हैं नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM।
1: Your daily surprise is here. अपना हाला रिचार्ज करो और पाओ फ्री डेटा या मिनट्स का सरप्राइज. क्लेम करो ओरिडू ऐप पर. Experience more with ओरिडू.
0: दोहा बैंक और लुलू लाए है शॉपिंग का एक रिवॉर्डिंग एक्सपीरियंस.
2: अब अप्लाई कीजिए दोहा बैंक लुलू मास्टर कार्ड प्लेटिनम क्रेडिट कार्ड के लिए और पाइए कतरी रियाल 500 लुलू शॉपिंग वाउचर.
0: लुलू स्टोर्स पर हर स्पेंड के साथ मिल सकता है अप टू 5% सेविंग्स लुलू पॉइंट्स के फॉर्म में.
2: प्लस एंजॉय कीजिए एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस, माई बुक ऑफर्स, डाइनिंग डील्स और लाइफ स्टाइल प्रिविलेजेस. बस कार्ड एक्टिवेट कीजिए लुलू पर मिनिमम कतरी रियाल 1 स्पेंड कीजिए और रिवॉर्ड्स का मजा लीजिए.
0: ऑफर वैलिड टिल 30 June 2026. दोहा बैंक लुलू मास्टर कार्ड प्लैटिनम शॉपिंग नाउ मोर रिवॉर्डिंग TNC अप्लाई. आप सुन रहे हैं कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM.

0: मौसम क्या हमारा हुआ
1: मौसम
0: मौसम के हाल में आपको बता देती हूँ 33 डिग्री सेल्सियस अभी तक का टेम्परेचर एंड फील्स लाइक 33 डिग्री सेल्सियस है, लेकिन यहाँ पर एक ट्विस्ट है। ट्विस्ट ये है कि ह्यूमिडिटी आज 50% है, विंड जो है 9 किलोमीटर पर आर की रफ्तार से चल रही है एंड मिनिमम टेम्परेचर 27 होने वाला है। होपफुली जो है वो बाहर बैठ के मजा आए, क्योंकि आज जो है वो मैच भी होने वाला है कतर का, और माहौल तभी बनता है जब वेदर में थोड़ा सा मजा हो, क्योंकि वैसे तो हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन हैं कि यू नो बाहर बैठ के जो है हम मैचेस देख सकते हैं, क्योंकि आउटडोर एसी भी हमको मिल जाता है। बट यस, मौसम के हाल कुछ ऐसे ही है। सुनते रहिए रेडियो ऑलिव गर्गे, दे रही है जीवनदास।

0: आप सुन रहे हैं रेडियो ऑलिव 106.3 FM जियो बिंदास। दोहा बैंक और लुलु लाए हैं शॉपिंग का एक रिवॉर्डिंग एक्सपीरियंस।
1: अब अप्लाई कीजिए दोहा बैंक लुलु मास्टर कार्ड प्लैटिनम क्रेडिट कार्ड के लिए और पाइए कतरी रियाल 500 लुलु शॉपिंग वाउचर।
0: लुलु स्टोर्स पर हर स्पेंड के साथ मिल सकता है अप टू 5% सेविंग्स लुलु पॉइंट्स के फॉर्म में।
1: प्लस इंजॉय कीजिए एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस, माय बुक ऑफर्स, डाइनिंग डील्स और लाइफस्टाइल प्रिविलेजेस। बस कार्ड एक्टिवेट कीजिए लुलु पर मिनिमम कतरी रियाल 1 स्पेंड कीजिए और रिवॉर्ड्स का मजा लीजिए।
0: ऑफर वैलिड टिल 30th June 2026। दोहा बैंक लुलु मास्टरकार्ड प्लैटिनम शॉपिंग नाउ मोर रिवॉर्डिंग। टीएनसी अप्लाई।
2: शैकमैन की पावर पैक्ड रेंज, हेवी ट्रक्स, टिपर्स, ट्रेलर्स और बूम ट्रक्स, दमदार परफॉर्मेंस और भरोसा सिर्फ कारमिल के साथ। विजिट कारमिल ग्रुप नाउ।
3: फ्रेश फिश ऑन द ग्रिल, स्लो कुक्ड मंडी, परफेक्टली स्पाइस्ड प्रॉन्स एंड दैट स्पेशल चटनी। नो नॉइस, नो ड्रामा, जस्ट सी फूड डन राइट। बीबीक्यू फिश, क्रैब्स, प्रॉन्स क्राफ्टेड विद पेशेंस, सर्व विद प्राइड। दानादल पहाड़, द अल्टीमेट कतरी एडवेंचर। सुक वाकिफ अलखोल।
4: Hi Radio Olive, Radio Olive 106.3 listeners. This is Ranveer Singh. Radio. Stay tuned.
5: Olive Suno Radio Network, Qatar's number one Asian radio network.
6: Radio Olive, I'm in number one.
7: इसके स्वैग पे मुंडे जाते हैं दिल हार के। लड़की को पसंद है कड़क चाय, मलाई मार के। भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त। कतर की नंबर वन आरजे,
8: आरजे सिमरन के साथ।
9: जबरदस्त इवनिंग मेक यू ड्राइव गोल्डन विद।
10: Biggest jewelry festival is now happening at Joyalukkas. Joyalukkas brings you a golden chance to save 40% off on making charges for gold and diamond jewelry.
11: Lulu, hypermarkets, supermarkets and department stores, where the world comes to shop.

0: ਸੋਹਣਿਓ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਹਾਲ ਚਾਲ? ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਸਿਮਰਨ ਕੌਰ ਹੈ ਆਪਕੇ ਸਾਥ। ਐਂਡ ਅਬ ਇੱਕ ਰਿਐਲਿਟੀ ਚੈੱਕ
1: ਰੇਡੀਓ ਓਲਿਵ ਪਰ ਆਰਜੇ ਸਿਮਰਨ ਕੇ ਸਾਥ।
0: आपकी अच्छे वाली एडल्टिंग पता कब होती है? ऐसा नहीं है कि आपकी हाइट बढ़ गई, आपकी एज बढ़ गई और आप बड़े हो गए हो। और बड़ा होना एक्चुअली लाइफ में पता किसको कहते हैं? ग्रोन अप एक बंदा जो है, इंसान जो है वो कौन होता है? अनटिल अनलेस देखो, आप कभी भी ग्रोन अप जो है वो नहीं कहलाओगे। जब आपकी एक आदत होती है, बहुत सारे लोगों की कम्युनिकेशन से बहुत ज़्यादा डरते हैं कि हम कम्युनिकेट नहीं करेंगे, बात करने से ही होता है कि छोड़ो यार, मतलब वो उनको लगता है, उनको पता है कि अगर कम्युनिकेशन होगी तो गलती आपकी निकलेगी। और क्योंकि गलती जब निकल गई तो उनको अपोलोजाइज करने की आदत नहीं है, सॉरी बोलने की आदत नहीं है, और उनको आदत है दूसरों को ब्लेम करने की। तो जिस दिन आप में ये आदतें आ गई कि ओके मामला बिगड़ा, मसला हुआ, आप कम्युनिकेट करेंगे, आप अपोलोजाइज करेंगे, आप एक्सेप्ट करेंगे विदाउट ब्लेमिंग समवन कि हाँ यार मेरी गलती थी, तब तक आप आपकी एडल्टिंग जो है वो नहीं हुई है। हाइट बढ़ जाने से, एज बढ़ जाने से नहीं होता है दोस्त, थोड़ा तो आपको ये चीज़ें भी सीखनी पड़ेंगी अगर आपको इंसान की रिश्तों की केयर है। तो सिमरन कौर आपके साथ, जी अविनाश
2: रेडियो ऑलिव पर आने वाला गाना कूल सॉन्ग ऑफ द आवर।
3: क्या बात है सर, क्या पर ये बात है,
4: कूल सॉन्ग। cool।

0: सोचो अगर सेविंग से आप बन जाओ मिलियनेयर, कमर्शियल बैंक के सेव एंड विन कैंपेन में भाग लीजिए।
1: हर 10,000 कतरी रियाल सेविंग ग्रोथ पे मिलेगा एक कूपन, या सिर्फ 50% सैलरी सेव करो एंड एंटर द ड्रॉ।
0: न्यू कस्टमर हो तो अकाउंट खोलो और फर्स्ट सैलरी ट्रांसफर पे गारंटीड चांस टू विन,
1: और 9 महीने की कंसिस्टेंट सैलरी ट्रांसफर के साथ मेगा ड्रॉ में एंट्री पक्की।
0: तो फिर सोचना क्या, अगले मिलियनेयर आप हो सकते हो। आज ही शुरू करो सेविंग्स, कमर्शियल बैंक, सेव एंड विन।
2: योर डेली सरप्राइज इज हियर, अपना हाला रिचार्ज करो और पाओ फ्री डेटा या मिनट्स का सरप्राइज। क्लेम करो ओरिडू ऐप पर, एक्सपीरियंस मोर विद ओरिडू।
3: अ रिंग फॉर द न्यूली मैरिड, क्यूट लिटिल बैंगल फॉर द न्यूबॉर्न।
4: अरे यार, हॉलिडे सीजन इज हियर और फिर वही गिफ्टिंग का टेंशन। फिर मालबार गोल्ड एंड डायमंड्स गोल्डन समर के साथ पाइए फ्री कैश वाउचर्स ऑन डायमंड एंड प्रेशियस जेम ज्वेलरी परचेजेस। प्लस एक्सचेंज योर गोल्ड ज्वेलरी एंड अपग्रेड टू द लेटेस्ट डिजाइंस विदाउट एनी लॉस। और सुनो, देयर इज मोर। विद द इंपोर्ट ड्यूटी रिविजन इन इंडिया, यू कैन नाउ सेव अप टू 15% ऑन गोल्ड प्राइसेस हियर इन द GCC। विजिट मालबार गोल्ड एंड डायमंड्स टुडे।
5: इसके स्वैग पे मुंडे जाते हैं दिल हार के, लड़की को पसंद है कड़क चाय मलाई मार के। तो भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त, कतर की नंबर वन आरजे
6: सिमरन के साथ।
7: Zabardast evening, make you drive golden with.
8: Biggest jewelry festival is now happening at Joyalukkas. Joyalukkas brings you a golden chance to save 40% off on making charges for gold and diamond jewelry.
9: Lulu, hypermarkets, supermarkets and department stores, where the world comes to shop.
10: Yeah.

0: का मसाला। आप सुन रहे हैं रेडियो ओलिव 106.3 FM जियो बिंदास।
1: Your daily surprise is here. अपना हाला रिचार्ज करो और पाओ फ्री डेटा या मिनट्स का सरप्राइज। क्लेम करो ओरिडू ऐप पर। एक्सपीरियंस मोर विद ओरिडू।
2: लाइफ 24/7 चलती है तो डेंटल केयर सिर्फ ऑफिस आवर्स में क्यों मिले? नसीम सर्जिकल एंड मेडिकल सेंटर सी रिंग रोड का डेंटल डिपार्टमेंट अब है 24/7 ओपन। रूटीन केयर, ट्रीटमेंट या डेंटल इमरजेंसी, एक्सपर्ट डेंटिस्ट और एडवांस फैसिलिटीज के साथ केयर हर वक्त अवेलेबल है। कॉल 4411133। ऑल्सो विजिट आवर डेंटल सेंटर्स इन अजीजिया और मुंतजा। नसीम सर्जिकल एंड मेडिकल सेंटर, हेल्दी स्माइल्स एनी टाइम।
0: दोहा बैंक और लुलु लाए हैं शॉपिंग का एक रिवॉर्डिंग एक्सपीरियंस।
3: अब अप्लाई कीजिए दोहा बैंक लुलु मास्टर कार्ड प्लैटिनम क्रेडिट कार्ड के लिए और पाइए कतरी रियाल 500 लुलु शॉपिंग वाउचर।
0: लुलु स्टोर्स पर हर स्पेंड के साथ मिल सकता है अप टू 5% सेविंग्स लुलु पॉइंट्स के फॉर्म में।
3: प्लस इंजॉय कीजिए एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस, माई बुक ऑफर्स, डाइनिंग डील्स और लाइफ स्टाइल प्रिविलेजेस। बस कार्ड एक्टिवेट कीजिए लुलु पर, मिनिमम कतरी रियाल 1 स्पेंड कीजिए और रिवॉर्ड्स का मजा लीजिए।
0: ऑफर वैलिड टिल 30th June 2026। दोहा बैंक Lulu Mastercard Platinum. Shopping now more rewarding. TNC apply.
4: Grow your brand across Qatar's key audiences. Connect with Hindi listeners on Radio Olive 106.3 FM. Malayalam audiences on Radio Suno 91.7 FM. And Arabic listeners on Tetkar 107.4 FM. On-air visibility supported by performance-driven digital marketing campaigns. Simple, effective, integrated. Call 3009-1063 or 3082-1063.
5: इसके स्वैग पे मुंडे जाते हैं दिल हार के। लड़की को पसंद है कड़क चाय मलाई मार के। तो भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त। कतर की नंबर वन आरजे
6: सिमरन के साथ।
7: Zabardast evening, make you drive golden with.
8: Biggest jewelry festival is now happening at Joyalukkas. Joyalukkas brings you a golden chance to save 40% off on making charges for gold and diamond jewelry.
9: Lulu, hypermarkets, supermarkets and department stores, where the world comes to shop.

0: एवरीवन, मैं हूं अरमान मलिक.
1: अरमान मलिक
2: नंबर
0: 106.3 एफएम रेडियो ओलिव जियो बिंदास.
3: ओलिव सुनो रेडियो नेटवर्क कतर्स नंबर 1 एशियन रेडियो नेटवर्क.

0: हांजी
1: नशे से
0: और भी नशा चढ़ेगा अभी तो। आपको बोला था ना कि आज हम मेरे शो पे एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट होने वाले हैं और लाइव जैमिंग सेशन होने वाला। अगर आपने स्टोरी देखी होगी तो आपको पता लगी होगा इंस्टाग्राम की। सो थोड़ा सा इंतजार, बस अगले घंटे 7 से लेके 8 बजे के बीच में हम पूरा माहौल जो है वो म्यूजिकल बनाने वाले हैं। बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है। सो या देखिए, गाने तो आप सुन रहे हैं यहाँ पे, आज गाने गाए जाएंगे, गिटार बजाया जाएगा, तो इंतजार करो, सुनते रहो रेडियो ऑलिव और कहते रहो जियो बिंदास।
2: लचके जब कमरिया हसारा जिला ही।

0: सुन रहे हैं कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM। दोहा बैंक और लुलू लाए हैं शॉपिंग का एक रिवॉर्डिंग एक्सपीरियंस।
1: अब अप्लाई कीजिए दोहा बैंक लुलू मास्टर कार्ड प्लैटिनम क्रेडिट कार्ड के लिए और पाइए कतरी रियाल 500 लुलू शॉपिंग वाउचर।
0: लुलू स्टोर्स पर हर स्पेंड के साथ मिल सकता है अप टू 5% सेविंग्स लुलू पॉइंट्स के फॉर्म में।
1: प्लस एंजॉय कीजिए एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस, माई बुक ऑफर्स, डाइनिंग डील्स और लाइफस्टाइल प्रिविलेजेस। बस कार्ड एक्टिवेट कीजिए लुलू पर मिनिमम कतरी रियाल 1 स्पेंड कीजिए और रिवॉर्ड्स का मजा लीजिए।
0: ऑफर वैलिड टिल 30 June 2026। दोहा बैंक लुलू मास्टरकार्ड प्लैटिनम शॉपिंग नाउ मोर रिवॉर्डिंग TNC अप्लाई।
2: इस वेकेशन प्यार से हमारा इंतजार करने वाले अपनों को एक गोल्डन सरप्राइज क्यों ना दे। मलबार गोल्ड एंड डायमंड्स की गोल्डन समर ऑफर के साथ डायमंड एंड प्रेशियस जेम ज्वेलरी खरीदने पर पाइए फ्री कैश वाउचर्स। अपने पुरानी गोल्ड ज्वेलरी को एक्सचेंज कीजिए विदाउट एनी लॉस। और अब विद द इंपोर्ट ड्यूटी रिविजन इन इंडिया यू कैन नाउ सेव अप टू 15% ऑन गोल्ड प्राइसेस हियर इन GCC। विजिट मलबार गोल्ड एंड डायमंड्स टुडे।
0: फुटबॉल बाउंड्रीज नहीं जानता और कतर का कल्चर कोई लिमिट्स नहीं जानता। इस वर्ल्ड कप जब कतरी फैंस अमेरिका पहुंचे तो उन्होंने सिर्फ मैच में पॉइंट्स नहीं जीता बल्कि सबका दिल जीत लिया। अपने ट्रेडिशनल कतरी थोप में फुल प्राइड के साथ उन्होंने अमेरिकन स्टेडियम में कतर के कल्चरल वैल्यूज को शोकेस किया। नो मैटर वेयर द गेम इज, आइडेंटिटी हमेशा साथ रहती है और यही है द हिवारी इनिशिएटिव जिसकी पूरी दुनिया दीवानी है। कल्चर ट्रैवल्स, फुटबॉल कनेक्ट्स एंड हिवारी इज ब्रिंगिंग कतर टू द वर्ल्ड।
3: सोचो अगर सेविंग से आप बन जाओ मिलियनेयर, कमर्शियल बैंक के सेव एंड विन कैंपेन में भाग लीजिए।
4: हर 10,000 कतरी रियाल सेविंग ग्रोथ पे मिलेगा एक कूपन या सिर्फ 50% सैलरी सेव करो एंड एंटर द ड्रॉ।
3: न्यू कस्टमर हो तो अकाउंट खोलो और फर्स्ट सैलरी ट्रांसफर पे गारंटीड चांस टू विन
4: और 9 महीने की कंसिस्टेंट सैलरी ट्रांसफर के साथ मेगा ड्रॉ में एंट्री पक्की।
3: तो फिर सोचना क्या, अगले मिलियनेयर आप हो सकते हो। आज ही शुरू करो सेविंग्स, कमर्शियल बैंक, सेव and win.

0: हां जी मैं क्या जी सुनियो कि दादा की हाल चाल सिमरन कौर आपके साथ हैप्पी वीकेंड। और आज मैं इतना ज्यादा खुश हूँ क्योंकि आज जो है ना म्यूजिकल माहौल जो है वो बहुत ही तगड़े वाला बना हुआ। और आज मैं स्टूडियो में बिल्कुल भी अकेली नहीं हूँ, हमारे बहुत ही स्पेशल म्यूजिकल गेस्ट जो है श्रेयस पाटकर, सिंगर कंपोजर एंड इनका बैंड है कशिश भाई श्रेयस। और आज वो हमारे स्टूडियो में अपना गिटार लेके पूरा सेट करके एकदम तैयार बैठे हैं। वेलकम टू रेडियो ऑलिवन, वेलकम टू दोहा।
1: थैंक यू सो मच, थैंक यू।
0: ओके सो उसके साथ साथ हमारे साथ सुदेव एंड तनीषा भी बैठे हैं क्योंकि जहां पर म्यूजिक की बात होती है हम अपने आप को रोक नहीं पाते हैं। सो सबसे पहले कि मैं आपसे सवाल पूछूं, ये शाम जो है वो बिल्कुल भी रुकना नहीं चाह रही और म्यूजिकल होना चाह रही है, तो थोड़ा सा म्यूजिकल हो जाए।

0: बढ़िया
1: एकदम माहौल जो है वह सेट है, लेकिन लाइफ में ये माहौल आपके अंदर पहले वो म्यूजिकल वाला चल रहा था लेकिन आप कर कुछ अपनी लाइफ में और रहे थे, वो वाली स्टोरी से थोड़ी बताइए ताकि बहुत सारे लोगों को ये स्टोरी आपकी इंस्पायर करने वाली है।
2: जी हाँ, देखिए ना ऐसे होता है ना कि जिस चीज़ से आपको सबसे ज्यादा खुशी मिलती है और तसल्ली मिलती है
1: जी
2: वो आप ताउम्र करना हमेशा उसकी ख्वाहिश रखते हो, तो वैसे ही म्यूजिक के साथ हमारा हुआ। यहाँ पे 2007 में हम दोहा के इस शहर में एयरलाइन ट्रैवल मैनेजमेंट प्रोफेशनल हम थे पहले
1: जी।
2: उसके जरिए हम यहाँ पे आ गए और अपना काम शुरू किया, लेकिन संगीत मौसीकी तो बिल्कुल साथ छोड़ नहीं रही थी। तो हमारे स्पेयर वक्त पे हम रियाज करते थे और जैसे आपको मालूम है उस वक्त इतने ज्यादा रिसोर्सेस नहीं थे दोहा में, तो ऑफिस के बाद तो यहाँ आके रियाज ही करना था और उसी से अच्छा वक्त गुजरता था और याद भी नहीं आती थी हमारे देश की। तो हम ऐसे करते करते हमने देखा कि अच्छी संगीत में अच्छा वक्त जा रहा है, लोगों को सुनना पसंद आ रहा है, तो ऐसे देखा जाए तो म्यूजिक का सिलसिला हमारी जिंदगी में दोहा से शुरू हुआ है। परफॉर्मेंस लाइफ मैंने दोहा से शुरू करी है, तो दैट्स ये जगह मेरे लिए काफी काफी स्पेशल और इमोशनल भी है क्योंकि संगीत के तार इस जगह से

0: लेकिन जैसे होता है ना कि आप कुछ ख्वाहिश आपकी अधूरी रहती है तो आपको बाद में रिग्रेट नहीं होना पड़ता, तो ऐसे थानी मैंने और मैंने सोचा कि एक ही जिंदगी मिलती है आपको, तो क्यों ना आजमाया जाए और संगीत को ही पूरा समर्पित किया जाए।
1: वाओ, कोई बात है, लाइफ में रिस्क जो है वो लेना बहुत ज्यादा जरूरी है, जो आपका मन कहता है। मुझे हमेशा लगता है कि लकी वो इंसान है अपनी लाइफ में जो वो चाहता है वो कर रहा है, और मैं इस चेयर पे बैठ के खुद को भी लकी फील करती हूँ क्योंकि मैं जो चाहती हूँ मैं कर रही हूँ। सो अगर आप अपनी लाइफ में वो करना चाहते हैं जो आप चाहते हैं तो रिस्क ले लीजिए। बाकी की बातें थोड़ी देर में करेंगे। सुनते रहिए रेडियो ऑलिव कोर, कहते रहिए जियो बिंदास।

0: Ottawa's number one radio station. Radio Olive, 106.3 FM. Gio Bindas. दोहा बैंक और लुलु लाए हैं शॉपिंग का एक रिवॉर्डिंग एक्सपीरियंस।
1: अब अप्लाई कीजिए दोहा बैंक लुलु मास्टर कार्ड प्लैटिनम क्रेडिट कार्ड के लिए और पाइए कतरी रियाल 500 लुलु शॉपिंग वाउचर।
0: लुलु स्टोर्स पर हर स्पेंड के साथ मिल सकता है अप टू 5% सेविंग्स लुलु पॉइंट्स के फॉर्म में।
1: प्लस इंजॉय कीजिए एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस, माई बुक ऑफर्स, डाइनिंग डील्स और लाइफस्टाइल प्रिविलेजेस। बस कार्ड एक्टिवेट कीजिए लुलु पर मिनिमम कतरी रियाल एक स्पेंड कीजिए और रिवॉर्ड्स का मजा लीजिए।
0: ऑफर वैलिड टिल 30th June 2026। दोहा बैंक लुलु MasterCard Platinum. Shopping now more rewarding. TNC apply.
2: A ring for the newly married? Cute little bangle for the newborn?
3: Arre yaar, holiday season is here aur phir wahi gifting ka tension. To phir Malabar Gold and Diamonds, Golden Summer ke saath, buy a free cash vouchers on diamond and precious gem jewelry purchases. Plus, exchange your gold jewelry and upgrade to the latest designs without any loss. Aur suno, there's more. With the import duty revision in India, you can now save up to 15% on gold prices here in the GCC. Visit Malabar Gold and Diamonds today.
4: इसके स्वैग पे मुंडे जाते हैं दिल हार के। लड़की को पसंद है कड़क चाय, मलाई मार के। तो भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त। गदर की नंबर वन आरजे
5: सिमरन के साथ
6: जबरदस्त इवनिंग मेक यू ड्राइव गोल्डन विद
7: बिगेस्ट ज्वेलरी फेस्टिवल इज नाउ हैपनिंग एट जोयालिकास। जोयालिकास ब्रिंग्स यू अ गोल्डन चांस टू सेव 40% ऑफ ऑन मेकिंग चार्जेस फॉर गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी।
8: लुलु हाइपरमार्केट्स, सुपरमार्केट्स एंड डिपार्टमेंट स्टोर्स वेयर द वर्ल्ड कम्स टू शॉप।

0: लाइफ में ना मुझे हमेशा जब भी मैं किसी को अच्छा गाते हुए देखती हूँ, अच्छा डांस करते हुए देखती हूँ, उसमें सिमरन कौर तो क्यों नहीं। हमारे साथ अपना गिटार लेके बैठे हुए हैं और हम एक के बाद एक गाना जो है वो बोलते जा रहे हैं कि आप ये वाला गाना बजा दो, क्योंकि जब म्यूजिक वाले लोग जो है ना, सेम इंटरेस्ट वाले लोग जब मिलके बैठते हैं तो फिर यही होता है। दोहा से आपका पुराना नाता है, आप बहुत बार दोहा में जो है वो आ चुके हैं। कोई ऐसी कंट्री है जहां पर आप परफॉर्म करना चाहते हैं और कहां कहां पे आप परफॉर्म कर चुके हैं?
1: सिमरन जी, मेरी खुशकिस्मती रही है कि मैं म्यूजिक के साथ कई जगह घूमता हूँ और फोकलो फेस्टिवल मैंने काफ़ी बार पार्टिसिपेट भी किया है, जिसके जरिए हम इंडियन म्यूजिक को भी प्रेजेंट करते हैं, ना कि ओनली ऑथेंटिक म्यूजिक को, ना कि ओनली सिनेमैटिक म्यूजिक को। तो हाल ही में पिछले साल सबसे पहले हम जाने वाले थे इस जगह पे, जो इंडियन आर्टिस्ट कोई पहला गया रहेगा वो है सार्डिनिया आइलैंड इन इटली। वहाँ पे फोकलो फेस्टिवल में सबसे पहले हमें जाने का मौका मिला। हालांकि फोकलोर में फ्रांस 5 बार परफॉर्म कर चुका हूँ, बेल्जियम, नेदरलैंड्स, पोलैंड, लेकिन इटली में पहली बार जाने का मौका मिला। और उसकी बहुत एक प्यारी सी याद है हमारी कि हमें एक ऐसा गाना था जो सब, क्योंकि वहां पे तो कोई इंडियंस भी आपको सुनने नहीं आता है, वहां के लोकल यूरोपियंस ही आपको सुनने को आते हैं, जिनको तो इंग्लिश की जुबान भी पता नहीं है, उनको बस कल्चर और म्यूजिक के फोनिक्स पता होते हैं और वो उससे कनेक्ट करते हैं। तो हमें ऐसा ही कुछ गाना था जो सबको मिला के हम सबके साथ गा सके। तो हमने बहुत सोचा उसके बारे में और एक हमें मौका मिला था कि उनकी मेयर के सामने हमें परफॉर्म करना था। और अभी तो गिटार मैं आपके साथ लाया हूँ स्टूडियो में, लेकिन ऐसे कल्चरल फेस्टिवल में हमें ऑथेंटिक इंस्ट्रूमेंट ही लेके जाना होता है, कल्चरल इंस्ट्रूमेंट, तो हम हारमोनियम लेके जाते हैं तभी, और हमारे साथ ढोल या ढोल की ऐसी कुछ चीजें होती है। तो हमने उस एक माहौल में एक उनके लिए गाना गाया था जो मैं चाहता हूँ कि आप भी उसके साथ ज्वाइन हो जाओ, क्योंकि वो गाना ही ऐसा है कि आपको वो कोरस पार्ट में सबको ज्वाइन करते हैं।
0: हम तैयार हैं।
1: बिल्कुल बिल्कुल। सो आई विल प्ले सम कोरस लाइंस फॉर यू एंड देन यू कैन फॉलो मी विद द सॉन्ग। ओके,

0: एक्चुअली परफेक्ट है वीकेंड के लिए. वीकेंड के टाइम में जब आप अपना काम वाम निपटा लेते हो तो सबको अपनी अपनी लाइफ की एक ओवर थिंकिंग जो है वो होती है कि यार ये अपना दिल तो है आवारा, ना जाने किस पे आएगा. माहौल हमने बिल्कुल सेट करके रखा हुआ है. और अगर आपको कोई गाना सुनने का मन हो रहा है तो हमारे पास देखो पूरा जुगाड़ है. आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं और बताइए आपको कैसा लग रहा है आज जबरदस्त इवनिंग सुन के इस तरह का जो म्यूजिकल माहौल है. 3311063 पर सुनते रहिए रेडियो ऑलिव कोर, कहते रहिए जियो बिंदास.
1: अब सुनिए ऑलिव का जबरदस्त है. जबरदस्त.

0: 26 million riyals dream.
1: अब सिर्फ सेविंग्स नहीं, सपने ग्रो होंगे. जीतिए पूरे 5 million riyals कैश प्राइजेस.
0: जीतने के चार रास्ते. पहला, अपना अकाउंट बैलेंस बढ़ाइए. हर 10,000 riyals ग्रोथ पर पाइए एक कूपन.
1: दूसरा, अगर सैलरी 4,000 प्लस है या 50% सेव किया है तो आप एलिजिबल है.
0: तीसरा, नए कस्टमर्स को पहली सैलरी या 10,000 फंडिंग पर गारंटीड कूपन. और चौथा, 9 महीने रेगुलर सैलरी पर पाइए एक एक्स्ट्रा कूपन और मेगा ड्रॉ टिकट.
2: Fresh fish on the grill, slow cooked mandi, perfectly spiced prawns, and that special chutney. No noise, no drama. Just seafood done right. BBQ fish, crabs, prawns, crafted with patience. Served with pride. Danadal Bahar, the ultimate Qatari adventure. Souq Waqif, Al Khor.
3: इसके स्वैग पे मुंडे जाते हैं दिल हार के. लड़की को पसंद है कड़क चाय, मलाई मार के. भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त. कतर की नंबर वन आरजे,
4: आरजे सिमरन के साथ.
5: जबरदस्त इवनिंग मेक यू ड्राइव गोल्डन विथ.
6: Biggest jewelry festival is now happening at Joyalukkas. Joyalukkas brings you a golden chance to save 40% off on making charges for gold and diamond jewelry.
7: Lulu, hypermarkets, supermarkets and department stores, where the world comes to shop. Just

0: श्रेयस पाटकर सिंगर भी है, कंपोजर भी, इनका अपना बैंड भी है कशिश बाय श्रेयस। और क्या चाहिए लाइफ में, जो चीज आप चाह रहे हो वो चीज आप कर रहे हो। आपके साथ और जिस काम से आप प्यार करते हैं उसके लिए आप टाइम कभी नहीं देखते हो, रात के 2 बजे भी उठ जाते हो। आप कभी उठते हो क्या?
1: बिल्कुल बिल्कुल, अभी वैसे होता ना कि नींद में कभी वैसी ट्यून, हमें जैसे मैं कंपोजर भी हूँ तो कभी कभी ट्यून दिमाग में चलती रहती है
0: जी।
1: और ऐसा लगता है अभी इसको हमने एटलीस्ट कुछ रॉ बेस में रिकॉर्ड नहीं किया तो सुबह उठते मैं भूल जाऊंगा, तो ऐसे दिमाग आ जाता है और कभी कभी उठना हो जाता है, रात में चलते ही रहता
2: है। मेरे पास ना एक छोटा सा सवाल है, सवाल ये है कि एक गाना जो आपको बहुत पसंद है
1: जी,
2: मगर आपको लगता है कि वो गाना थोड़ा अंडररेटेड है, फिर लोगों को और ज्यादा सुनना चाहिए, वो ऐसा कौन सा गाना आपके हिसाब से जो अंडररेटेड है मगर आपके दिल के बहुत करीब है और जो आप चाहते हो कि ये सुनो और सुनो इस गाने को करके?
1: बहुत प्यारा सवाल है आपका यार, और वैसे तो कई गाने हैं जो हमें लगते हैं कि बहुत अच्छा थॉट देते हैं, मैसेज देते हैं, लेकिन एक ऐसा गाना है जो मेरे ख्याल से सब लोगों को पता है लेकिन वो अक्सर गाया नहीं करते, क्योंकि ये गाना जो है वो जैसे कभी ना कभी कभी अपने फेवरेट हीरो होते तो गाने से आप कनेक्ट करते हो, लेकिन गाना लिरिकली आप अच्छी तरह सुनोगे तो इवन अगर वो फिल्म भी अगर फ्लॉप होती है लेकिन गाना उसका बहुत बढ़िया हो जाता है। तो एक ऐसा गाना है जो मेरे ख्याल से बहुत पॉजिटिविटी देता है, वो ये गाना है। मैं अब क्या मैं पेश कर सकता हूँ?
2: बिल्कुल बिल्कुल,
0: पेश करिए, आप तैयार होते हैं।
1: मैं कभी दिनों के बाद ही गा रहा हूँ तो मुस्ताकी माफ प्लीज। तो आप इसके जो लिरिक्स को सुनिए काफी अच्छा, और इवन 2026 यू कैन रिलेट विथ द लिरिक्स।

0: वाह वंडरफुल, तालियां बजाएंगे यार।
1: सिटी बजा सकता हूँ?
0: हाँ बजा लेना यार।
1: बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, मजा आ गया सही में।
0: बहुत बढ़िया माहौल जो है वो रेडियो ऑलिव के स्टूडियो में बना हुआ है। वापस लौटेंगे, टाइम थोड़ा है लेकिन मन कर रहा है कि इसी तरह से ये जो चार घंटे है ना रेडियो ऑलिव के ये शो के जबरदस्त इवनिंग्स के वो चलते रहे, लेकिन क्या करेंगे ना, अभी वापस लौटेंगे। अगर आपका कोई गाना सुनने का मन हो रहा तो आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं 3311063 पर, हम श्रेयस से बोल लेंगे, शायद वो आपके लिए गा देंगे। सुनते रहिए रेडियो ऑलिव को और कहते रहिए जियो बिंदास।

0: आप सुन रहे हैं कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM। दोहा बैंक और लुलु लाए हैं शॉपिंग का एक रिवॉर्डिंग एक्सपीरियंस।
1: अब अप्लाई कीजिए दोहा बैंक लुलु मास्टर कार्ड प्लैटिनम क्रेडिट कार्ड के लिए और पाइए कतरी रियाल 500 लुलु शॉपिंग वाउचर।
0: लुलु स्टोर्स पर हर स्पेंड के साथ मिल सकता है अप टू 5% सेविंग्स लुलु पॉइंट्स के फॉर्म में।
1: प्लस इंजॉय कीजिए एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस, माय बुक ऑफर्स, डाइनिंग डील्स और लाइफस्टाइल प्रिविलेजेस। बस कार्ड एक्टिवेट कीजिए लुलु पर मिनिमम कतरी रियाल 1 स्पेंड कीजिए और रिवॉर्ड्स का मजा लीजिए।
0: ऑफर वैलिड टिल 30th June 2026। दोहा बैंक लुलु मास्टरकार्ड प्लैटिनम शॉपिंग नाउ मोर रिवॉर्डिंग। टीएनसी अप्लाई।
2: शैकमैन की पावर पैक्ड रेंज, हेवी ट्रक्स, टिपर्स, ट्रेलर्स और बूम ट्रक्स, दमदार परफॉर्मेंस और भरोसा सिर्फ कार्मिल के साथ। विजिट कार्मिल ग्रुप नाउ। फुटबॉल बाउंड्रीज नहीं जानता और कतर का कल्चर कोई लिमिट्स नहीं जानता। इस वर्ल्ड कप जब कतरी फैंस अमेरिका पहुंचे तो उन्होंने सिर्फ मैच में पॉइंट नहीं जीता बल्कि सबका दिल जीत लिया। अपने ट्रेडिशनल कतरी थोप में फुल प्राइड के साथ उन्होंने अमेरिकन स्टेडियम में कतर के कल्चरल वैल्यूज को शोकेस किया। नो मैटर वेयर द गेम इज, आइडेंटिटी हमेशा साथ रहती है और यही है द हिवारी इनिशिएटिव जिसकी पूरी दुनिया दीवानी है। कल्चर ट्रैवल्स, फुटबॉल कनेक्ट्स एंड हिवारी इज ब्रिंगिंग कतर टू द वर्ल्ड।
3: इसके स्वैग पे मुंडे जाते हैं दिल हार के। लड़की को पसंद है कड़क चाय मलाई मार के। तो भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त कतर की नंबर वन आरजे
4: आरजे सिमरन के साथ।
5: Zabardast evening, make you drive golden with.
6: Biggest jewelry festival is now happening at Joyalukkas. Joyalukkas brings you a golden chance to save 40% off on making charges for gold and diamond jewelry.
7: Lulu, hypermarkets, supermarkets and department stores, where the world comes to shop.

0: यार टाइम बहुत कम है लेकिन मेरे को बहुत सारे गाने सुनने हैं। और अगर आप इनको सुनना चाहते हैं कतर में बहुत कुछ बहुत सारे स्पेशल जो है इवेंट्स होते रहते हैं, जैमिंग सेशन होते हैं क्योंकि म्यूजिक की जरूरत हर जगह पे पड़ती है, तो आपको कैसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं अगर आपको बुलाना चाहे तो?
1: देखो जैसे मैंने कहा इस ज़मीन से मेरा बहुत बहुत बहुत प्यार भरा वास्ता है, लेकिन यहाँ पे लोगों को आके कुछ पेशकश करना ये हमेशा इट्स मतलब मेरी बहुत बहुत खुशकिस्मती होती है। हमेशा आते रहता हूँ, लोगों को सुनाते रहता हूँ कुछ तो आप मुझे मेरे इंस्टा हैंडल पे भी आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो, कशिश बाय श्रेयस, वहाँ से आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। और वैसे मेरे अलग अलग गाने अलग अलग प्लेटफॉर्म से भी अवेलेबल है और मेरा कहते हैं कि कंपोजर का एक जो अलग अंग है वो सब मेरे रिलीजेज भी अवेलेबल है ऑन iTunes एंड Spotify।
0: बिल्कुल, क्योंकि दोहा से नाता जो है वो इनका बहुत लंबा है। अब देखो शाम हो रही है श्रेयस, ओके बाहर लोग चांद देख रहे होंगे, मुझे नहीं पता, मैं स्टूडियो के अंदर बैठी हूँ, बट चांद के लिए कोई अगर आप कुछ मतलब सुना पाए, क्योंकि गजलों के बारे में थोड़ी देर पहले सुदेव आपसे बात कर रहा था, तो कुछ सुनाना चाहेंगे आप?
1: वेल ये गज़लों के दौर में जाता हूँ तो मैं बहुत ही इमोशनल होता हूँ क्योंकि गज़ल की एक अलग ही दुनिया होती है, उसे बाहर आना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन आजकल के दिनों में एक बहुत ही ट्रेंडिंग एक बहुत ही एक शेर घूम रहा है जो जगजीत सिंह साहब के गाए हुए गज़ल का था, मैं पेश करता हूँ। तो अर्ज किया है
0: हम ऐसे स्टार स्ट्रक हो गए ना।

0: शुक्रिया शुक्रिया,
1: मजेदार मजेदार शुक्रिया तो आपका। आप हमारे रेडियो ऑलिव के स्टूडियो में आए, तो कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस रेडियो ऑलिव में पहली बार आपका आना हुआ है?
0: बहुत ही बढ़िया सिमरन जी, जैसे मैंने कहा कि उस दौर में अगर ऐसी कुछ जगह होती जहाँ पे बस म्यूजिक की बातें चल रही है और माहौल जो यहाँ का आपने जो सेट किया है, जो आते आते ही स्टेप इन होते होते आपको लगता है कि आप जिंदगी में आर्टिस्ट हो, कितने ब्लेस्ड हो कि उसी वजह से हम यहाँ पे आ पहुंचे। तो रियली ग्रेट, वेरी पॉजिटिव, वेरी कलरफुल, वाइब्रेंट और बहुत ही म्यूजिकल सोल आप सभी।
1: क्या बात है, थैंक यू सो मच आपका आने के लिए।
2: इतनी तारीफ यार बॉस ने भी करी थी।
1: ये हम बॉस को सुना देंगे, ठीक है, ये कट करके रख लेंगे हमारे, हम बोल देंगे। सो वर्ल्ड म्यूजिक डे आ रहा है, इसके म्यूजिक के बारे में हमने ऑलरेडी माहौल जो है वो सेट कर दिया। बहुत जल्दी सुदेव एंड श्रेयस के साथ एक पॉडकास्ट है, म्यूजिकल पॉडकास्ट आप बहुत जल्दी देखने वाले हैं वर्ल्ड म्यूजिक डे पर, बट हमारी अभी भी बस नहीं हो रही है। तनीषा क्या बोलती हो, जाने से पहले एक गाना
3: होना तो चाहिए, बनता है पूरे कतर के लिए, दोहा के लिए, आपका इतना प्यार है, हमारे जो लिसनर्स सुन रहे हैं, दे आर मैसेजिंग अस राइट नाउ एंड दे आर सेंडिंग सो मच लव, सो उनके लिए तो कुछ बनता है।
0: देखो दोस्तों की वजह से हम यहाँ पे हैं और दोस्ती को सेलिब्रेट करना तो हमारा फर्ज ही है, क्योंकि वो तामरों आपके साथ रहते हैं, तो क्यों ना इस ऐसे माहौल पे हम इस ऐसे नगमे को चुनते हैं जो दोस्ती को डेडिकेट किया जाता है। तो हमारे तमाम मेरे दोस्तों के लिए जो उस वक्त जो मैंने जो भी कुछ कदम उठाए थे मेरे क्या कहते हैं पैशन फॉलो करने के लिए, लेकिन फिर भी हमारा साथ नहीं छोड़ा इतने सालों से भी, तो हमारे सभी प्यारे दोहावासी जो दोस्त हैं उनके लिए और आप जो इतने प्यारे दोस्त हैं आपके लिए। और आई कैन एक्चुअली रिलेट विद दिस सॉन्ग, यू नो यू कैन लिसन इट।

0: मजा आ गया। लेकिन अब मैंने तनीषा से, हम लोग डिसाइड करते हैं कि ये वाली महफिल आखिरी तो नहीं है। जितनी बार भी आपका, जितनी बार भी कतर वाले श्रेयास को बुलाने वाले हैं परफॉर्म करने के लिए, उतनी बार ही आप स्टूडियो में आने वाले हैं, क्योंकि हमको भी सुनना है आपका म्यूजिक।
1: एब्सोल्युटली लुकिंग फॉरवर्ड, और मुझे बहुत बहुत मजा आएगा। जैसे मैंने कहा कि मैं बहुत जॉनर्स गाता हूँ, मैंने अपने आप को कभी रोका नहीं है कौन से भी म्यूजिक के जॉनर एक्सप्लोर करने से, तो बहुत कुछ आपको सुनना बाकी। अभी तो दिस इज नथिंग, दिस इज जस्ट अ ट्रेलर सिमरन जी, पिक्चर अभी बाकी है दोस्त,
0: पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। सो या थैंक यू सो मच, बहुत जल्दी आपसे वापस से मिलना होगा क्योंकि दोहा में आना लगे रहता है। और जैसे कि बताया कि अगर आपको लगता है ऐसा म्यूजिकल सा माहौल आप दोहा में सेट करना चाहते हो तो कॉन्टेक्ट करिए श्रेयास पाटकर को, या फिर अगर आपको डिटेल्स चाहिए तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो 3311063 पर, मैं आपको डिटेल दे दूंगी। लेकिन अभी के लिए ये कहती हूं थैंक यू सो मच, सुनते रहिए रेडियो ऑलिव, कर कहते रहिए जियो बिंदास।

0: fresh on the grill, slow-cooked mandi, perfectly spiced prawns, and that special chutney. No noise, no drama, just seafood done right. BBQ fish, crabs, prawns, crafted with patience, served with pride. Danatal Pahar, the ultimate Qatari adventure. Souq Waqif Al Khor.
1: Commercial Bank presents CB 2026 Million Rials Dream.
2: अब सिर्फ savings नहीं, सपने grow होंगे. जीतिए पूरे 5 million rials cash prizes.
1: जीतने के चार रास्ते. पहला, अपना account balance बढ़ाइए. हर 10,000 rials growth पर पाइए एक coupon.
2: दूसरा, अगर salary 4,000 plus है या 50% save किया है, तो आप eligible है.
1: तीसरा, नए customers को पहली salary या 10,000 funding पर guaranteed coupon. और चौथा, 9 महीने regular salary पर पाइए एक extra coupon और mega draw ticket.
3: सलाम प्रणाम नमस्कार वणकम मैं हूं जैकी श्रॉफ रेडियो 106.3 जे ओबिंदास
4: ऑलिव सुनो रेडियो नेटवर्क कतर्स नंबर वन एशियन रेडियो नेटवर्क रेडियो ओलिव
5: नंबर वन. इसके स्वैग पे मुंडे जाते हैं दिल हार के. लड़की को पसंद है कड़क चाय मलाई मार के. भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त कतर की नंबर वन आरजे सिमरन के
0: साथ. जबरदस्त इवनिंग मेक यू ड्राइव गोल्डन विद बिगेस्ट ज्वेलरी फेस्टिवल इज नाउ हैपनिंग एट जोयालिकास. जोयालिकास ब्रिंग्स यू अ गोल्डन चांस टू सेव 40% ऑफ ऑन मेकिंग चार्जेस फॉर गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी.
6: लुलू हाइपरमार्केट्स सुपरमार्केट्स एंड डिपार्टमेंट स्टोर्स वेयर द वर्ल्ड कम्स टू शॉप.

हां जी पिछले घंटे श्रेयस पाटकर थे हमारे साथ और बहुत बढ़िया हमने महफिल सजाई, बढ़िया जैमिंग की, बढ़िया गाने सुने और आप लोगों के बड़े सारे मैसेजेस आए थे। अभी हम स्टार्ट करेंगे यार कि जो इनफैक्ट लोकल टैलेंट भी हैं जो कि अच्छा गिटार बजा लेते हैं, अच्छा गा लेते हैं, एकदम महफिल सजा सकते हैं, तो उनको मेरे शो पे जो है वो बुलाया करूंगी ताकि आप लोगों के मजे हो जाएं और इवनिंग और भी म्यूजिकल हो जाए। सो अगर आप में से कोई है जो गिटार बजा लेता और गा लेता, आप में आपको लगता है कि यार बढ़िया माहौल बन सकता है सिमरन कौर जबरदस्त इवनिंग्स में, तो आप मुझे बता सकते हैं 3311063 पे मैसेज कर सकते हैं और फिर मैं आपको इनवाइट करूंगी, फिर अपन मजे करेंगे यार।

0: अभी फिलहाल आप लोगों का नाम चाहिए, बस मुझे थोड़ी देर में नेम गेम खेलने वाली हूँ। अगर आप तैयार हैं तो अपना नाम टाइप करके रखिएगा, जैसे मैं आपको बोलूँ आप मुझे अपना नाम भेज दीजिएगा, फिर रेडियो पे आपका नाम लेती हूँ। सुनते रहो रेडियो ऑलिव और कहते रहो जियो बिंदास।
1: रेडियो ऑलिव पर आने वाला गाना कूल सॉन्ग ऑफ द आवर।
2: क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है।

0: एप्लीकेशन प्यार से हमारा इंतजार करने वाले अपनों को एक गोल्डन सरप्राइज क्यों ना दे। मलबार गोल्ड एंड डायमंड्स के गोल्डन समर ऑफर के साथ डायमंड एंड प्रेशियस जेम ज्वेलरी खरीदने पर पाइए फ्री कैश वाउचर्स। अपने पुरानी गोल्ड ज्वेलरी को एक्सचेंज कीजिए विदाउट एनी लॉस। और अब विद द इंपोर्ट ड्यूटी रिविजन इन इंडिया यू कैन नाउ सेव अप टू 15% ऑन गोल्ड प्राइसेस हियर इन जीसीसी। विजिट मलबार गोल्ड एंड डायमंड्स टुडे।
1: दोहा बैंक और लुलु लाए हैं शॉपिंग का एक रिवॉर्डिंग एक्सपीरियंस।
2: अब अप्लाई कीजिए दोहा बैंक लुलु मास्टर कार्ड प्लैटिनम क्रेडिट कार्ड के लिए और पाइए कतरी रियाल 500 लुलु शॉपिंग वाउचर।
1: लुलु स्टोर्स पर हर स्पेंड के साथ मिल सकता है अप टू 5% सेविंग्स लुलु पॉइंट्स के फॉर्म में।
2: प्लस एंजॉय कीजिए एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस, माई बुक ऑफर्स, डाइनिंग डील्स और लाइफस्टाइल प्रिविलेजेस। बस कार्ड एक्टिवेट कीजिए लुलु पर मिनिमम कतरी रियाल 1 स्पेंड कीजिए और रिवॉर्ड्स का मजा लीजिए।
1: ऑफर वैलिड टिल 30th June 2026। दोहा बैंक लुलु मास्टरकार्ड प्लैटिनम शॉपिंग नाउ मोर रिवॉर्डिंग टीएनसी अप्लाई।
3: इसके स्वैग पे मुंडे जाते हैं दिल हार के। लड़की को पसंद है कड़क चाय मलाई मार के। तो भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त गदर की नंबर वन आरजे
4: आरजे सिमरन के साथ।
5: Zabardast evening, make you drive golden with.
6: Biggest jewelry festival is now happening at Joyalukkas. Joyalukkas brings you a golden chance to save 40% off on making charges for gold and diamond jewelry.
7: Lulu, hypermarkets, supermarkets and department stores, where the world comes to shop.

ਤੁਹਾਡੇ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਿਮਰਨ ਕੌਰ ਹੈ ਆਪਕੇ ਸਾਥ ਔਰ ਅਬ ਆਪ ਮੇਰੇ ਸਾਥ ਹੋ ਬਟ ਆਪਕਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਮੁਝੇ ਬਤਾ ਦੋ ਮੈਂ ਬੋਲ ਦੇਤੀ ਹੂੰ कि आपका नाम मैं अभी के अभी रेडियो पे बोल दूं तो आप मुझे बस नाम बता दीजिए, फिर मैं नाम पढ़ के आपका बता दूंगी। बस मेरे व्हाट्सएप पे आपने अपना नाम लिख के भेजना है। रूल्स यही है इस गेम के, नो हाय नो हेलो, सिर्फ और सिर्फ आपका नाम, नो वॉइस नोट्स। ओके, सो 3311063 पर चलो मैं आप लोगों के नाम बोलने स्टार्ट कर रही हूँ। सोनम खत्री, वेरोनिका, विलियम, फैजल, रवि, विक्रम, रुक जाओ, शांत हो जाओ, ओ माय गॉड इतने सारे मैसेजेस आने लग जाते हैं। सुंदास, जैन, अल्तमश, सादिक, सूरज, मोहम्मद मान जी, डेजी जी, थैंक यू सो मच, इमाद, नासिर, हिफ्जा जी, थैंक यू सो मच, शामसुल जी, थैंक यू सो मच, हुसैन जी, थैंक यू सो मच, इमाद, नासिर जी, थैंक यू सो मच, एमके जी, थैंक यू सो मच, वकास जी, थैंक यू सो मच, एमके जी, थैंक यू सो मच आपके मैसेज के लिए, रिमुल जी, थैंक यू सो मच आपके मैसेज के लिए, शंकर जी, थैंक यू सो मच, हमद जी, सुमन जी, थैंक यू सो मच, उदीन जी, थैंक यू सो मच आपके मैसेज के लिए, शंकर राम जी, थैंक यू सो मच, वकास अहमद जी, थैंक यू सो मच, शाबाज गुल जी, थैंक यू सो मच, सुमन, उदीन, ऑलरेडी मैं आपका नाम जो है वो ले चुकी हूँ, रहमान जी, थैंक यू सो मच, इबाद जी, थैंक यू सो मच आपके मैसेज के लिए, रीमा जी, थैंक यू सो मच, फैजल जी, थैंक यू सो मच, विजय जी, थैंक यू सो मच, हामिद जी, थैंक यू सो मच, यूसुफ जी, थैंक यू सो मच, इमरान जी, आजाद जी, अबरार जी, संधु जी, सावी जी, हाय सांस रुक रुक रे नाम लेने पड़ते, रिशान जी, थैंक यू सो मच, मूर्ति जी, श्याम जी, थैंक यू सो मच आपके मैसेज के लिए, शाबाज गुल, ऑलरेडी मैं आपका नाम जो है ले चुकी, क्विकली अपना नाम लिखिए, प्रिंस जी, थैंक यू सो मच, शंकर जी, थैंक यू सो मच आपके मैसेज के लिए, हमदान जी, थैंक यू सो मच आपके मैसेज के लिए, मोहित जी, थैंक यू सो मच आपके मैसेज के लिए, एंड दैट्स इट फॉर नाउ। अब जिन जिन लोगों के मैंने नाम ले लिए बड़ा, अब आप थैंक यू लिखो और अपना फेवरेट वाला इमोजी बना के भेजो। आ रही हूँ बस थोड़ी देर में, टिल देन ये गाने के साथ वाइब करो, बहुत प्यारा गाना है।

0: सुनते हैं नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM।
1: Your daily surprise is here. अपना हाला रिचार्ज करो और पाओ फ्री डेटा या मिनट्स का सरप्राइज. क्लेम करो ओरिडू ऐप पर. एक्सपीरियंस मोर विद ओरिडू.
0: इस खेल में प्लेयर प्लेयर नहीं वॉरियर कहलाते हैं. यहाँ हर गोल पे एड्रेनलिन रश हाई होता है. हर चोट एक मेडल है. हारना मना है और डरना गुनाह है. यहाँ सेलिब्रेशन के लिए ढोल नहीं, दिलों की धड़कन शोर करती है. और ऑडियंस चीयर नहीं, रोर करती है. बिकॉज इट्स नॉट जस्ट अ गेम, इट्स एन इमोशन.

0: खलीफा की हर डिटेल के लिए सुनिए रेडियो ऑलिव
1: इन एसोसिएशन विद
0: डाउनलोड द सिटी एक्सचेंज मोबाइल ऐप नाउ टू सेंड मनी क्विकली एट द बेस्ट एक्सचेंज रेट्स
2: ऑल्सो पाम स्विस गोल्ड बार्स आर नाउ अवेलेबल एट द बेस्ट प्राइस एट सिटी एक्सचेंज
0: योर ट्रस्टेड रेमिटेंस पार्टनर
3: Dr. On Air. Brought to you by Naseem Healthcare.
4: I'm Dr. Faseel Abdurrahman, periodontist, working in Naseem Dental Center, Muntaza. Children are the primary responsibilities, the caretakers, that is the parents or the grandparents. First dental visit always should be 6 months or when the first baby tooth erupts. That is the first thing that has to be taken care by the parent.
3: Dr. On Air. Brought to you by Naseem Healthcare.
5: Doha Bank और Lulu लाए हैं शॉपिंग का एक rewarding experience.
6: अब अप्लाई कीजिए Doha Bank Lulu MasterCard Platinum Credit Card के लिए और पाइए कतरी रियाल 500 Lulu Shopping Voucher.
5: Lulu Stores पर हर spend के साथ मिल सकता है up to 5% savings. Lulu Points के form में.
6: Plus, enjoy कीजिए Airport Lounge Access, MyBook Offers, Dining Deals और Lifestyle Privileges. बस कार्ड एक्टिवेट कीजिए Lulu पर मिनिमम कतरी रियाल एक spend कीजिए और rewards का मजा लीजिए.
5: Offer valid till 30th June 2026. Doha Bank, Lulu MasterCard Platinum. Shopping now more rewarding. TNC apply.
7: Grow your brand across Qatar's key audiences. Connect with Hindi listeners on Radio Olive 106.3 FM. Malayalam audiences on Radio Suno 91.7 FM. And Arabic listeners on Tetkar 107.4 FM. On-air visibility supported by performance-driven digital marketing campaigns. Simple, effective, integrated. Call 3009-1063 or 3082-1063.
8: इसके स्वैग पे मुंडे जाते हैं दिल हार के. लड़की को पसंद है कड़क चाय मलाई मार के. तो भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त. कतर की नंबर वन आरजे
9: सिमरन के साथ.
10: Zabardast evening, make you drive golden with.
11: Biggest jewelry festival is now happening at Joyalukkas. Joyalukkas brings you a golden chance to save 40% off on making charges for gold and diamond jewelry.
12: Lulu, hypermarkets, supermarkets and department stores, where the world comes to shop. Joyalukkas.

0: इतनी शिद्दत और प्यार से बुला रहे तो आऊंगी क्यों नहीं। देखो आज वीकेंड है और आपने सीन बनाया कि नहीं बनाया।
1: आज रात का सीन बना ले।
0: कनाडा का मैच देखना है और कतर को जिताना है। अपनी होती है मुलाकात सैटरडे शाम को 5 बजे जबरदस्त इवनिंग्स में। अब सिमरन कौर की कल्टी माने का टाइम आ चुका है और वीकेंड को एंजॉय करने का टाइम आ चुका है। प्लीज हाइड्रेट योरसेल्फ, पानी पीना मत भूलिएगा और ज्यादा ऑयली और ज्यादा शुगर वाला फूड नहीं खाइएगा क्योंकि गर्मियों के टाइम में फिर पिंपल निकल जाएंगे और हेल्थ भी खराब होती है, समझा करो थोड़ा सा। खाने में दिलो ऐश करते रहो, चेहरे पे बड़े वाली स्माइल रखो, किसी का दिल मत दुखाना। बी नाइस टू एवरीवन यार। गुड नाइट, जस्ट टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड लव यू सो किलो।

0: are listening to Radio Olive 106.3 FM. Jio Bindas. Doha Bank और Lulu लाए हैं शॉपिंग का एक रिवॉर्डिंग एक्सपीरियंस.
1: अब अप्लाई कीजिए Doha Bank Lulu Mastercard Platinum Credit Card के लिए और पाइए कतरी रियाल 500 Lulu शॉपिंग वाउचर.
0: Lulu स्टोर्स पर हर स्पेंड के साथ मिल सकता है अप टू 5% सेविंग्स Lulu पॉइंट्स के फॉर्म में.
1: प्लस एंजॉय कीजिए एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस, माय बुक ऑफर्स, डाइनिंग डील्स और लाइफस्टाइल प्रिविलेजेस. बस कार्ड एक्टिवेट कीजिए Lulu पर मिनिमम कतरी रियाल एक स्पेंड कीजिए और रिवॉर्ड्स का मजा लीजिए.
0: ऑफर वैलिड टिल 30th June 2026. Doha Bank Lulu Mastercard Platinum. Shopping now more rewarding. TNC apply.
2: Life 24/7 चलती है तो डेंटल केयर सिर्फ ऑफिस आवर्स में क्यों मिले? नसीम सर्जिकल एंड मेडिकल सेंटर सी रिंग रोड का डेंटल डिपार्टमेंट अब है 24/7 ओपन. रूटीन केयर, ट्रीटमेंट या डेंटल इमरजेंसी, एक्सपर्ट डेंटिस्ट और एडवांस फैसिलिटीज के साथ केयर हर वक्त अवेलेबल है. कॉल 4411133. ऑल्सो विजिट आवर डेंटल सेंटर्स इन अजीजिया और मुंतजा. नसीम सर्जिकल and medical center. Healthy smiles anytime.

0: दोहा बैंक और लुलू लाए है शॉपिंग का एक रिवॉर्डिंग एक्सपीरियंस।
1: अब अप्लाई कीजिए दोहा बैंक लुलू मास्टर कार्ड प्लैटिनम क्रेडिट कार्ड के लिए और पाइए कतरी रियाल 500 लुलू शॉपिंग वाउचर।
0: लुलू स्टोर्स पर हर स्पेंड के साथ मिल सकता है अप टू 5% सेविंग्स लुलू पॉइंट्स के फॉर्म में।
1: प्लस एंजॉय कीजिए एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस, माई बुक ऑफर्स, डाइनिंग डील्स और लाइफ स्टाइल प्रिविलेजेस। बस कार्ड एक्टिवेट कीजिए लुलू पर मिनिमम कतरी रियाल 1 स्पेंड कीजिए और रिवॉर्ड्स का मजा लीजिए।
0: ऑफर वैलिड टिल 30 June 2026। दोहा बैंक लुलू मास्टर कार्ड प्लैटिनम। शॉपिंग नाउ मोर रिवॉर्डिंग। TNC अप्लाई।

0: Play. Club Olive. Club Olive Radio.
1: 6.3 FM.

0: ऑलिव रिचार्ज हर दोपहर 2 से 6 रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम पर जियो बिंदास
1: इन एसोसिएशन विद
2: होम्स आर अस वी कंप्लीट योर होम
3: रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम यू आर लिसनिंग टू क्लब ऑलिव.

0: भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त। कतर की नंबर वन आरजे आरजे सिमरन के साथ जबरदस्त इवनिंग रोज शाम 5 से 9 ओनली ऑन 106.3 रेडियो ओलिव जियो बिंदास
1: आरजे सिमरन के साथ
2: रेडियो ओलिव 106.3 FM। You're listening to Club